मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 मई सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:47 होने को हैं। इसके साथ ही आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है चिंतन।
1: सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक महामना गोपाल कृष्ण गोखले अपन बाल्यावस्था के संबंध में एक ठाम लिखे छथि। हमर परिवार सदैव आर्थिक विपन्नता अवस्था में रही छल। चतुर्दिक अभावे अभाव कैक दिन एहनो हुई छल जे घर में भानस नहीं हुई, सब क्यों भुखले सुत रही छल। एहना स्थिति में पढ़वा खर्च जुटेनाई तो असंभवे छल। पिता की इच्छा रहन जे हम पढ़ी, मुदा द्रव्याभावक कारण वो विवश छलाह। स्कूलक फीस देव आ पुस्तकक दाम देव द्रव्यक अभाव में संभव नहीं छलै। तथापि हम जना तना अध्ययन जारी रखलूँ। माइन चैंग का पुस्तक पढ़ी, मटिया तेल जँ सठि जाइक तो कैक दिन तक लगातार घर में साँझ नहीं पड़े। एहना स्थिति में हम नगर निगमक लैम्प पोस्टक नीचा में बैस कऽ पढ़ल करी। कष्ट सहन आ कठोर परिश्रमक अभ्यास हम बाल्यावस्थाई से आरंभ कैल आ एहि में प्रेरक भेलाह परिवारक सदस्य लोकनि, विशेष कऽ हमर पिता। महामना गोखलेक आत्मकथाक ई अंश प्रेरणा प्रद तऽ अछिये, संगे एक गोट महान सत्यक उद्घाटन सेहो करै छै। ओ ई जे बालक हो कि बालिका, ओकरा भविष्यक लेल तैयार करबा में सर्वाधिक सहयोगी अभिभावके होइ छथि। औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में विद्यालयक समय निश्चित रहै छै, सीमित रहै छै। शिक्षकक सान्निध्य ओतबा काल धरि बालक के भेटै छै जतबा काल धरि ओ विद्यालय में रहै छै। जीवनक वास्तविक तैयारी तो करबा पड़े छै पारिवारिके परिवेश में। जँ बालक के कष्ट सहन करबाक लेल, परिश्रमी आ अध्यवसायी बनबाक लेल, अनिश्चित भविष्यक लेल सक्षम बनेबाक लेल वा एक शब्द में सुयोग्य नागरिक बनेबाक लेल आरंभे सँ प्रयत्नशील रहल जाए तो निश्चित रूपे वो भविष्य में अनुकरणीय व्यक्तित्व संपन्न नागरिक में परिणत भ सकै छै।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आलेख एवं वाचन स्वर सुरेंद्र झा का था।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए हमारा प्रातःकालीन दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा।
1: किसान भाई लोकनि, आजुक कृषि चर्चा संग उपस्थित छी हम अनिल कुमार कर्ण। एहि कार्यक्रम में अपने सब गोटे के स्वागत, संगे सब गोटे के नमस्कार। हमसब कोनो तरहक फसिल लगबै छी, सबटा फसिल में बिना खाद उर्वरक देने काज नहीं चल सकैए, किएक एकर मूल कारण अछि जनसंख्याक वृद्धि। दिनानुदिन खेतक रकबा घटल जा रहल अछि आ जनसंख्या बढ़ल जा रहल अछि। एहन सन विषम परिस्थिति में खेत में बेसी से बेसी उपजा लेब हमर सभक कर्तव्य भ गेल अछि। एहि लेल खाद उर्वरक के व्यवहार करब अनिवार्य भ गेल अछि, मुदा किसान भाई लोकनि एकर व्यवहार करी, संतुलित मात्रा में करी। बेसी मात्रा में खेत में खाद उर्वरक के व्यवहार से खेत के माटि के गुणवत्ता प्रभावित होइत अछि, संगे खेतक माटि उस्सर भ जाइत अछि। तैं किसान भाई लोकनि अपन खेत में ओकर माटि के एकटा निश्चित अंतराल पर जांच करेबाक चाही। ओकर बाद जे वैज्ञानिक लोकनि अनुशंसा करै छथि, ताहि अनुरूपे अपन अपन खेत में समुचित रूप से खाद उर्वरक के व्यवहार कऽ सकै छी। ओना सामान्य रूपे बेसी से बेसी जैविक खादक व्यवहार करक चाही, जाहि से खेत के मृदा के स्वास्थ्य बनल रहे, संगे संग हमरो सब के नीक उपजा भेटे, गुणवत्तापूर्ण उपजा भेटे, जाहि से हमरो सभक स्वास्थ्य बनल रहे। फसिल में पोषक तत्व सभक आपूर्ति जैविक खाद आ उर्वरक सभक माध्यम से होइत अछि। हरेक फसल में अलग अलग मात्रा में पोषक तत्व सभक आवश्यकता होइत अछि, एहि लेल किछ खास गप पर ध्यान राखब आवश्यक अछि। किसान भाई लोकनि अपन अपन खेत में प्रयास ई रहे जे बेसी से बेसी जैविक खादक व्यवहार करी, खेत के माटिक जांचक उपरांत ओहि में उपस्थित पोषक तत्व के मात्रा, माटिक श्रेणी आ ओकर प्रतिक्रिया संबंध में जानकारी प्राप्त कर ली। एहि सँ अपने के उर्वरक के प्रकार आ ओकर मात्रा के निर्धारण करबा में सुविधा होइत अछि। अम्लीय वा क्षारीय माटि के सुधार करबाक लेल खेतक माटिक जांच निश्चित रूप से करबाक चाही। नाइट्रोजन वाला उर्वरक के संपूर्ण मात्रा एक बेर नहीं दऽ कऽ एकरा जँ 2-3 खेप में व्यवहार कयल जाए तो ऐसा बेसी लाभ भेटैत अछि। बेसी बाउल वाला माटि में पोटासक व्यवहार सेहो 2 खेप में करक चाही, मुदा किसान भाई लोकनि एकटा गप के ध्यान राखल जाए जे कोनो तरहक माटि में फसिल लगेला से पहिने फास्फोरस के संपूर्ण मात्रा एक बेर में व्यवहार करक चाही। उर्वरक के व्यवहार बिया के पाती से लगभग 1.5 इंच अलग पट्टीक रूप में करक चाही, ऐसा

0: बेसी लाभ होइत अछि। जँ स्फोरधारित उर्वरक अपनेके दाना वाला भेट जाए तऽ एहिसँ बेसी लाभ भेट सकैत अछि। अम्लीय, चूनायुक्त आ क्षारीय माटिमे स्फोरके व्यवहार पट्टीक रूपमे करब बेसी लाभप्रद होइत अछि। किसान भाई लोकनि एहि गपके ध्यानमे राखल जाए, जतऽ धरि सम्भव भऽ सकै बियाक सम्पर्क उर्वरकके सङ्ग नहि हेबाक चाही। अमोनियम सल्फेट वा यूरिया खादके व्यवहार उदासीन माटिमे लगातार कयलासँ 5-6 वर्षक अंतराल पर चूनके व्यवहार निश्चित रूपसँ करबाक चाही। मुदा किसान भाई लोकनि एहि गपके ध्यानमे राखब जे चूनाक मात्राक निर्धारण खेतके माटिके अम्लीयता पर निर्भर करैत अछि। बरानी खेतके सतह पर यूरिया खादके व्यवहार कमसँ कम 1.5 इंच नीचा गहीरमे करक चाही। नीमके खल्ली मिश्रित वा लौह आवृत यूरियाक व्यवहार जँ अपने करै छी तऽ एहिसँ बेसी लाभ होइत अछि। किसान भाई लोकनि अपने सब यूरिया खादके जलीय घोल बनाकऽ सेहो छिड़काव कऽ सकै छी, मुदा ध्यान राखी जे घोलके सांद्रता 2-3% बेसी नहि हेबाक चाही, नहि तऽ लाभक बदलामे हानि भऽ सकैए। ओहिमे लकड़ी कुन्नी वा गंधकीय प्लेसमेंटमे यूरियाक दाना आ जैविक पदार्थके 1:2 मिलाकऽ गोली बना ली, छाहरिमे सुखा कऽ तऽ एहिसँ बेसी लाभ भेट सकैत अछि। किसान भाई लोकनि एहि सङ्ग आब आजुक कृषि चर्चाक समय सम्पन्न हेबाक अछि। आज्ञा देल जाय। नमस्कार
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। इसके अंतर्गत आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे खाद एवं उर्वरक के समुचित प्रयोग। यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता

0: विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचार के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम में। श्रोताओं, लीजिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं स्वास्थ्य चर्चा।
2: आशय की सूजन के प्रमुख कारण है गर्भावस्था या पुरैन यानी प्लेसेंटा के टुकड़ों का रह जाना, या पुरैन के पॉलिप या गर्भाशय के पॉलिप का हो जाना, या गर्भाशय में पस, खून, पानी का जम जाना, या ट्यूमर यानी फाइब्रॉइड या कैंसर का होना। फाइब्रॉइड उन ट्यूमर को कहते हैं जिनमें कैंसर नहीं होता है। गर्भावस्था को छोड़कर गर्भाशय के सूजन का सबसे प्रमुख कारण यही है। इसमें गर्भाशय में मांस और फाइब्रस टिश्यू दोनों बढ़ जाता है और ये गर्भाशय के मांस में ही होता है। आमतौर से 5 से 30 की संख्या में पाए जाते हैं और एक फाइब्रॉइड यानी मायोमा को छोटे आकार से नारंगी के आकार होने में करीब 3 साल का वक्त लग जाता है। यह 35 से 45 साल की महिलाओं में अक्सर पाया जाता है और वैसी महिलाएं जो बांझ हों या हबशियों में यह ज़्यादा प्रमुख है। उन महिलाओं में जिनमें ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि अंडदानी की गड़बड़ी से होता है, उनमें भी फाइब्रॉइड ज़्यादा होते हैं। मायोमा गर्भाशय के 3 जगहों पर होते हैं, एक तो गर्भाशय की ऊपरी सतह पर, एक उसके मांस में और तीसरा अंदरूनी सतह पर जो कि पॉलिप का आकार ले लेते हैं। इसमें इसके लक्षण हैं मासिक की गड़बड़ी जो कि सबसे प्रमुख है, जिसमें मासिक ज़्यादा भारी और ज़्यादा खून का गिरना होता है, जिससे महिलाओं में खून की कमी हो जाती है और माहवारी के दौरान दर्द का अनुभव भी होता है। और अगर फाइब्रॉइड की सतह पर इन्फेक्शन हो जाए तो ऐसे स्थिति में गंदे पानी का बचदानी से गिरने का अनुभव होता है। फाइब्रॉइड के दबाव से कब्जियत भी हो जाती है क्योंकि आसपास की आंतें इसमें दब जाती हैं, और इसके अलावा पेशाब की थाली पर दबाव पड़ने से पेशाब में जलन, दुखन, रुक रुक कर होना और कभी कभी बिल्कुल भी बंद हो जाता है। पैरों की सूजन भी हो जाती है और अगर रक्तपातों के दबाव हो जाएं तो इससे पैरों में दर्द भी होता है। फाइब्रॉइड बांझ होने का भी एक प्रमुख कारण है क्योंकि वो गर्भाशय और उसके आसपास अंडेदानी के आकार को बिल्कुल बिगाड़ देता है, जिससे अंडे सही रास्ते से गर्भाशय में नहीं पहुंच पाते, और अगर पहुंच भी गए तो फाइब्रॉइड उन्हें गर्भाशय की सतह पर जमने नहीं देता है। और फाइब्रॉइड अबॉर्शन का भी एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा डिलीवरी में भी परेशानी होती है क्योंकि गर्भाशय के आकार बदल जाने से गर्भाशय की कान में भी बदलाव आता है। बड़े फाइब्रॉइड तो पेट पर झलकते हैं, लेकिन पेड़ों के रास्ते देखने से गर्भाशय

0: अपनी आकार से बड़ी हो जाती है और काफ़ी कड़ी मालूम होती है। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी से गर्भाशय की सूजन में जो फाइब्रॉइड है वो बिल्कुल अच्छी तरह से पता चल जाता है। छोटे फाइब्रॉइड अगर माहवारी में परेशानी ना करें तो उनके लिए हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मासिक में परेशानी हो तो डानाजोल की टैबलेट या नॉरएथिस्टेरोन की टैबलेट्स दी जाती हैं। इनके अलावा खून की कमी की भी पूरी की जाती है। कुछ फाइब्रॉइड जो अंदरूनी सतह पर होते हैं और जो पॉलिप का आकार ले लेते हैं उन्हें निकाला जाता है, जिसे पॉलिपेक्टमी कहते हैं। और 40 से कम वर्ष की महिलाएं या वैसी महिलाएं जिनकी फैमिली अभी पूरी नहीं हुई है, उनमें अगर फाइब्रॉइड हो जाए तो उस फाइब्रॉइड को पेट के ज़रिए निकाला जाता है, जिसे मायोमेक्टमी कहते हैं। और 40 से ज़्यादा वर्ष की औरतें या वैसी औरतें जिनके मासिक बंद हो चुके हैं या बंद होने वाले हैं, उनमें अगर फाइब्रॉइड हो जाए तो उसमें गर्भाशय और अंडेदानी दोनों को या तो पेट के ज़रिए या लैप्रोस्कोप के ज़रिए निकाल दिया जाता है। इसके अलावा रोगी को किसी भी योग्य चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, और अब लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आरंभ में आप सुनेंगे मातृभूमि को समर्पित समवेत स्वर में देशगान, उसके पश्चात आप सुनेंगे विभिन्न कलाकारों द्वारा गाए गए कुछ भजनों को।

0: आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, लीजिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं रामचरितमानस गान। आज के अंक में मुख्य स्वर सुरेश वाडकर एवं उत्तरा केलकर का है।
1: एपिसोड नंबर 370 370।

अयोध्या वासियों को राजा श्री राम ने जो उपदेश दिए उन्हें भक्तजन राम गीता की संज्ञा देते हैं। हनुमान तथा अपने तीनों भाइयों को संत असंत के लक्षण बताकर श्री राम ने नगर निवासियों को नीतिपरक उपदेश दिए। बड़े भाग मानुष तन पावा। सभी ग्रंथों में कहा गया है कि मानव तन देवताओं के लिए भी दुर्लभ होता है, ये साधना का माध्यम और मोक्ष का द्वार होता है। जिसने अपने परलोक की चिंता नहीं की उसे अंततोगत्वा पछताना पड़ता है, वो काल कर्म और ईश्वर को व्यर्थ ही दोष देता है। हे नगरवासियों, ये शरीर विषयों का भोग प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है। विषय वासना में इस तन का उपयोग करने वाले मूर्खतावश अमृत को विष में बदल देते हैं। माया के वशीभूत प्राणी काल कर्म स्वभाव तथा गुण अवगुणों से घिरा अनंत काल तक भटकता रहता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। अब एक नजर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में।

आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार है। पहले दूसरी सभा से। दूसरी सभा में आज रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, रात्रि 10 बजे। साहित्य की आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। 7:52 पर आप लेंगे आनंद फिल्मी गीतों का। खेती गृहस्थी का समय होगा संध्या 7 बजे। 6:30 पर आप सुनेंगे गांव घर। मैथिली संवाद आप सुनेंगे 6:25 पर। विद्यापति गीत आप सुनेंगे 6:15 पर। हफ्तावार जायजा आप सुनेंगे 6:10 पर। लेंगे आनंद फिल्मी गीतों का 5:40 पर। और संध्या 5 बजे आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवानी तरुण कुसुम। यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है और आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में। अब पहली सभा से। पहली सभा में अपराह्न क्षमा करेंगे, पहली सभा में 2:30 पर आप लेंगे आनंद फिल्मी गीतों का। 1:15 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के फरमाइशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 1:10 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। नारी संसार आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे दिन के 11:30 पर। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे मोहन वीणा वादन। कलाकार होंगे विश्व मोहन भट्ट। प्रसारण समय होगा दिन के 11 बजे। 10 बजे आप आनंद लेंगे फिल्मी गीतों का। और अभी से थोड़ी देर बाद अर्थात 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। इसमें 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल अबुधाबी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी और फ्रांस के विदेश कार्य महासचिव मार्टिन ब्रायंस शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने स्पष्ट समय सीमा में भागीदारी मजबूत करने की कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में

0: महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न होगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचार के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने प्रातःकालीन प्रसारण में। श्रोताओं, लीजिए अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला।
1: नमस्कार मिथिला सुनिहार समस्त श्रोतागण के आजुक अंक में हम प्रवीण और मनोज नमस्कार कर रहल छी, स्वागत कर रहल छी अपन प्रिय कार्यक्रम नमस्कार मिथिला में।
0: नमस्कार मिथिला सुनने वाले सभी श्रोताओं को मनोज का प्यारा नमस्कार, साथ ही प्रवीण भैया आपको भी नमस्कार। और इसके साथ हम लोग डालते हैं शुभ विचार पे एक नज़र। कभी भी किसी से ईर्ष्या न करें, क्रोध न करें, वरना मन हमेशा अशांत रहेगा। जिस व्यक्ति का मन शांत है वह सभी दुखों से मुक्त है। यह विचार हैं स्वामी विवेकानंद के।
1: सत्य अछि, ई जीवन के सारो अछि। कोनो सुविचार हमरा सबके जीवन के मूल मंत्र होइत अछि। कोनो विद्वान अपन गहन अध्ययन और ओहि द्वारा जे प्राप्त शब्द रचना होइ छै ओहि सब विचार व्यक्त करे छथि जीवन के अथाह अनुभव लेला के बाद। तो नित जे हम सब सुविचार सुनै छी ओकरा कतेक आत्मसात करै छी से तो हम नहीं कह सकै छी। ओना सब सुविचार मनुष्य जीवन के आगू बढ़ के लेल छै, प्रेरणा देव के लेल छै, जीवन में सफल होए तै के लेल छै। निराशा दूर होए जीवन से आशावादी बनल रही और अपन अपन कार्य क्षमता जे अछि ओहि पर विश्वास राखी तो सफलता भेटते छै।
0: ऐसे साथ डालते हैं आज है 8 मई का इतिहास में क्या है खास। तो आज 8 मई है, आज के दिन हम लोग मना रहे हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस। और आज ही के दिन विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मना रहे हैं। 2000 में भारतीय मूल के 69 वर्षीय लॉर्ड स्वराज पाल ब्रिटेन के चौथे सबसे बड़े विश्वविद्यालय ब्रिटेन यूनिवर्सिटी के कुलपति नियुक्त हुए थे। 2004 में श्रीलंका के मुरलीधरन ने 521 विकेट लेकर के सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने की का रिकॉर्ड बनाया था। और 8 मई को जन्मे महान व्यक्ति जो इस प्रकार हैं, 1932 में सत्यव्रत मुखर्जी पद भूषण से सम्मानित थे। वह भारतीय राजनीतिक और लोक सेवीय थे का जन्म हुआ था। 1929 में गिरिजा देवी भारत की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका का जन्म हुआ था। और 1926 में तपन राय चौधरी प्रसिद्ध इतिहासकार का जन्म हुआ था। तो ये थे इतिहास आज के दिन के कुछ खास जिस पे हम आप डालें नज़र।

इतिहास में तो बहुतो किछु समाहित रहैत अछि, हर पल एकटा इतिहास बनैत अछि। ओना इतिहास के किछु अंश मात्र हमसब परोसै छी कार्यक्रम के आगा लऽ चलैत। आ सबसँ पहिले सुनै छी एकटा सुमधुर मैथिली गीत।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: हम लोग सुन रहे थे मैथिली सुमो संगीत मैथिल ठाकुर के स्वर में, ऐसे साथ चलते हैं जहां हम सबों को इंतजार रहता है। जी हाँ, अपने आस पड़ोस की गतिविधियां संस्कृति पर डालते हैं नजर, यानी कि हाल चल लेकर के उपस्थित हैं परवीन जी।
3: नमस्कार, हाल चाल संग हम प्रवीण कुमार। बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार भेल, दरभंगा से दूटा माननीय मंत्री भेला, श्री मदन सहनी और रामचंद्र पासवान जी। माननीय मदन सहनी सातम बेर मंत्री भेला और माननीय रामचंद्र प्रसाद पहल बेर मंत्री भेला। बिहार मंत्रिमंडल के जनता के आकांक्षा पूरा होए तकर आशा अछि और विश्वास संग सब खुश भेला। ओना मिथिला क्षेत्र से 5 मंत्री भेला अछि। दरभंगा जिला में पुलिस प्रशासन के कार्य क्षमता बढ़ावा हेतु आ अपराध नियंत्रण के मजबूत करबाक हेतु थाना सब के कार्य संस्कृति बदलवाक हेतु 9 पहल भेल अछि। DIG और SSP सहित 13 पुलिस पदाधिकारी के 1-1 थाना गोद लेवा पड़लनि और गोद लेला के बाद ओहि थाना के कार्यशैली और कार्य संस्कृति बदलवाक और सुधार करबाक जिम्मेदारी हुनका ऊपर छनि। अपराध मुक्त समाज शहर और प्रशासन हो तैसे कार्य संस्कृति बदलत और निश्चित रूप से जनता के आकांक्षा पूरा होयत। और जनता के सिर्फ न्याय चाहिए, तै ई कार्य संस्कृति बदलवाक लेल एकटा नव प्रयास भेल अछि। दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में रविन्द्रनाथ जयंती पर राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित भेल। टैगोर के मानववाद और शिक्षा दर्शन पर मंथन भेल। विद्वान सब अपन अपन मत रखला। सर्वसम्मत से कहल गेल जे टैगोर महान मानववादी छला और समाज कल्याण के हेतु ओ दिन राति लागल छला और हुनक जीवन देश में समाज कल्याण के ऊपर बीतल। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे केलनि शिक्षा शास्त्र विभाग के औचक निरीक्षण। संस्कृत विश्वविद्यालय में परीक्षा शुरू भेल अछि। 15 केंद्र सब पर 2 पाली में 7,000 से बेसी परीक्षार्थी सब एमे भाग लड़ रहल छथि। विश्वविद्यालय प्रशासन कहला जे परीक्षा शांतिपूर्वक चल रहल अछि, कोनो तरह कदाचार नहीं भ रहल अछि। ज्ञात हो कि आचार्य शास्त्री और उपशास्त्री के नियमित सत्र के परीक्षा भ रहल अछि। गौरा बोराम में उच्च शिक्षा के भेटत नव आयाम। डिग्री महाविद्यालय निर्माण के पहल लेल प्रशासन बढ़ेलक डेग। सरकार प्राथमिकता के संग एहि पर ध्यान देने अछि। बिहार भरि में जहि प्रखंड में महाविद्यालय नहीं छल ओहि प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय बिहार सरकार खोलि रहल छथि। एहि में शुभारम्भ भऽ गेल अछि। एकर नामांकन एहि सत्र सँ होयत। 6 विषय में ई नामांकन होयत। विश्वविद्यालय एहि लेल गेस्ट टीचर के बहाली के सेहो निकालि देने अछि विज्ञापन। ई हाल चाल एखन आकाशवाणी दरभंगा सँ सुनि रहल छी। बिहार राज्य सरकार अनुदानित डिग्री महाविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2015-18 के परीक्षा परिणाम आधारित अनुदान राशि भुगतान के प्रक्रिया एक बेर फिर शुरू कयलक अछि। सो

पढ़ल विश्वविद्यालय सबके कहल गेल हैं जे 10 दिन के अंदर यथास्थित क क अनुदानार्थ के उपयोगिता अहाँ राज्य सरकार के भेजियो ताकि कार्य समय पर हो जाए, नहीं तो यदि नहीं भेजे छे तो फिर अनुदान राशि लटक सकैत अछि। बहरी रुद्र महायज्ञ के आयोजन, कार्तिक के जन्म प्रसंग सुनकर भाव विभोर भेला श्रद्धालुगण, लोरिक धाम बहंडिहुली में देवी देवताओं के मूर्ति आकर्षण के केंद्र बनल। श्रोतागण एकटा सुनने छल 9 मई के राष्ट्रीय लोक अदालत लागि रहल अछि, एकर बेंच तैयार भ गेल। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन 9 मई को कयल जा रहल अछि न्यायालय दरभंगा में, बेनीपुर और बिरोल में। सुबह 10 बजे से एकर समय अछि 9 मई को। जे केओ एहिमे भाग लेबा चाहै छी ओ अपन अपन दर्ज करा सकै छी मामला। कुल 15 बेंच में से कुल 35 बेंच गठन कयल गेल अछि, जेमे व्यवहार न्यायालय में 27 बेंच और व्यवहार न्यायालय बेनीपुर में 4 बेंच और व्यवहार न्यायालय बिरोल में 4 बेंच, जेमे राष्ट्रीय लोक अदालत लागत। एहिमे आम जनता से ही अपील अछि जे अपन कोनो समस्या एहिमे आनि सकै छी और एकटा सुलभ तरीका से एकरा सुलझा सकै छी, जेमे बैंक के ऋण, मोटर वाहन दुर्घटना, श्रम विवाद, बिजली पानी संबंधी कोनो विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, ई सब मामला ओहि में सुलझाया जाएत। एहि संग हालचाल संपन्न भेल। नमस्कार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: ऐसे के साथ डालते हैं लोकल अपडेट पे एक नजर। नगर में सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट व मृत पशु आदि से संबंधित शिकायत को लेकर के निगम के नियंत्रण कक्ष में आप फोन कर सकते हैं, जिसका नंबर है 6207774 पे शिकायत कर सकते हैं। शहर के बिजली की समस्या होने पर फ्यूज कॉल सेंटर का मोबाइल नंबर है 7763-8187-77। दूसरी नंबर है 9264-4564-13 पे संपर्क कर सकते हैं। रेलवे की अगर बात करें तो 8:26 पर है नई दिल्ली के लिए बिहार संपर्क क्रांति। दोपहर 12:33 पर है पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस। शाम 7 है नई दिल्ली के लिए स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट। विमान की अगर बातें करें तो सुबह 9:30 पर है मुंबई के लिए, जो रोज़ाना जाती है इस समय से। सुबह 11:30 पर दिल्ली के लिए, इनका भी समय रोज़ाना है इसी टाइम पे। 12:25 पर कोलकाता के लिए, 12:50 पर हैं दिल्ली के लिए, 1:35 पर है मुंबई के लिए, जो रविवार, सोमवार, बुधवार व शुक्रवार ये उड़ान भरती है। 3 हैं हैदराबाद के लिए और 4:35 पर हैं दिल्ली के लिए।
3: और किस मौसम संबंधी जानकारी दो दी। आज उच्चतम तापमान रहत 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहत 29 डिग्री सेल्सियस। मौसम में कोनो तरह बेसी बदलाव नहीं होत, दिन में तेज बरसात बह सकती है।

0: कार्यक्रम के आगे बढ़े तय मनोज किस गप सब से कॉली और श्रोतागंज के ये हमारा सबसे आशा रहे हम और सबके निवेदन रहिए जे अहाँ सब कार्यक्रम संबंधी पत्राचार क सके छी और कार्यक्रम केहन अहाँ के लगे ते संबंध में जानकारी हमरा देब तखने हम सब कोशिश करब जे निक से निक कार्यक्रम प्रस्तुत करी और कोनो तरह सुझाव जे देल जाए तो आप तो ऑनलाइन के माध्यम से सेहो आकाशवाणी अहाँ के सेवा दऽ रहल अछि तो ऑनलाइन माध्यम से अहाँ सुझाव दऽ सके छी। आई विश्व रेड क्रॉस दिवस अछि मनोज जी।
1: हाँ हाँ।
0: और रेड क्रॉस के नाम अबिते प्राय आम जनता में एकटा उमंग अबै छै जे रेड क्रॉस एहन संस्था अछि जतौ कोनो तरहक आपदा होय ओतौ रेड क्रॉस पहुँचते अछि और संगहि संग मानवता के लेल रेड क्रॉस 24 घंटा दरबार अपन खोलने रहैत अछि।
1: सही बात है, रेड क्रॉस दिवस हम लोग आज मनाते हैं जो 8 मई है उसी के दिन। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर वर्ष को तो 8 मई को मनाते हैं। यह दिन मानवता सेवा और करुण का प्रतीक है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को मानव सेवा के प्रति जागरूक करना और जरूरतमंदों की सहायता के लिए प्रेरित करना है। यह दिन दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय संस्थाओं में से एक है। इस दिवस को 8 मई को मनाने का कारण है प्रवीण जी कि हेनरी ड्यूनेट का जन्म हुआ था जो स्विट्जरलैंड के एक समाजी सेवी थी जिन्होंने युद्ध में घायल सैनिक की दयनीय स्थिति को देख करके 1863 में रेड क्रॉस संस्था की स्थापना की। उनकी सोच थी कि युद्ध या आपद के समय घायल और युद्ध में जो पीड़ित हैं लोग हैं उनको बिना किसी भेदभाव से उनकी सहायता की जाए। उनके इस महान कार्य के लिए उन्हें 1901 में पहला नोबल शांति पुरस्कार मिली थी। विश्व रेड क्रॉस दिवस विश्व के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम में आयोजित किए जाते हैं जैसे जागरूकता रैलियां, रक्तदान शिविर, सेमिनार और कार्यशाला में स्कूल कॉलेज में भी इस दिन को विशेष रूप से कार्यक्रम आयोजित किया जाता है ताकि युवा पीढ़ी को मानव सेवा के प्रति प्रेरित किया जा सके। इस दिन को लोग यह संकल्प लेते हैं कि जरूरतमंदों की मदद करना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना रहता है।
0: सत्य कहलूँ ओना रेड क्रॉस के एक पवित्र संस्था मानल गेल अछि मानव कल्याण हेतु दिवाराज ओ लागल अछि लागल रहत और स्वाभाविक छै जे एहन तरह के संस्था होइए जकर नाम लेते मन में एक श्रद्धा भाव आदर भाव आबि जाइ छै ओहिमे सँ रेड क्रॉस सेहो होइत अछि। कारण ओ दिवारात्रि एहिमे लागल अछि जे मानव पर जखन जखन विपदा अबै छै मानव समाज पर ओकर कल्याण कोना होइ छै खास कऽ विभीषिकामे युद्धमे और एखन जे विश्व पटल पर परिदृश्य अछि तऽ देखबे केलहुँ हँ तत्काल केना एक देश दोसर देशसँ युद्धमे लड़ल छलै तऽ निश्चित रूपसँ ओहिठाम रेड क्रॉस पहुँचैत अछि और अपन सेवा ओ दैत अछि। विश्व पटल पर रेड क्रॉस संस्था के सब देश किछु ने किछु अपन सहभागिता अर्थ रूप में अनुदान दऽ कऽ करै छथिन ताकि ई संस्था मानव कल्याण हेतु आगू सँ आगू भऽ सकै। अहाँ कहबे केलहुँ हँ जे हुनका एहि कार्य के हेतु नोबेल पुरस्कार तक भेटल छनि तैं एहन संस्था आ एहन संस्था के आइ जन्मदिन पवित्र दिन 8 मई तकरा हमसब केना मनाबी तऽ आजुक दिन के हमसब एकटा चर्चा परिचर्चा में लाबी रेड क्रॉस के कार्यशैली पर और ओकर मानव समाज के लेल कैल गेल एखन तक के कार्य पर आजुक दिन हम लोग इहो बात करी जे केना रेड क्रॉस जगह जगह रक्तदान शिविर लगा कऽ जरूरतमंद तक ओ रक्त के एक एकटा बूंद पहुँचाबैत अछि जाहिसँ ओहि जे रक्त के रोगी छथि जिनका रक्त चाहिन ओहिसँ हुनकर जीवन बचतनि तकरा प्राणदान भेटै छै। एहन जे कार्य तै कार्य के कतेक पवित्र कहू ई हमरा शब्द नहि अछि मनोज जी।
1: हाँ प्रवीण जी, और इसी के साथ हम लोग एक और दिवस मना रहे हैं जो थैलेसेमिया दिवस है।
0: अच्छा,
1: ये भी आज 8 मई को मनाया जाता है
0: जी।
1: ये मनाने का विश्व थैलेसेमिया दिवस मनाया जाता है। इसका दिवस का उद्देश्य

0: लोगों को थैलेसीमिया नामक गंभीर अनुवंशिक बीमारी के बारे में जागरूक करना है। इसके मरीज के प्रति सहानुभूति बढ़ाना तथा रोकथाम के उपाय को प्रोत्साहित करना है। थैलेसीमिया है, यह उसके बारे में हम जानते हैं कि थैलेसीमिया है क्या। यह एक रक्त संबंधी अनुवंशिक रोग है जिससे शरीर में पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन मतलब खून उनके शरीर में जो है प्रवीण जी,
1: जी, जी
0: नहीं बन पाता है जी। यह बिना पता करते हैं कि हम लोग हीमोग्लोबिन वह तत्व है जो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इस रोग के कारण मरीज को बार बार खून चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। यह बीमारी माता पिता से बच्चों में वंश अनुगत मतलब उनके वंश के हिसाब से चलता है
1: जी, जी, वंशानुगत कहल जाए छे रमनोज जी,
0: चलता है रूप में फैलता है
1: जी।
0: यदि दोनों माता पिता इस रोग से वाहक हैं तो उन बच्चों में थैलेसीमिया होने की संभावना अधिक होती है
1: जी।
0: थैलेसीमिया के सामान्य लक्षण इस प्रकार है, जैसे कि कमजोरी और थकान, पीला या पीतल रंग का शरीर, सांस लेने में कठिनाई, धीमी शारीरिक वृद्धि, हड्डियों में कमजोरी। यह रोग जिन में गड़बड़ी के कारण भी होता है। यह किसी संक्रमण से नहीं फैलता है बल्कि माता पिता के विरासत से मिलता है। तो ये दो दिवस हम लोग मना रहे हैं जिसके लिए हमें गंभीर होकर के इस चीज़ पर सोचना चाहिए कि सिर्फ हम लोग बोलकर या कागज पर मना करके नहीं होगा बल्कि इसका पालन भी हमें करना।
1: निश्चित रूप से थैलेसीमिया बीमारी जो है व्याधि है ओकरा से बचवा के लिए सबके कोशिश करवा चाहिए। ओना ही वंशानुगत है सब बोची। आई नव नव चर्चा सब और संगे संगे नव गीतनाद सेहो हेतै। तो चलो सबसे पहले आब एकटा गीतनाद के आनंद ली हमरा संगे हमर प्रिय श्रोतागण।

इतना सुनलहुँ, नीक लागल हैत आशा करै छी। आओर आइ शुक्र दिन आ सब शुक्र दिनके हमसब सुनै छी गांधी कथा, तऽ किया नहि आब सुनल जाय गांधी कथा।

गांधी कथा में प्रस्तुत है गांधी जी के संस्मरण। बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए जब गांधी जी विलायत गए तो वह अच्छी तरह जानते थे कि बैरिस्टरी की परीक्षा के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन वह अंग्रेजी से डरा करते थे। अतः उन्होंने अतिरिक्त अध्ययन करने का विचार किया। उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के कोर्स का पता लगाया, मित्रों से भी इस विषय में जानकारी हासिल की, लेकिन गांधी जी ने देखा कि ऐसा करने से उनका खर्च बढ़ जाएगा और इस कोर्स का पाठ्यक्रम भी बहुत लंबा था, जबकि गांधी जी वहाँ 3 वर्ष से अधिक नहीं रह सकते थे। फिर एक मित्र की सलाह से उन्होंने लंदन का मैट्रिकुलेशन पास करने का विचार किया, परंतु उसकी विषय सूची देखकर वो घबरा गए। उसकी विषय सूची में एक लैटिन और एक अन्य भाषा अनिवार्य थी, लेकिन गांधी जी के मित्र ने उन्हें समझाया कि वकील के लिए लैटिन भाषा का उपयोग है, लैटिन भाषा जानने वाले को कानूनी पुस्तकें पढ़ने में आसानी रहती है और रोमन लॉ की परीक्षा में एक प्रश्न पत्र तो केवल लैटिन भाषा का ही होता है। लैटिन जान लेने से अंग्रेजी भाषा पर अधिकार बढ़ता है। यह सब सुनकर गांधी जी ने मैट्रिकुलेशन में दाखिला ले लिया। प्रत्येक 6 महीने पर परीक्षा होती थी, यानी तैयारी के लिए केवल 5 महीने का ही समय होता था।

0: गांधी जी ने टाइम टेबल बनाया। अब एक एक मिनट उनके लिए कीमती हो गया। लेकिन गांधी जी से अन्य विषयों के साथ साथ लैटिन और फ्रेंच को संभालना कठिन हो गया। इम्तिहान में बैठे और लैटिन में फेल हो गए। इसका उन्हें दुख तो हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अब उन्हें लैटिन भाषा में आनंद आने लगा। वो दूसरी बार परीक्षा में बैठे और पास हो गए। इंग्लैंड में रहते हुए गांधी जी ने विभिन्न धर्मों का परिचय प्राप्त करने का प्रयास किया। इस बीच उनकी भेंट दो थियोसॉफिस्ट मित्रों से हुई। उन्होंने गांधी जी को गीता संस्कृत भाषा में पढ़ने के लिए कहा, लेकिन गांधी जी को संकोच हुआ, क्योंकि अभी तक उन्होंने गीता संस्कृत में तो क्या गुजराती में भी नहीं पढ़ी थी। इस तरह इन दो मित्रों के साथ गांधी जी का गीता पाठ आरंभ हुआ। सर एडविन अर्नोल्ड ने श्री भगवद गीता का जो अनुवाद अंग्रेजी में किया है, उस अनुवाद को एक साथ बैठकर उन्होंने गहराई से पढ़ा और समझा। इस तरह गांधी जी को हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों की ओर रुचि उत्पन्न हुई। तब गांधी जी को ज्ञात हुआ कि भगवद गीता एक अमूल्य ग्रंथ है और वह तत्व ज्ञान के लिए गीता को सर्वोत्तम ग्रंथ मानने लगे। गीता की सीख ही गांधी जी की आत्मिक शक्ति का उद्गम थी। उसी समय अन्नाहारी छात्रालय में गांधी जी की भेंट मैनचेस्टर के एक ईसाई सज्जन से हुई। उनकी प्रेरणा से गांधी जी ने बाइबल पढ़ी, लेकिन वह ओल्ड टेस्टामेंट नहीं पढ़ सके। लेकिन न्यू टेस्टामेंट शुरू करने पर ईसा के गिरि प्रवचन का गांधी जी के मन पर गहरा असर हुआ। गांधी जी ने उसकी तुलना गीता के साथ की। इंग्लैंड में ऐसे कई प्रकार के अनुभव गांधी जी को हुए और इन्हीं अनुभवों के साथ साथ उनका अध्ययन जारी रहा। गांधी जी इंग्लैंड में 2 वर्ष 8 महीने रहे। उन्होंने बार एट लॉ की पदवी हासिल की। एक दिन भी वहां न रुककर वह 1891 की गर्मियों में वापस भारत लौटे। लेकिन उनके मन को घोर निराशा ने घेर रखा था। उन्होंने कानून की पढ़ाई तो अवश्य पूरी कर ली थी, लेकिन उनका मन कहता था कि उन्हें कानून का वह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जिससे वह वकालत कर सकें। भारत लौटने पर गांधी जी को उनकी माता पुतलीबाई के देहावसान की सूचना दी गई। इससे उन्हें बहुत दुख हुआ। कुछ समय तो गांधी जी राजकोट में रहे, लेकिन मित्रों की सलाह पर हाई कोर्ट का विशेष अनुभव प्राप्त करने के लिए वे बम्बई गए। बम्बई में उन्होंने अत्यंत उत्साह के साथ वकालत आरंभ की, परंतु कोर्ट में एक छोटे से मुकदमे में गांधी जी एक भी शब्द न बोल सके। बम्बई में 4-5 महीने रहने के बाद गांधी जी निराश होकर पुनः राजकोट लौट आए। यहाँ उन्होंने एक अलग दफ्तर खोला और अर्जियां लिखने लगे। उनका यह काम चल निकला और अब हर महीने उन्हें 300 रुपए की आमदनी होने लगी। गुजरात के कुछ व्यापारियों के दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापार संबंध थे। उनमें से एक व्यापारी दादा अब्दुल्लाह सेठ के रिश्तेदार गांधी जी के भाई के मित्र थे। उन्होंने गांधी जी के भाई को संदेश भेजा कि एक व्यापारी की फर्म गांधी जी को अपना वकील बनाकर 1 साल के लिए दक्षिण अफ्रीका भेजना चाहती है। गांधी जी का वहां का खर्च वह व्यापारी वहन करेगा और गांधी जी को फीस के रूप में 105 पाउंड अलग से दिए जाएंगे। नया देश देखने और नए अनुभव पाने के लिए इस अवसर को गांधी जी ने जाने नहीं दिया और उन्होंने अपनी पत्नी तथा दोनों बच्चों को वहीं छोड़कर 1893 के अप्रैल माह में दक्षिण अफ्रीका के लिए जहाज पर चढ़ गए। इस तरह गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा शुरू हुई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां भारतीयों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता था और इस तरह गांधी जी ने वहां से ही भारतीयों के सम्मान की रक्षा का बीड़ा उठाया और अंततः उसी के लिए पूरा जीवन संघर्षरत रहे। और अब गांधी कथा में प्रस्तुत है कुमार राघवेंद्र मोहन चौधरी के विचार।
1: गांधी एक विचारधारा है और गांधी की विचारधारा सत्य और अहिंसा पर आधारित है और ये शाश्वत विचारधारा है, जबकि बहुत सारी विचारधाराएं ऐसी भी हैं जो समय

0: अनुरूप उसका महत्व रहता है और घटता चला जाता है। लेकिन गांधी की विचारधारा जो सत्य और अहिंसा पर आधारित है, इसका महत्व कभी घटने वाला नहीं है, ये सदा शाश्वत जैसा ही है। क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान सत्य के ही द्वारा हो सकता है। सत्य बोलने में भी बहुत कम श्रम लगता है। इसीलिए गांधी की जो विचारधारा है सत्य अहिंसा, अहिंसा का भाव जहाँ उत्पन्न होगा वहाँ प्रेम ही से अहिंसा की उत्पत्ति होती है। तो अहिंसा की उत्पत्ति के बाद घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे समाप्त हो जाएंगे, समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी यदि लोग सत्य और अहिंसा का प्रयोग करें। ये समस्याओं का मूल कारण ही सत्य का अभाव। और गांधी ने जो समस्याओं का निदान, जैसे उनका जो आंदोलन ही रहा तीन स्तर में रहा, पहला सत्याग्रह कि सत्य का अभ्यास करें, दूसरा असहयोग कि हम वहाँ तो रहेंगे लेकिन आपके जो अनुचित क्रियाकलाप हैं उसमें हम सहयोग नहीं कर रहे हैं, और अंतिम जब इससे भी काम न चले तो उन्होंने करो या मरो का विचार दिया था, सिद्धांत दिया था, आह्वान किया था। तो वो अंतिम हथियार जो है उसका लोग प्रयोग करने लगे हैं शुरू में ही, जिससे ही ये सारी समस्याएं, विवाद, परेशानियां समाज में, राष्ट्र के अंदर ये आ रहे हैं। आज किसी भी गांधी के विचार का मूल सिद्धांत है कि किसी भी मुद्दे को लोग आमने सामने बैठकर उस पर एकदम स्पष्ट विचारधारा उसके साथ प्रस्तुत करें, और किसी भी समस्या का निदान अंतिम उसी से होता है। तो ये यदि लोगों के आचरण में गांधी की विचारधारा का अनुकरण शुरू हो जाए और वो जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, संसार का रूप ही उसी अनुरूप उत्तम होता चलाएगा, शांति की स्थापना होगी। आज इस हथियार के होर के समय में गांधी की ही विचारधारा का सबसे ज्यादा उपयोगिता है। सत्य है यदि दो देश की सीमा का ही विवाद है तो जिस देश का जो सीमा है वो एक दूसरे अपने अपने सीमा में रहे, कोई जरूरी नहीं होगी। सब कुछ घूम फिर के वही गांधी की विचारधारा की ही मान्यता पर आ जाती है, और उसका महत्व सिर्फ सैद्धांतिक रूप से नहीं, व्यक्ति से लेके राष्ट्र तक, संसार तक, आचरण में जैसे जैसे लोग उसका अनुकरण करेंगे, व्यक्ति के जीवन में वैसे वैसे सुखद परिवर्तन होगा, राष्ट्रों के बीच, समाज के बीच भी उसी तरह की सुख समृद्धि बढ़ती जाएगी।
1: अभी आप कुमार राघवेंद्र मोहन चौधरी के विचार सुन रहे थे। आज गांधी कथा में इतना ही।

एखन अहाँ सब सुनै छलहुँ गांधी कथा, आओर गांधी दर्शन बनल रहत, समाजमे शांति बनल रहे, अहिंसा बनल रहे, सब प्रेमसँ आओर सत्यसँ जीवै तऽ कर्मप्रथ नीक होइत अछि। गांधी दर्शनमे आइ एतबैक, आगाँ फेर शुक्र दिन हमसब गांधी दर्शन सुनब। आओ एकटा प्रेस विज्ञप्ति सुना दी, सूचना। मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगामे 561 अति शिक्षक, आंशिक कालिक शिक्षक अस्थायी नियुक्ति भऽ रहल अछि। कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के आवेदन आमंत्रण हेतु ऑनलाइन पोर्टल के शुभारंभ कऽ चुकल छथि। 23 मई कऽ ऑनलाइन के आवेदन के अंतिम तिथि अछि। 23 मई तक अहाँ सब जे केओ अभ्यर्थी छी से ऑनलाइन के माध्यम सँ आवेदन दऽ सकै छी। आवेदन के हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय में 30 मई तक जमा होयत। एहि संग जे और अहाँ सब जनै छी जे 561 जे गेस्ट टीचर के बहाली होयत, ओहि के लेल से विज्ञापन 23 मई तक अछि। ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन अहाँ करू। संगे संगे ई सूचना दऽ रहल छी जे विश्वविद्यालय विज्ञापन के अनुसार हिंदी में 89, मैथिली में 11, अंग्रेजी में 75, दर्शन शास्त्र में 4, अर्थशास्त्र में 17, भूगोल में 4, इतिहास में 89, मनोविज्ञान में 7, भौतिकी में 6, रसायन शास्त्र में 18, वनस्पति विज्ञान में 14, जंतु विज्ञान में 30, गणित में 17, राजनीतिक विज्ञान में 60, समाजशास्त्र में 60, वाणिज्य में 60, अर्थात कुल 561 पद रिक्त अछि। एहि पर बहाली के प्रक्रिया भऽ रहल अछि। जे सब अभ्यर्थी छी से समय सँ अपन ऑनलाइन

0: आवेदन दऽ सकै छी। आओर संगे संगे हमसब किछु याद गपशप कऽ ली जे हमसब बाट घाट पर चलै छी, पैदलो मोटर वाहन भेल या कोनो तरहक वाहनमे, कि हमसब ई जनै छी कि नियम रहितो जे यातायात नियम अइ से कतेक आवश्यक छै। यदि आवश्यक छै तऽ नियम रहितो यदि अनदेखी कऽ कऽ हमसब नियम तोड़ै छी तऽ ओ ककरा कहल जेतै? एहिपर ई विचारणीय प्रश्न अछि। आइ हमसब एहिपर विचार करब जे यातायात नियमके पालन अति आवश्यक अछि। मनोज जी।
1: हाँ हाँ, सही बात है कि हम अपने रास्ते पे मार्ग पे चले सही दिशा से तो फिर ऐसा घटना दुर्घटना होने का है ही नहीं, पर लोग समझते नहीं इस बात को जिसके कारण हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
0: सत्य कहलूँ और हाँ सत्य कहलूँ। और दूसर बात ये जे सड़क हादसा यानी बाट पर जे हादसा होते हैं ओहि में जरूरतमंद के मदद अहाँ करी, कोनो तरहक बाधा नहीं, सरकार सब बाधा खत्म कर दलत, तैं जरूरतमंद के बाधा के दूर करत अहाँ जे सड़क बाट घाट पर घायल हो जाए प्राथमिकता में अहाँ हुनका से तत्काल

0: करना पड़ता
1: है। सत्य कहलूं और हाँ सत्य कहलूं। और दोसर बात ये सड़क हादसा यानी बाट पर जो हादसा होते वही में जरूरतमंद के मदद अहाँ करी, कोनो तरह के बाधा नहीं, सरकार सब बाधा खत्म कर दलत, तई जरूरतमंद के बाधा के दूर करत अहाँ जे सड़क बाट घाट पर घायल हो जाए प्राथमिकता में अहाँ हुनका से तत्काल जतेक नजदीक अस्पताल छन ओहिठाम जाकर हुनका भर्ती करब हम, अहाँ के कोनो तरह बाधा नहीं हेत एहि कार्यशैली में। धन्यवाद। कार्यक्रम के आगा बढ़बत आ सुनै छी चले चले एकटा फिल्म संगीत।

0: गीत संगीत तो निक लगते छे, निक लगते रहत। समय कहते छे अहि कार्यक्रम से हमरा सब के आज्ञा लेबे बेर आबि गेल अछि। तई हमरा प्रवीण के
1: और मनोज को दीजिए
0: आज्ञा। नमस्कार, नमस्कार।

0: राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मई 2026 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दरभंगा।
1: सब श्रोता लोकन के सूचित कल जात कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दरभंगा द्वारा शनि दिन यानी 9 मई 2026 क राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन कल जा रहा।
0: एही लोक अदालत में ट्रैफिक चालान,
1: आपराधिक समझौता योग्य मामला,
0: दीवानी विवाद,
1: मोटर दुर्घटना दावा,
0: पारिवारिक विवाद, तलाक का छोड़कर
1: बिजली पानी आ टेलीफोन बिल,
0: श्रम विवाद, संगहि बैंक ऋण से संबंधित मामला का आपसी सहमति से त्वरित निपटारा कैल जाए।
1: लोक अदालत जतः भेटत सरल, सुलभ आ किफायती न्याय।
0: तखन आओ एही सुनहरा अवसर का लाभ उठावी आ अपन लंबित मामला का समाधान पावी।
1: बेसी जानकारी के लिए संपर्क करू जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दरभंगा।
0: राष्ट्रीय लोक अदालत, न्याय अहाँ का द्वार।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: आकाशवाणी दरभंगा अब इंटरनेट के माध्यम से भी उपलब्ध है। डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR ऐप। यहाँ हर तरह के फूल खिले हैं।
2: कितना निमन लगैत है, हर जोतैत किसान, बुढ़ऊ बैठल दलान, आ बुढ़िया तापैत बोरसी, बहुरिया पाथित करसी, कितना निमन लगैत है।
3: तू कहैत हते न जो कहला न जान, मन मोटाव होए से रूसा फुल्ली हो जाए से, आ बोला चाली न होए से कहीं भाई बहन के रिश्ता टूट जाइए।
1: आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति बच्ची का कार्यक्रम अंगना, सुनना न भूले मंगलवार दिन के 11 बजे।
4: चाचा कहखिन चल तोहर माई बाबू कई खूबसन सुनाबे हो, तो खूबसन के अर्थ होए है उलाहना।
1: अपने स्मार्ट फोन पर सुनने के लिए डाउनलोड करें हमारा ऐप न्यूज ऑन AIR। इसी तरह रात ढलती गई, सुबह हुई, फिर दोपहर में बदल गई और दिन बीतते गए, रह गई तो सिर्फ यादें। फोन इन फरमाइशों पर आधारित पुराने हिंदी गानों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी आज रात 10 बजे अपने स्मार्टफोन पर सुनने के लिए।

0: डाउनलोड करें हमारा ऐप न्यूज ऑन AIR।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर VCK, CPI और CPIM के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: पश्चिम बंगाल में पहली BJP सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, JP नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित BJP विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दास गुप्ता, कोलकाता।
2: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। DMK और ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वेत्री कड़गम TVK को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
4: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन की चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
2: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉ MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश

0: का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग तीन गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि यह साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के

0: विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद वगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमरीकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमैक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा चुनाव में। तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का ये बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है। देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात अमर उजाला में है। कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
1: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपाय

0: Saudi Arabia suspends U.S. military access to its bases and airspace. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants beat Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method at the Ikana Stadium. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मगरबी बंगाल के लिए बीजेपी के मरकजी मुशाहिद अमित शाह कोलकाता में नए मुंतखब पार्टी अरकाने असेंबली के साथ मीटिंग करेंगे ताकि कानून साज पार्टी के लीडर का इंतखाब किया जा सके। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के मामले पर तातुल बरकरार है। वीसी के सीपीआई और सीपीआईएम के अरकानी असेंबली हिमायत देने या न देने के मामले पर आज मीटिंग करेंगे। वियतनाम के सदर तोलैम ने मुंबई में एक कारोबारी फोरम के दौरान आलमी सप्लाई निजाम में भारत वियतनाम रोल पर जोर दिया है। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने आलमी जरई मंजरनामे में भारत की पोजीशन को मुस्तहकम बनाने से मुतालिक इकदाम का जायजा लिया। सऊदी अरब ने अपने फौजी अड्डों और फजाई हदूद तक अमरीकी फौज की रिसाई को मुअत्तल कर दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डीएलएस साबते के तहत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल के लिए बीजेपी के मरकजी मुशाहिद वजीर दाखिला अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वो बीजेपी के 9 मुंतखब एमएलएस के साथ मीटिंग करेंगे जिसमें पार्टी के लेजिस्लेटिव रहनुमा का इंतखाब किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मगरबी बंगाल में शानदार जीत के बाद बीजेपी हलफबरदारी की तकरीब को कौमी अहमियत की सियासी तकरीब में तब्दील करने की तैयारी कर रही है। मगरबी बंगाल में पहली मरतबा बीजेपी की हुकूमत के लिए हलफ बर्दारी की तकरीब हफ्ते के रोज 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनक्किद होगी। ये बैशाख की 25 तारीख होगी। मस्कूरा मकाम पर स्टेज और सिक्योरिटी इंतजामात की तैयारियां बुध के रोज से ही शुरू हो गईं। बीजेपी जराए के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, बीजेपी सदर नितिन नबीन और मुतादिद दीगर आला रहनुमाओं के तकरीब में शामिल होने का इम्कान है। बीजेपी और एनडीए की हुकूमत वाली रियासतों के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला को भी तकरीब के लिए मदऊ किया जा रहा है। आज न्यू टाउन में बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर के मकाम पर बीजेपी के 9 मुंतखब एमएलए की मीटिंग होगी जिसमें लेजिस्लेटिव पार्टी के रहनुमा का इंतखाब किया जाएगा। इस दौरान वजीर दाखिला अमित शाह मरकजी मुशाहिद के तौर पर मौजूद रहेंगे। हलफबरदारी की तकरीब के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इम्कान है कि इस दौरान तकरीबन 4,000 पुलिस एहलकार तैनात रहेंगे क्योंकि ये तकरीब रविंद्र जयंती के मौके पर मुनक्किद हो रही है, इसलिए सकाफती प्रोग्रामों को खसूसी तवज्जो दी जा रही है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: तमिलनाडु में नई सरकार की तश्कील में ताखीर हो रही है। अक्सरियत के लिए दरकार 118 अरकाने असेंबली की हिमायत हासिल करने की खातिर बातचीत का सिलसिला जारी है। इधर डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के नए मुंतखब अरकाने असेंबली की लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंगें हुई। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इडप्पडी पलनीस्वामी को पुदुचेरी में लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। इधर आज वीसी के सीपीआई और सीपीआईएम के नए मुंतखब अरकान की अहम मीटिंग होने वाली है जिसमें वाहिद सबसे बड़ी पार्टी तमिलका वेट्री कड़गम टीवीके को हिमायत देने या न देने के मामले पर गौर किया जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: तमिलनाडु में कल डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के अरकान असेंबली की मीटिंग के साथ ही सूरत हाल ने दिलचस्प सियासी रुख इख्तियार कर लिया है। इन दोनों पार्टी ने अक्सरियत साबित करने के मामले पर गवर्नर के फैसले को सराहा है। डीएमके पार्टी के तर्जमान टीकेएस एरनगोवन ने कहा है कि वाहिद सबसे बड़ी पार्टी का ये फर्ज है कि वो अपनी अक्सरियत साबित करे। उन्होंने ये भी कहा कि डीएमके सरबरा एम के स्टालिन ये नहीं चाहते कि किसी तरह का कोई आईनी बहरान पैदा हो। इधर पुदुचेरी के लिए ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सेक्रेटरी ए अंबड़गन ने अरकाने असेंबली की मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि फैसला करने का इख्तियार पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को दिया गया है। उन्होंने अक्सरियत साबित करने के मामले पर रियासत के गवर्नर के फैसले की सताइश की और कहा कि मौजूदा सियासी

0: अपने फौजी अड्डों और फजाई हदूद तक अमरीकी फौज की रिसाई को मुअत्तल कर दिया है। इसकी वजह से सदर डोनाल्ड ट्रंप को आबनाए हुरमुज से बहरी जहाजों को बाहिफाजत निकालने के अपने मंसूबे को बीच में ही तर्क करना पड़ा है। अमरीका के दो अहदेदारान ने इस बात की तस्दीक की है। सऊदी अरब का ये कदम खलीज के खित्ते से मुतालिक अमरीका की हिकमत अमली के लिए एक बड़ा धचका माना जा रहा है, क्योंकि अमरीका के एक कलीदी इलाकाई इत्तेहादी ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के शुरू होने से पहले ही इस कार्रवाई में रुकावट डाल दी है। उधर सदर ट्रंप ने अपनी तवज्जो सिफारतकारी की जानिब मरकूज कर दी है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: ईरान जंग के खात्मे के लिए अब 14 निकात पर मुश्तमिल अमरीका की तजवीज का जायजा ले रहा है। उधर ईरान के वजीर खारजा अब्बास राखची ने मुजाकरात और सिफारतकारी की जरूरत पर जोर दिया है। मुजवजा फ्रेमवर्क में लड़ाई रोकने और हतमी मुजाकरात के लिए 30 दिन की मुद्दत की बात कही गई है, जबकि ईरान के एटमी प्रोग्राम समेत बुनियादी मामलों पर बाद में बातचीत की जाएगी। सिफारती मंजरनामा अब भी गैर वाज़े है, क्योंकि ईरान ने किसी भी तरह की शराइत कबूल करने की तस्दीक नहीं की है और ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने भी इस बारे में कुछ मीडिया इत्तलात को फर्जी करार देकर इन्हें मुस्तरद कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: रूस ने यूक्रेन के साथ लड़ाई में आज से जंग बंदी का ऐलान किया है, जो दूसरी आलमी जंग में साबिका सोवियत यूनियन की फतह के 81 साल पूरे होने के जश्न के दौरान 10 मई तक जारी रहेगी। सदर व्लादिमीर पुतिन के फैसले के तनाजुर में रूस की वजारत दिफा ने ये ऐलान किया है। इससे कबल यूक्रेन के सदर जेलेंस्की ने येरेवन में एक सरबराह मीटिंग में ये कहा था कि हो सकता है कि रूस मॉस्को के रेड स्क्वायर पर मुमकिन ड्रोन हमलों के अंदेशे से 9 मई की यौम फतह परेड के दौरान फौजी साजो सामान की नुमाइश करने से गुरेज करे। अमरीका की तिजारती उमूर से मुतालिक एक विफाकी अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए 10% आलमी महसूलात गैर कानूनी हैं। न्यूयॉर्क में बैनुल अक्वामी तिजारत से मुतालिक अदालत के 3 जजों के पैनल ने यह फैसला सुनाया कि सदर ट्रंप ने तिजारत से मुतालिक कानून के तहत सदर को दिए गए कांग्रेस के इख्तियारात से तजावुज करके इकदाम किए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने केरलम, माहे, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, मशरकी राजस्थान, साहिली कर्नाटक और रायलसीमा में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। IPL क्रिकेट में कल रात लखनऊ के ईकाना स्टेडियम में बारिश से मुतासिरा मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने DLS तरीकाकार के तहत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स को जीत के लिए 213 रन का निशाना मिला था और उसने 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन बनाए। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
2: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी अखबारों ने मगरबी बंगाल असेंबली तहलील होने से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की इस हवाले से सुर्खी है, ममता बनर्जी हुकूमत का 15 साल दौर खत्म, गवर्नर RN रवि ने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल किए। बिहार काबीना में तोसी से मुतालिक खबर भी सभी अखबारों में नुमाया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, सम्राट काबीना की तोसी, 32 वज़रा को गवर्नर ने ओहदे का हलफ दिलाया। ऑपरेशन सिंदूर का एक साल मुकम्मल होने की खबर को भी सभी अखबारों ने अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि ऑपरेशन सिंदूर दहशत गर्दी के खिलाफ भारत का सख्त रद्द अमल और आवाम की यकजहती की अलामत।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मगरबी बंगाल के लिए BJP के मरकजी मुशाहिद अमित शाह कोलकाता में नए मुंतखब पार्टी अरकान असेंबली के साथ मीटिंग करेंगे, ताकि कानून साज पार्टी के लीडर का इंतखाब किया जा सके। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के मामले पर तातुल बरकरार है। VCK, CPI और CPIM के अरकान असेंबली हिमायत देने या न देने के मामले पर आज मीटिंग करेंगे। वियतनाम के सदर तोलैम ने मुंबई में एक कारोबारी फोरम के दौरान आलमी सप्लाई निजाम में भारत वियतनाम रोल पर जोर दिया है। सऊदी अरब ने अपने फौजी अड्डों और फजाई हदूद तक अमरीकी फौज की रिसाई को मुअत्तल कर दिया है। और IPL क्रिकेट में ईकाना स्टेडियम में लखनऊ

0: सुपर जायंट्स ने डीएलएस साप्ते के तहत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 421 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: इधर आइए, इधर
3: इधर।
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सम्राट मंत्रिमंडल के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा। निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। विजय कुमार सिन्हा को कृषि और डॉक्टर दिलीप जायसवाल को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी। उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव को वित्त, संजय सिंह टाइगर को उच्च शिक्षा और शेषी सिंह को मिली उद्योग तथा खेल विभाग की कमान। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन सुचारू बनाने के दिए निर्देश। और पटना के सावन कुमार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली अंडर 18 हॉकी सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। सम्राट मंत्रिमंडल के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास गृह, सिविल विमानन समेत 6 प्रमुख विभाग हैं। इसके अलावा वे सभी विभाग भी मुख्यमंत्री के पास रहेंगे जो किसी को आवंटित नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री तथा बिजेंद्र प्रसाद यादव को वित्त और वाणिज्य कर विभाग का मंत्री बनाया गया है। विजय कुमार सिन्हा को कृषि विभाग तथा डॉक्टर दिलीप जायसवाल को राजस्व और भूमि सुधार विभाग सौंपा गया है। एक रिपोर्ट।
1: मंत्रिमंडल में श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास और सूचना तथा जनसंपर्क विभाग की कमान सौंपी गई है। संजय सिंह टाइगर

को उच्च शिक्षा और विधि, दामोदर रावत को परिवहन और नीतीश मिश्रा को नगर विकास और आवास तथा सूचना प्रावैधिकी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अशोक चौधरी को खाद्य उपभोक्ता और संरक्षण विभाग, भगवान सिंह कुशवाहा को योजना विकास, अरुण शंकर प्रसाद को श्रम संसाधन, युवा रोजगार और कौशल तथा मदन सहनी को मध्य निषेध और निबंधन विभाग मिला है। वहीं संतोष कुमार सुमन को लघु जल संसाधन, रत्नेश सादा को आपदा प्रबंधन, कुमार शैलेंद्र को पथ निर्माण, केदार प्रसाद गुप्ता को पर्यटन और लखिंद्र रोशन को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सुनील कुमार को ग्रामीण कार्य विभाग, जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और नंद किशोर राम को डेयरी, मत्स्य और पशुपालन संसाधन विभाग सौंपा गया है। मंत्रिमंडल में शामिल नए शैलेश कुमार और बूलो मंडल को ऊर्जा, डॉक्टर प्रमोद कुमार को खान एवं भूतत्व और कला एवं संस्कृति तथा मिथिलेश तिवारी को शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इसके साथ ही रामचंद्र प्रसाद को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, रामकृपाल यादव को सहकारिता, संजय सिंह को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, संजय कुमार को गन्ना उद्योग और दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग का मंत्री बनाया गया है। वहीं मंत्री बनाई गई 5 महिलाओं में लेसी सिंह को भवन

0: प्रमोद कुमार को खान एवं भूतत्व और कला एवं संस्कृति तथा मिथिलेश तिवारी को शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इसके साथ ही रामचंद्र प्रसाद को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, रामकृपाल यादव को सहकारिता, संजय सिंह को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, संजय कुमार को गन्ना उद्योग और दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग का मंत्री बनाया गया है। वहीं मंत्री बनाई गई 5 महिलाओं में लेसी सिंह को भवन निर्माण, श्रेयसी सिंह को उद्योग और खेल, रमा निषाद को पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की कमान दी गई है, जबकि शीला कुमारी को विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा तथा श्वेता गुप्ता को समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समाचार कक्ष से मैं अनुपम कुमार।
1: मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कुल 35 मंत्री हैं। इनमें भाजपा के 16 और जदयू के 15 मंत्री हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 2, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 मंत्री बनाए गए हैं। मंत्रिमंडल में मिथिला से 7 जबकि तिरहुत, मगध और अंग क्षेत्र से 6-6 मंत्रियों को जगह मिली है। वहीं शाहाबाद से 3, सीमांचल, कोसी और सारण से 2-2 मंत्री बनाए गए हैं। 14 जिलों के किसी भी क्षेत्र को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। इस मंत्रिमंडल में मंत्रियों की औसत उम्र 55 वर्ष है। इनमें सबसे अधिक 80 वर्ष के बिजेंद्र प्रसाद यादव हैं, जबकि श्रेयसी सिंह सबसे कम उम्र 35 वर्ष की हैं। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का कल विस्तार किया गया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मनोनीत मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनमें 7 नए चेहरों जदयू के निशांत कुमार, श्वेता गुप्ता, शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल और भाजपा के मिथिलेश तिवारी, नंदकिशोर राम, कुमार शैलेंद्र तथा रामचंद्र प्रसाद को कैबिनेट में शामिल किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, गिरिराज सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, सतीश चंद्र दुबे और राजभूषण चौधरी निषाद मौजूद रहे। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने। किशनगंज जिले के पोठिया में जल्द ही केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी है कि प्रशिक्षण केंद्र के लिए 110 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। इस केंद्र में 1000 जवानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य के अंचल कार्यालयों के राजस्व कार्यों की अब प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के सचिव जयसी ने बताया कि प्रत्येक दिन शाम 3:30 बजे से 4 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक होगी। बैठक में अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस दौरान ऑनलाइन दाखिल खारिज और ई मापी समेत अन्य मामलों की प्रगति की जाँच की जाएगी। परिवहन विभाग ने वाहनों पर जाति सूचक शब्द लिखने पर जुर्माने का प्रावधान किया है। विभाग ने वाहन मालिकों को 1 महीने में ऐसे शब्दों को हटाने का निर्देश दिया है। नियम का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत ₹2000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। देश के न्यायालयों में दर्ज मामलों में आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल करने के मामले में बिहार देश भर में 12वें स्थान पर है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 के दौरान राज्य में कुल 3,52,155 मामले दर्ज हुए। इसके मुकाबले 81.3% मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार के दीवानी और कुछ प्रकार के आपराधिक मामलों का निपटारा होगा। वहीं पटना उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में इस बार लोक अदालत में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की भी सुनवाई होगी। अदालत में 90 दिन पूर्व कटित ट्रैफिक चालान मामलों का निपटारा भी किया जाएगा। इसके साथ ही लोक अदालत में बैंक ऋण, बिजली वाद, वाहन दुर्घटना बीमा और श्रमवाद जैसे मामले आपसी सहमति के आधार पर निष्पादित किए जाएंगे। शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: इधर आइए, इधर
3: इधर।
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।

0: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
0: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना,
2: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
0: शुभ वाणी,
1: लाभवाणी,
3: आकाशवाणी।
4: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में आयोजित समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
5: यह आरक्षण प्रणाली वर्ष 1986 में शुरू की गई और पिछले 40 वर्षों में इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इसकी क्षमता का व्यापक विस्तार किया गया है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसी परिवर्तन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह ऐप यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस पर वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। अक्षत कुमार वेद्यान के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: प्रदेश के 208 प्रखंडों के नए डिग्री महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई से शुरू होगा। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रोशन की ओर से जारी पत्र के अनुसार शुरुआती चरण में इन महाविद्यालयों का अस्थायी संचालन संबंधित जिलों के चिन्हित विद्यालयों में किया जाएगा। इसके लिए किसी प्रकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। विभाग के अनुसार महाविद्यालयों के अस्थायी परिसर और भवन का निर्माण भूमि उपलब्ध होने पर चरणबद्ध तरीके से कराया जाएगा। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के एक वीडियो को फर्जी बताया है। इस वीडियो में श्री जायसवाल को यह कहते हुए दिखाया गया है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष में 4 राफेल विमान खो दिए। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो AI से बनाया गया एक डीप फेक है और इसे पाकिस्तान समर्थित सोशल मीडिया अकाउंट द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। सरकार ने नागरिकों से इस तरह की सामग्री पर विश्वास न करने और हमेशा सरकारी स्रोतों से इसकी पुष्टि करने का आग्रह किया है। पटना के सावन कुमार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली अंडर-18 हॉकी सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किए गए हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन 15 से 20 मई तक मध्य प्रदेश के भोपाल में किया जाएगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन ने कहा कि गोलकीपर सावन का भारतीय टीम में चयन होना प्रदेश के लिए गर्व की बात है। IPL क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का महा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। वहीं कल खेले गए मुकाबले में लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, किशनगंज, अररिया और सहरसा समेत आसपास के जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। विभाग के अनुसार प्रदेश में 11 मई तक आंधी बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। इसके बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की संभावना है। खगड़िया जिले के चौथम थाना क्षेत्र के गुलेरिया गांव से पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पटना जिले के पचमहला थाना क्षेत्र की पुलिस ने ठगी करने के आरोप में 2 युवकों को 10 लाख रुपए नकद के साथ गिरफ्तार किया।

वहीं अररिया जिले के महलगांव थाना क्षेत्र के पचौली गांव में पुलिस ने साइबर ठग गिरोह के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह का मुख्य सरगना मौके से फरार हो गया। पटना जिले के दानापुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने 11 कारतूस और 1 पिस्टल के साथ एक युवक को पकड़ा है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशक जोखिम कम करने वाले प्लेटफॉर्म IRRA का उपयोग तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। सेबी ने कहा है कि शेयर बाजारों की सिफारिश पर यह फैसला लिया गया क्योंकि प्लेटफॉर्म की संरचनात्मक रूप से आवश्यकता नहीं रह गई थी। सेबी ने कहा है कि अक्टूबर 2023 में शुरू किए गए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अब बहुत कम हो रहा था। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रियों के शपथ ग्रहण से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने ताजपोशी शीर्षक से लिखा है, निशांत समेत 32 मंत्रियों ने शपथ ली। दैनिक जागरण इसी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखता है, सम्राट की टीम में डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर समेत कई उद्यमी भी शामिल। प्रभात खबर ने लिखा है, पश्चिम बंगाल में गवर्नर ने ममता बनर्जी को किया बर्खास्त, विधानसभा भी हुई भंग, आज तय होगा नाम, नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कल। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, फर्जी कागजात पर इंश्योरेंस कंपनी के 10 लाख का गबन, वकील गिरफ्तार। आज अखबार की सुर्खी है, अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर बड़ी सहमति बनी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सम्राट मंत्रिमंडल के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए, विजय कुमार सिन्हा को कृषि और डॉक्टर दिलीप जायसवाल को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी। उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव को वित्त, संजय सिंह टाइगर को उच्च शिक्षा और शेषी सिंह को मिली उद्योग तथा खेल विभाग की कमान। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन सुचारू बनाने के दिए निर्देश। और पटना की सावन कुमार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली अंडर 18 हॉकी सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
6: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।

0: राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मई 2026 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दरभंगा।
1: सब श्रोता लोकन के सूचित कल जात कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दरभंगा द्वारा शनि दिन यानी 9 मई 2026 क राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन कल जा रहा है।
0: एही लोक अदालत में ट्रैफिक चालान,
1: आपराधिक समझौता योग्य मामला,
0: दीवानी विवाद,
1: मोटर दुर्घटना दावा,
0: पारिवारिक विवाद, तलाक का छोड़कर
1: बिजली पानी आ टेलीफोन बिल,
0: श्रम विवाद, संगही बैंक ऋण से संबंधित मामला का आपसी सहमति से त्वरित निपटारा कैल जाए।
1: लोक अदालत जतः भेटत सरल सुलभ आ किफायती न्याय,
0: तखन आओ एही सुनहरा अवसर का लाभ उठावी आ अपन लंबित मामला का समाधान पावी।
1: बेसी जानकारी के लिए संपर्क करू जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दरभंगा।
0: राष्ट्रीय लोक अदालत, न्याय अहाँ का द्वार।

अब एक सूचना सुनिए। मिथिला विश्वविद्यालय में होगी शीघ्र ही 561 अतिथि शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति। कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने आवेदन आमंत्रण हेतु ऑनलाइन पोर्टल का किया शुभारंभ। 23 मई तक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि। आवेदन की हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय में 30 मई तक होगा जमा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के 14 विषयों में कुल 561 पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन पोर्टल पर 23 मई तक आवेदन, जबकि इसकी हार्ड कॉपी 30 मई तक विश्वविद्यालय में आमंत्रित किए गए हैं। कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप कुल सचिव द्वितीय डॉक्टर कुमार मनीष, विश्वविद्यालय भौतिकी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद नौशाद आलम, प्रोफेसर और भौतिकी प्राध्यापिका पूजा अग्रवाल, नियुक्ति कोषांग के सहायक गौतम सिंह तथा आईटी सेल के मोहम्मद हसन आदि उपस्थित थे। ये चयन प्रक्रिया पूरी तरह अस्थायी है। ऐसे शिक्षकों को 1,500 रुपये प्रति वर्ग की दर से अधिकतम 50,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा।

चयनित अभ्यर्थी 11 मई या बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना की अनुशंसा पर नियमित सहायक प्राध्यापक नियुक्त होने तक कार्यरत रहेंगे। अभ्यर्थियों की योग्यता एवं सेवा शर्त राज्य सरकार के संकल्पों एवं कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित परिनियमों के अनुसार लागू होगी। स्नातकोत्तर में न्यूनतम 55% अंक निश्चित है, जबकि आरक्षित वर्गों एवं दिव्यांगों को 5% अंकों की छूट दी जाएगी। साथ ही नेट, JRF या समकक्ष सेट स्लेट परीक्षा में उत्तीर्णता जरूर है। वहीं PhD उपाधि धारकों को नियमानुसार नेट सेट से छूट दी जाएगी। 1 जनवरी 2026 तक आवेदक की अधिकतम अवस्था 55 वर्ष निर्धारित है। विश्वविद्यालय की विज्ञापन के अनुसार हिंदी में 89, मैथिली में 11, अंग्रेजी में 75, दर्शन शास्त्र में 4, अर्थशास्त्र में 70, भूगोल में 4, इतिहास में 89, मनोविज्ञान में 7, भौतिकी में 6, रसायन शास्त्र में 18, वनस्पति विज्ञान में 14, जंतु विज्ञान में 30, गणित में 17, राजनीति विज्ञान में 60, समाजशास्त्र में 60 तथा वाणिज्य में 7 स्थान अर्थात कुल 561 पद रिक्त हैं। परिस्थितिवश रिक्तियों की संख्या में बदलाव भी किया जा सकता है। विशेष जानकारी विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.lnmu.ac.in पर प्राप्त की जा सकती है। उप कुल सचिव डॉक्टर कुमार मनीष ने बताया, इस विज्ञापन के आलोक में 1 मई से ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 23 मई निर्धारित है, जबकि उस आवेदक की हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी 30 मई 2026 तक रजिस्टर्ड डाक या कुरियर के माध्यम से विश्वविद्यालय कार्यालय में भेजना अनिवार्य है।

बाखुदा तुम हो हुस्न फितरत का आईना, तुम हो हुस्न फितरत।

قلب ارشد کی بس صدا تم ہو، قلب ارشد کی بس

खुदा ने वरफाना लक जिक रख फरमाया।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, दिन के 10 बजे हैं और ये समय हमारे फिल्मी गीतों के सफर का। तो श्रोताओं, लीजिए सफर का आनंद उठाइए इस गीत के साथ।

ये गलियां ये चौबारा। जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म प्रेम रोग का गीत। और लीजिए सफर का अगला गीत सुनिए, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर ने ही, और हमने लिया है फिल्म जाने मन से।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म जाने मन का गीत। और लीजिए श्रोताओं, आप सुनिए सफर का अगला गीत, जिसे स्वर दिया है महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर ने। हमने लिया है फिल्म धूल का फूल से।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म धूल का फूल का गीत, और लीजिए श्रोताओं अब सुनिए महेंद्र कपूर के स्वर में फिल्म हमराज का ये गीत।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है और आप शामिल है हमारे साथ फिल्मी गीतों के सफर में। श्रोता हूँ, अभी आप सुन रहे थे फिल्म साजन चले ससुराल का गीत, जिसे स्वर दिया था कुमार शानू और अलका याग्निक ने। अब लीजिए श्रोताओं, सफर का अगला गीत सुनिए, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर ने और हमने लिया है फिल्म गीत

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है और आप शामिल हैं हमारे साथ फिल्मी गीतों के सफर में। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म हमराज का ये गीत, जिसे स्वर दिया था लता मंगेशकर ने। और लीजिए अब सुनिए फिल्म प्यार तो होना ही था का ये गीत, जिसे स्वर दिया है आशा भोसले और उदित नारायण ने।
1: मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई, अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

धीरे धीरे मचल है दिले बेकरार। जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म अनुपमा का ये गीत, जिसे स्वर दिया था लता मंगेशकर ने। और लीजिए श्रोताओं, सफर का अगला गीत सुनिए, जिसे हमने लिया है फिल्म सफर से, स्वर मुकेश के हैं।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं लीजिए अब सफर का यह अंतिम गीत सुनिए, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर ने और हमने लिया है फिल्म मेरे हम सफर से।

मेरा परदेशी न आया। जी हाँ श्रोताओं, लता मंगेशकर के गाए फिल्म मेरे हम सफर के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का सफर अब यहीं संपन्न हुआ जाता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की कुछ पल प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। सभा को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। कलाकार हैं विश्व मोहन भट्ट। इनसे सुनिए मोहन वीणा, राग देशालाप, विलंबित रचना विलंबित द्रुत रचना 3 ताल।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
2: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
1: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
3: तुम नाचो रस बरसी।
1: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: स्याह तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता भक्ति और आस्था के साथ प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

हवाओं से होकर कुछ आवाजें गईं दूर दूर तक रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगे जिन तक पहुंची वे बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवां हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो, उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए कार्यक्रम में। हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: हमर गर्दन काटि लेल आ अपने बनल मालू
1: गुआ सुपारी के कहल जात अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माटिक सुगंध के सहेजित मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: भोर होते उठि जाओ, किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घुराय लगैत अछि, ऊर्जा आबयवला काल्हि लेल
4: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
5: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहि हैत तो खेती नहि हैत, आ खेती जँ नहि हैत उपजा नहि हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
6: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
7: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
8: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आबि रहल छी। एक क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
1: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
1: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अरे वह फिर से आप

0: आपका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
1: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
0: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
1: जी,
0: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
1: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
0: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं, यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
1: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी जी जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
0: जी श्रोताओं, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
1: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
0: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
1: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
0: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
1: जी,
0: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
1: जी।
0: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
1: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
0: जी श्रोताओं, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है
1: जी,
0: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है ये, यानी माउना केया
1: जी।
0: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है
1: जी।
0: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
1: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया। आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
0: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें
1: जी।
0: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है, इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है
1: जी। समुद्र की गहराई के 3 भाग हैं, सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
0: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहां समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहां पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
1: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहां पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहां कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है।
0: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओं, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
0: 8800-440-559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
0: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम, शीर्षक है रविंद्रनाथ टैगोर।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविंद्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
0: विश्व शिक्षक रविंद्रनाथ टैगोर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमूर्चित पुण्यतीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युष्कल भंगा विंध हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश, गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त

0: गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
1: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो, पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है। कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
0: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद

0: आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखीं।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों, सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: ₹20 जुलाई 1905 अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: आमार सोनार बांग्ला आमी तोमाए भालोबाशी, चिरदिन तोमार आकाश तोमार बाताश आमार प्राणे बाजाए बाशी।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूं, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।

रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है।

0: वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
1: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
2: आमादेर शांति निकेतन,
1: सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
3: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
1: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
3: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
0: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
1: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
3: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
0: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं एक कवि हूं, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
3: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
1: स्पेनिश, जर्मन,

अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़ित ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। अभी आप सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। श्रोताओं, ये वक्त है फिल्म संगीत का और इस समय आप सुनते हैं नए फिल्मी गाने।

ये गीत था फिल्म बॉबी ऋषि की लव स्टोरी का। स्वर एवं संगीत कावेरी का और गीत लिखा था प्रसून जोशी ने। अब सुनिए फिल्म दोनों का ये गीत अरमान मलिक के स्वर में। गीत लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत से सजाया है शंकर एहसान लॉय ने।

फिल्म गदर 2 का गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज़ में। सईद कादरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया था मिथुन ने। आइए अब सुनते हैं फिल्म काकुड़ा का ये गीत गुलजार सिंह एवं अदिति पॉल की आवाज़ों में, जिसे बोल दिया है मनोज यादव ने और संगीत गुलजार सिंह का।

नीरज श्रीधर एवं श्रुति धस्मना को आप सुन रहे थे फिल्म हाउसफुल 5 में। सोम के लिखे इस गीत को संगीत दिया था व्हाइट नॉइज कलेक्टिव ने। अब सुनिए फिल्म दिले नादान का ये गीत फिल्म हाउसफुल 5 से ही। गायक कलाकार हैं मधुवंती बागची एवं सुमंतो मुखर्जी। गीत लिखा है कुमार ने और संगीत व्हाइट नॉइज कलेक्टिव्स का।

ये गीत था फिल्म आज़ाद का, जिसे गाया था अरिजीत सिंह एवं अमित त्रिवेदी ने। अगला गीत सुनिए फिल्म मनमर्जियां का, भूमि त्रिवेदी एवं राहुल जैन की आवाज़ों में।

फिल्म मनमर्जियां का गीत अभी आप सुन रहे थे भूमि त्रिवेदी एवं राहुल जैन की आवाजों में। काशी कश्यप एवं मुकेश मित्रा का गीत था और संगीत दिया था काशी रिचर्ड ने। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुत है बहनों को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार, और नारी संसार को लेकर आज उपस्थित हैं आपकी रेडियो दोस्त आरती।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम नारी संसार में। अभिवादन स्वीकार करें अपनी रेडियो सखी आरती का। श्रोता सखी, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगी, प्रसन्न होंगी और खुशहाल होंगी। और इस समय आप अपने सारे काम काज निपटा कर रही होंगी इंतजार अपने पसंदीदा कार्यक्रम नारी संसार का। तो बहनों, अब आपका इंतजार हुआ ख़त्म, मैं आ गई हूँ आपसे ढेर सारी बातें करने। साथ ही सुनवाएंगे आपको प्यारे प्यारे गाने और हर दिन की तरह आज भी हम आपको वार्ता सुनवाएंगे रेडियो सखी विजेता जी से। पर उससे पहले करते हैं कुछ बातें। सखी बहनों, आज के दौर में बेटियां किसी से

पीछे नहीं है। पढ़ाई से लेकर करियर बनाने तक लड़कियां हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती नज़र आ रही है। वही बेटियों को कामयाबी दिलाने में माता पिता का भी अहम योगदान रहता है। जी हाँ, प्रत्येक माता पिता का ये नैतिक दायित्व होता है कि वे अपनी प्यारी दुलारी बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाए ताकि वे कोई नौकरी या व्यवसाय करके आत्मनिर्भर बन सके। इससे वे आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी और स्वयं को किसी से कमज़ोर नहीं समझेगी। इस प्रकार उसे किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे। कई बार एक माँ को अपने बच्चों की छोटी छोटी ज़रूरतों को भी पूरा करना पड़ता है जो किसी हिसाब में नहीं आ पाते हैं। बेटी यदि पढ़ लिखकर आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं होंगी तो इसे उसे इन समस्याओं से दो चार नहीं होना पड़ेगा। बहनों, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें अपने फैसले खुद लेना सिखाए। इससे होता क्या है कि अपने फैसलों के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगी और सारी ज़रूरतें या फिर सारी ज़रूरी फैसले खुद ले सकेंगी। जब बेटियां अपने फैसले खुद लेना सीख जाएंगी तो जाहिर है इस दौरान उनके फैसले गलत भी हो सकती है। ऐसे में बेटियों को हर कदम सोच समझकर फैसला लेना सिखाए, साथ ही पिछले बातों से सीखकर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। बहनों, मैं आपको बता दूं कि कई बार समाज या परिवार के दबाव में आकर ज़्यादातर लड़कियां लाइफ के साथ समझौता कर लेती हैं। ऐसे में बेशक लड़कियों को रिश्तों की कदर करना सिखाए, साथ ही साथ उन्हें अपने हक के लिए आवाज़ उठाना सिखाए और प्रोत्साहित करना भी सिखाए। कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं जो अमूमन बेटियों को लाड़ दुलार करने के बावजूद उन्हें अपनी आंखों के आगे रखना पसंद करते हैं, यानी कि अपने आसपास से रखना पसंद करते हैं। ऐसे में ज़्यादातर लड़कियां को अकेले घर से बाहर जाने की आज़ादी नहीं होती, जिसके चलते लड़कियों को दुनियादारी की ज़्यादा समझ नहीं हो पाती है। इसलिए बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें बेटों की तरह घूमने फिरने की आज़ादी देने की कोशिश करें। तो बहनों, बातें आगे और भी करेंगे, उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा फिल्म संगीत।

आपसे बातचीत कर रहे थे बेटियों की शिक्षा और आत्मनिर्भर बनाए। अब हम चलते हैं अगले चर्चा की ओर। बहनों, मातृत्व दिवस हर साल मई माह में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, उनका सम्मान करना, उनका निस्वार्थ प्रेम, बलिदान और समर्पण को भी याद करना है। इसको मनाने का उद्देश्य महिलाओं की मातृत्व सुरक्षा को बढ़ावा देना है, नवजात शिशु तथा उनकी रक्षा करना है। हर माँ को सुरक्षित गर्भावस्था और प्रसव के दौरान, साथ ही हर समय हर महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की ज़रूरत है, खासकर गर्भवती महिलाओं को। हम महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो अपने स्वास्थ्य के साथ साथ बच्चे और परिवार की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा पाते हैं। जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है तो हमें हर काम करने में अच्छा लगता है और बेहतर ढंग से कर पाते हैं। महिलाओं के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना न केवल उनके शरीर के लिए बल्कि पूरे परिवार की खुशहाली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहनों, कामों के बीच बीच में खुद के लिए समय निकालना सीखें। सबसे पहले सुबह का नाश्ता करना न भूलें। सुबह का नाश्ता हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप चाय या कॉफ़ी की जगह कोशिश करें एक गिलास गुनगुना पानी जरूर पिए। हो सके तो अंकुरित अनाज जैसे चना, मूंग, पोहा और उपमा या फिर दलिया ओट्स जैसे हल्का फुल्का नाश्ता भी आप कर सकती हैं। दोपहर का भोजन में संतुलित, ताज़ा और प्रोटीन से भरपूर भोजन लें। मौसमी फलों और सब्जियों का सेवन करें। रात का भोजन हल्का सुपाच्य और सोने से 2 से 3 घंटे पहले करें, साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। हमारे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा समय अपने लिए ज़रूर निकालें और व्यायाम करें। जैसे पैदल चलना, सीढ़ी चढ़ना और ध्यान भी आप कर सकती हैं। इसके लिए 10 से 15 मिनट का समय ज़रूर निकालें। व्यायाम के लिए ये समय खास करके रखें। आप किसी भी टाइम व्यायाम कर सकती हैं। इसके साथ ही बहनों, अगर आप गर्भावस्था में हैं तो सामान्य दिनों के हिसाब से आपको अपने भोजन और स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत है। गर्भवती महिलाओं को अपने आहार में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और फोलिक एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थ लेना होता है। आप किसी अनुभवी, मतलब कि आप अपने सास, ननद या फिर माँ बहन से भी आप राय विचार कर सकती हैं या आप डॉक्टर से परामर्श ले सकती हैं। साथ ही तनाव से बचे और सकारात्मक रहे। इसके अलावा आराम करें और याद रखें, डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई न ले। मातृत्व दिवस पर ही नहीं बल्कि हर दिन हर समय महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथ ही हर बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करें, इसका भी ख्याल रखें। सम्मान केवल एक दिन तक सीमित नहीं हो बल्कि उनकी भावनाओं का आदर करना और उनकी देखभाल करना आपकी आदत होनी चाहिए। तो बहनों, बातें आगे और भी करेंगे, उससे पहले आपको सुनवाते हैं वार्ता। वार्ताकार है हमारी रेडियो सखी विजेता, तो आइए सुनते हैं इनसे वार्ता।

नमस्कार श्रोताओं, एक छोटी मुलाकात अंक में आज मैं उपस्थित हूं आपकी रेडियो सहेली विजेता। श्रोताओं, आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रही हूं, उसका संबंध सीधा हमारी आर्थिक स्थिति से जुड़ी है। जी हां श्रोताओं, आज हम बात करेंगे छोटी छोटी बचत की आदत हमारे लिए कितनी फायदेमंद होती है। श्रोताओं, यदि हमें अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य देना है, हमारा कल सुनहरा हो, ये ध्यान रखना है, तो हमें अपने अंदर बचत की आदत को विकसित करना होगा। जी हाँ, जीवन में की गई छोटी छोटी

छोटी बचत हमें बड़े बड़े लाभ देती है, जिससे कि हमारा भविष्य सुनहरा हो सके, हमारे सपने पूरे हो सके। तो बहनों, यदि आप चाहती हैं कि आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, उनका करियर अच्छा हो, पर आपकी आमदनी कम होने की वजह से आप अपनी आशाओं को दबा कर रख लेती हैं, तो ऐसा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। बस थोड़ी सी सूझबूझ के साथ चलें और अपने सपने को पूरे। अब जैसे कि हम राशन का सामान महीने भर का एक बार में ही मंगवा लें, थोड़ा थोड़ा मंगवाने से पैसे अधिक खर्च होते हैं, ऐसे में बचत की गुंजाइश नहीं होती। आमदनी जितना हो उसी में घर का सारा खर्च निकालने की कोशिश करें। हर महीने कुछ राशि जमा करने की कोशिश करें, जिससे वो हमारे बुरे वक्त में काम आ सके और हमें किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत ना पड़े। हर काम के लिए, जैसे डॉक्टर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, राशन का सामान, इन सब के लिए अलग अलग जगह पैसे रखें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम उसका सही उपयोग कर सकें। जितना आमदनी हो उसका एक हिस्सा फौरन अलग करके रखें और एक तरह से उसे भूल जाएं। और ये ध्यान में रखें कि जितना पैसा हमारे पास है हमें उसी में सारा काम निकालना है। ऐसा करने से बचे हुए पैसे आड़े वक्त काम आते हैं। कपड़े खरीदना हो, सब्जी खरीदना हो, राशन का सामान खरीदना हो, तो बाज़ार में थोड़ा घूमें, जहाँ अच्छा और सस्ता दिखे वहीं से खरीदारी करें। कोई बड़ा काम यदि करना हो तो उसके लिए पहले से ही थोड़े थोड़े पैसे जुटाने शुरू कर दें, ताकि जब वो काम सामने आए तो उसे करने में जो पैसे लगेंगे वो अचानक हमें नहीं जुटाना पड़े। मतलब हर काम योजनाबद्ध तरीके से करें। प्लानिंग के साथ किया गया काम हमारे भविष्य को उज्जवल बनाता है। बहनों, इस तरह की छोटी छोटी बचत हमें बड़े बड़े लाभ देती है। बचत किए गए पैसे बच्चों को अच्छा भविष्य देने के काम आती है, बीमार पड़ने पर काम आती है, शादी ब्याह के समय में काम आती है। तो बचत की आदत बहुत ही अच्छी होती है। इस आदत को, इस हुनर को हमें अपने अंदर समाहित करना चाहिए, ताकि हमारा भविष्य सुनहरा हो सके, हमारे सारे सपने पूरे हो सके। तो अब हम अपने शब्दों को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद। तो अब मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
5: बहनों, अंतराल के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम नारी संसार में, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी आरती। तो बहनों, अंतराल में जाने से पहले आप वार्ता सुन रही थी। वार्ता का विषय था बचत करना सीखे। वार्ताकार थी विजेता सिन्हा। तो बहनों, अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा फिल्म संगीत।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
5: बहनों कार्यक्रम के अंत में अब दीजिए अपने सखी आरती को विदा, नमस्कार। कार्यक्रम नारी संसार, अभी आप सुन रहे थे, समय है समाचार का, तो चलिए दिल्ली केंद्र चलते हैं और सुनते हैं हिंदी समाचार बस कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। श्री शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज गुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारा हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय

0: की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबुधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। श्री मिश्री ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबुधाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि तीनों देशों ने परस्पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात 2 दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशा नायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार, निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। महानिदेशालय ने बताया है कि परीक्षण किट की कमी से यह संकट और गहरा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

अब से कुछ ही देर में, यानी कि 1:10 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश का प्रसारण समय होगा 1:15। दिन के 2 हम आपको सुनवाएंगे प्रादेशिक समाचार और 2:05 पर इलाकाई खबरें हमारे पटना केंद्र से। रोजगार सूचना आप सुनते हैं दिन के 2:10 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप एक बार पुनः ले सकेंगे 2:30 पर।

हमारी दूसरी सभा के अंतर्गत शाम 5 बजे आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे तरुण कुसुम। 5:40 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। 6:10 पर होगा हफ्तावार जायजा। 6:15 पर

मैथिली संवाद, जिसे हम अपने पटना केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे शाम 6:25 पर। 6:30 पर होगा कार्यक्रम गाम घर। इसमें आज आप सुनेंगे नन्ना मुन्ना राही। खेती गृहस्थी का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 7:00। 7:30 पर प्रादेशिक समाचार और 7:47 पर जिले की हलचल आप सुनेंगे।

हमारी दूसरी सभा के अंतर्गत आप 7:52 पर सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार का प्रसारण समय होगा रात्रि 8:15। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम साहित्य की। इसके सूत्रधार होंगे अमलनाथ ठाकुर, प्रस्तुतकर्ता विनीत कुमार ठाकुर। रात्रि 10:00 हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा, प्रस्तुत है देशभक्ति गीत, स्वर महेंद्र कपूर का।

देशभक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे। श्रोताओं, वक्त है फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश का, जिसमें आप सुनते हैं सदाबहार नगमे। फरमाइश करने वाले हैं औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश, फुटानी चौक नरहन एस्टेट से भाई फटफटिया झा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बेबी आराध्या, ललन मिश्रा, मिसर मोहल्ला नरहन बाजार से बीके मिश्रा, गुंजन परासर, डब्बू मिश्रा, छोटू मिश्रा, लल्लू सुरगनैया, मोहम्मद कालिम दीवाना, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद अमन, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद रेशान, सोनी बेगम, खरबुल बिन शाह, ता प्रवीण, शमा प्रवीण, डॉली प्रवीण, मेहश प्रवीण, इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म खानदान का ये गीत मोहम्मद रफ़ी एवं आशा भोसले की आवाज़ों में, जिसे लिखा है राजेश कृष्ण ने और राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत दिया है रवि ने।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश और आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नूतन। अगली फरमाइश आई है फिल्म महबूब की मेहंदी के गाने के लिए, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, गीत लिखा है आनंद बख्शी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और हमारे फरमाइशकर्ता हैं नाहर मंटोला से कादिर अली, जाकिर अली, हामिद अली, जाविर अली, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद सलमान, कनीरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका,

वंश बत्ता। इसी गाने के लिए एक और चिट्ठी आई है, वंदना नगर एयरपोर्ट रोड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से पूजा बबीता शोभा रेखा रघुवंशी स्वाति प्रयाग चौधरी परी ललिता खर्चे गणेश खर्चे कार्तिक नारायण भाऊ खर्चे। तो सुनिए आपकी फरमाइश का ये गीत, फिल्म है महबूब की मेहंदी।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म महबूब की मेहंदी का गीत। अगले गीत की फरमाइश हमारे पास आई है फिल्म धर्मवीर के गाने के लिए, जिसे गाया है लता मंगेशकर एवं किशोर कुमार ने और संगीत दिया है आनंद बख्शी ने। पत्र लिखने वाले हमारे श्रोता हैं जातुका किशनपुर से आलम दिलकश, शवाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम, चांदनी नाज, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक, मीका बीरक, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा ने। तो सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

लता मंगेशकर एवं मोहम्मद रफ़ी को अभी आप सुन रहे थे फिल्म आन मिलो सजना में। बोल आनंद बख्शी के और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और सुनने वाले हमारे फरमाइशकर्ता थे बैंक रोड भगवतीपुर वार्ड नंबर 3 से संतोष कुमार मुखिया, रानी अनीता राज, गरिमा राज, अभिषेक कुमार, अविनाश कुमार अमरेंद्र, वंश प्रसाद, बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाहटा, दीक्षा कुश मूणत, दिलीप सिंह पवार, पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप आरजू एवं गुड्डू ने। अगली फरमाइश हमारे पास आई है फिल्म आपकी कसम के गाने से गाने के लिए, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, संगीत आर डी बर्मन का, और इसे सुनना चाहा है झंझारपुर लंगड़ा चौक से हरेराम पासवान, काजल कुमारी, जयशंकर पासवान, रानी कुमारी, ताजपुर मोरवा से भाई कारी राय कारी, पुंज राय, राज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, फारूख भाई, ललन मिश्रा, जयंत कुमार बैरागी, ऐश बाग पीली कॉलोनी लखनऊ से मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, पलक पंखुड़ी, कांति निकेतन राजनगर मधुबनी से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, दादा ठाकुर, रुद्र गुप्ता, रिद्धि गुप्ता, नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, बहू रुबीना परवीन, नवासा अरहान बाबू, नवासा हमजा बाबू, नवासा तैमूर बाबू, नवासी हुमैरा नाज, नवासी सुमेरा नाज, नवासी अबीहा नाज, साजिया शाहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख, चीना शेख, नवासा मुजम्मिल बाबू। तो सुनिए फिल्म आपकी कसम का ये गीत किशोर कुमार एवं लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत

0: 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। श्रोताओं, आप भी अपनी पसंद के गाने हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारा पता है आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन नंबर 846004। इस कार्यक्रम में अगली फरमाइश आई है फिल्म नगीना के लिए, जिसे गाया है अनुराधा प्रौडवाल ने।

जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से कुमारी वंदना, परी गणेश मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, स्वाति प्रयाग चौधरी, ललिता खर्चे, नारायण भाऊ खर्चे। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। लेवाखेल मोहल्ला चांदूर विश्वासे नारायण भाई खरसे, ललिता खरसे, परी खरसे, गणेश कार्तिक भाऊ खरसे, स्वाति चौधरी, प्रयाग चौधरी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, नतरेंगी से भगवत भागवत वर्मा। तो सुनते हैं ये गीत।

फिल्म नगीना के इसी गीत के साथ फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश को यहीं पे समाप्त करते हुए आपको लिए चलते हैं अपने पटना केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार एवं इलाकाई खबरें बस कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे के बाद मंत्रियों के कार्यभार संभालने का सिलसिला शुरू हो गया है। भूमि सुधार और राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने आज अपना कार्यभार संभाला। उन्होंने कहा कि यह विभाग काफी चुनौतियों भरा है। श्री जायसवाल ने कहा कि विभाग के लंबित सार्वजनिक कार्यों को पूरा करने के लिए ठोस कार्यनीति बनाई जाएगी। इधर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री मदन सहनी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि शराब की तस्करी और स्थानीय स्तर पर शराब के निर्माण को रोकना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने भी कार्यभार संभाल लिया है। श्री कुमार ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक आम लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वे काम करेंगे। इधर पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश, समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता समेत कई अन्य मंत्रियों ने भी कार्यभार संभाल लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से उनके पटना स्थित आवास पर मुलाकात की। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मुलाकात के दौरान विस्तारित मंत्रिमंडल को लेकर मुख्य रूप से चर्चा हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्राथमिक स्वास्थ्य टीमों के लिए एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को सुदृढ़ करना है, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक समय और जन केंद्रित स्वास्थ्य देखभाल सुविधा उपलब्ध हो सके। मंत्रालय ने कहा है कि पूरी तरह से प्रशिक्षित और आत्मविश्वास से भरे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कर्मी चिकित्सा व्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार लाने, उच्च स्तरीय अस्पताल इकाइयों पर बोझ कम करने और स्वास्थ्य प्रणाली में लोगों का विश्वास मजबूत करने के लिए आवश्यक हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण की परीक्षा का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आज पटना में प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का जत्था पटना कॉलेज से पीपीएससी ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था, तभी जेपी कोलंबर के पास पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी छात्रों के घायल होने

0: की खबर है। इधर पटना स्थित IGIMS में नर्सिंग छात्राओं का आज दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी छात्राओं का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर परीक्षा में फेल किया गया है। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार के दीवानी और कुछ फौजदारी मामलों का निपटारा किया जाएगा। पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों का भी निष्पादन लोक अदालतों के माध्यम से किया जाएगा। लोक अदालत के लिए सभी जिला और अनुमंडल न्यायालयों में विशेष पीठों का गठन किया गया है। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि लोक अदालत के आयोजन की जानकारी देने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जागरूकता रथों को रवाना किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज के ठाकुरगंज में सबसे अधिक 54.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज पटना, बेगूसराय, भोजपुर, गया, नवादा, मधुबनी और सीवान समेत 25 जिलों में धूल भरी आंधी चलने के साथ बारिश की संभावना है। इधर मौसम विभाग ने बक्सर, भोजपुर, सीवान और रोहतास जिले में अगले कुछ घंटों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई है। बक्सर और सीवान जिले में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। रियासत में काबीना की तौसी और महकमों की तकसीम के बाद विजरा के ओहदा संभालने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस्लाहाते एराजी और रेवनू के वजीर दिलीप जायसवाल ने आज अपनी जिम्मेदारियां संभाल लीं। उन्होंने कहा कि ये महकमा काफ़ी चैलेंजों से भरा हुआ है। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि महकमा के जेर इल्तवा अवामी कामों को मुकम्मल करने के लिए ठोस हिकमत अमली बनाई जाएगी। दरी असना, नशाबंदी, एक्साइज और रजिस्ट्रेशन के वजीर मदन सहनी ने भी अपना चार्ज संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि शराब की स्मगलिंग और मुकामी सतह पर शराब की तैयारी को रोकना उनकी अव्वलीन तरजीह होगी। वजीर सेहत निशांत कुमार ने भी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। जनाब कुमार ने कहा कि वो आम लोगों की बेहतर सेहत की सहूलत तक रसाई को यकीनी बनाने के लिए काम करेंगे। इधर वजीर सियाहत केदार प्रसाद गुप्ता, वजीर तालीम मिथिलेश तिवारी, वजीर पंचायती राज दीपक प्रकाश और वजीर समाजी बहबूद श्वेता गुप्ता समेत कई दीगर विजरा ने भी अपने अपने ओहदों का चार्ज संभाल लिया है। वजीर आला सम्राट चौधरी ने आज साबिक वजीर आला और JDU के सदर नीतीश कुमार से उनकी पटना वाक़ रहायशगाह पर मुलाकात की। मौसूला इत्तलात के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान बुनियादी तौर पर तौसीई काबीना के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा ने प्राइमरी हेल्थ टीमों के लिए एक मरबूत तरबियती प्रोग्राम शुरू किया है। इसका मकसद पहली सफ के हेल्थ केयर वर्कर्स को मजबूत बनाना है ताकि समाज के आखिरी फर्द तक जामे और अवामी मरकज निगाह वाली सेहत की देखभाल की सहूलत दस्तयाब हो सके। वजारत ने कहा है कि मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता और पुर एतमाद प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स तिब्बी निज़ाम के मेयार को बेहतर बनाने, आला सतह के अस्पतालों पर बोझ कम करने और निज़ाम सेहत में लोगों के एतमाद को मजबूत करने के लिए ज़रूरी हैं। असातज़ा तकर्री के चौथे मरहले के इम्तहान का इश्तहार जल्द अज जल्द जारी करने के मुतालबे को लेकर उम्मीदवारों ने आज पटना में एहतजाज किया। उम्मीदवारों का काफिला पटना कॉलेज से शुरू होकर BPSC ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था, तभी JP गोलंबर के पास पुलिस ने मुजाहरीन को रोकने की कोशिश की। एहतजाज करने वाले तलबा बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में कई मुजाहरीन के जख्मी होने की खबर है। इधर पटना में वाकई IGIMS में नर्सिंग की तालबात का एहतजाज आज दूसरे

0: दिन भी जारी है। एहतजाज करने वाली तालिबात का इल्ज़ाम है कि उन्हें जानबूझकर इम्तहान में फेल किया गया है। पटना हाई कोर्ट समेत रियासत की तमाम अदालतों में कल कौमी लोक अदालत का इनाकाद किया जाएगा। लोक अदालत में बाहमी समझौते की बुनियाद पर मुख्तलिफ किस्म के सिविल और कुछ क्रिमिनल मुकदमात का तस्फिया किया जाएगा। पटना हाई कोर्ट की हिदायत पर ट्रैफिक चालान से मुतालिक मामलात को भी लोक अदालतों के ज़रिए हल किया जाएगा। लोक अदालत के लिए तमाम ज़िलाई और सब डिवीज़नल अदालतों में खसूसी बेंचेस तश्कील दी गई हैं। इधर हमारे नुमाइंदों ने बताया कि लोक अदालत के इनाकाद की इत्तला देने और लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए बेदारी रथ रवाना किए गए हैं। मगरबी हवा के असर से रियासत में बारिश के हालात बने हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान किशनगंज के ठाकुरगंज में सबसे ज़्यादा 54.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम की पेशगोई में कहा गया है कि आज पटना, बेगूसराय, भोजपुर, गया, नवादा, मधुबनी और सिवान समेत 25 अजला में धूल भरी आंधी चलने के साथ बारिश का इम्कान है। इधर महकमे मौसमियात ने बक्सर, भोजपुर, सिवान और रोहतास अजला में अगले कुछ घंटों में गरज चमक और आसमानी बिजली गिरने के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। बक्सर और सिवान अजला के कुछ मकामात पर झालाबारी की वार्निंग भी जारी की गई है। महकमा ने लोगों से मोहतात रहने और ख़राब मौसम के दौरान महफूज मकामात पर रहने की अपील की है। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन अब खत्म होता है।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ष पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है रोजगार सूचना।

484 डॉक्टर सहित 5,528 स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती होनी सुनिश्चित हुई है। बिहार में सरकारी अस्पतालों में मानव संसाधन में बढ़ोतरी को लेकर विशेषज्ञ चिकित्सकों से लेकर स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सरकारी अस्पतालों में जल्द ही 484 विशेषज्ञ डॉक्टरों सहित 5,528 कर्मियों की बहाली की जाएगी। राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत इन स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली होगी। बहाली की प्रक्रिया अगले 1.5 महीने में शुरू होगी। इनमें नर्सिंग सेवा के लिए 3,950 स्टाफ नर्स एवं 1,094 लैब टेक्नीशियन की बहाली शामिल है। पीएचसी से जिला अस्पताल तक होगी तैनाती। स्वास्थ्य विभाग के तहत संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पतालों तक में इन डॉक्टरों एवं पारा मेडिकल कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इससे पीएचसी व सीएचसी में डॉक्टरों एवं पारा मेडिकल कर्मियों की कमी पूरी की जाएगी। विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विभाग के वेबसाइट पर जाकर क्लिक करें।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: भोर होते उठ जाओ कि एकता इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगते फूल

0: प्रकृति में घुराए लगैत अछि। ऊर्जा आबवला काल्हि लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
2: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहि हैत तो खेती नहि हैत, आ खेती जो नहि हैत उपजा नहि हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
5: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:15 होने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय

0: वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
3: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
4: इंडिया कंट्रीब्यूट्स,
3: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सके।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए

0: हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से

0: 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ष पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म प्यार किया तो डरना का क्या कहिए गीत, उदित नारायण की आवाज में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है जतिन ललित ने।

फिल्म आ का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में, शब्द रचना शैलेंद्र की और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है फिल्म चल मेरे भाई का, ये इस गीत से, जिसे लिखा है समीर ने और संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने और आवाज़ें हैं कुमार सानू एवं अलका याग्निक की।

फिल्म पराया धन क्योंकि तभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। आइए अब सुनते हैं फिल्म एक दूजे के लिए का ये गीत लता मंगेशकर एवं अनूप जलोटा की आवाजों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा से फिल्म संगीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश है फिल्म गुलाम का ये गीत अलका याग्निक एवं कुमार सानू की आवाज़ों में, जिसे लिखा है समीर ने और संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

अलका याग्निक एवं कुमार सानू की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म गुलाम का गीत। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बज चुके हैं। हमारी ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे शाम 5 बजे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हौसला हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। मुश्किलें बार बार राहें रोकती हैं, लेकिन उम्मीद की किरण लक्ष्य तक पहुंचा ही देती है। और हर मुश्किल हो जाती है दूर जब बातें करके मन हो जाए हल्का, और बातें करने के लिए सखियों से बेहतर और क्या है, है ना? तो बस आज अपनी सखियों से बातें करने के लिए, उनका मन हल्का करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। आज आपकी सखी से होंगी बातें बहुत सारी। तो पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बजी फोन की घंटी और देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, फोन के उस तरफ। आज कौन से सखी से बात हो रही है हमारी, क्या नाम है आपका?
1: जी मेरा नाम संगीता अग्रवाल है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप संगीता जी?
1: मैं गुड़गांव मुंबई से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, मुंबई में रहती हैं आप तो?
1: हाँ जी।
0: जीवन में इन दिनों क्या चल रहा है संगीता जी, कैसी हैं आप?
1: हाँ एकदम बढ़िया, जीवन भी अच्छा चल रहा है।
0: तो आप बढ़िया बात है। और आप घर पर ही रहती हैं, गृहिणी हैं या किसी तरह का कोई काम करती हैं, क्या करती हैं आप?
1: वैसे तो गृहिणी हूँ, लेकिन थोड़ा पार्ट टाइम में मैं अपना इंडियन हैंडीक्राफ्ट का मेरा छोटा सा बिजनेस है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। इंडियन हैंडीक्राफ्ट मतलब कि हस्तकला, कहाँ से लेती हैं, घर पर ही कुछ बनाती हैं या कहीं से मंगवाते हैं आप, किस तरह से होता है ये सब?
1: हाँ जी, मैं मतलब

0: थोड़ा सा ट्रेडिंग जैसे आप समझ सकते हैं उसे, जयपुर से रिलेटेड है मेरे सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम।
1: अच्छा तो ये, अच्छा तो ये जो सामान होते हैं आप जयपुर से मंगाती हैं सारी चीजें, तो गिफ्ट आइटम्स होते हैं या इनको फिर किस तरह से बेचती हैं? और ये भी बताइए कि आप कैसे पसंद करती हैं, क्योंकि आप तो रहती हैं मुंबई और आपका अधिकतर जो सामान है वो आता है जयपुर से, तो किस तरह से ये जो चुनाव आप करती हैं कि क्या पसंद आएगा आपके कस्टमर को, ये सब कैसे होता है?
0: आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, तो व्हाट्सएप पे सारे पिक्स आ जाते हैं हमारे होलसेलर के यहाँ से, मैन्युफैक्चरर के यहाँ से, तो उसमें भी सेलेक्ट करते हैं। और साल में दो बार हमारा विजिट रहता है जयपुर में।
1: अच्छा,
0: तो वहाँ पे सिलेक्शन करके आते हैं ज्यादातर।
1: अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। और किस तरह का लोग आपके अनुभव के अनुसार किस तरह की चीजें लोग ज्यादा पसंद करते हैं?
0: मोस्टली ना जैसे पेंटिंग्स है, टेबल के ऊपर रखने के जो आर्टिफैक्ट्स रहते हैं वो रहते हैं, और फ्रोज वगैरह वगैरह रहते हैं, तो उस तरीके के आइटम लोग बहुत पसंद करते हैं
1: जी।
0: ज्यादातर टेबल वेयर आइटम जो रहते हैं
1: वो ज्यादा पसंद किए जाते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है ना कि आप रहती हैं मुंबई और जो आजकल का डिजिटल जमाना है इसका पूरा इस्तेमाल कर रही हैं आप, और जयपुर से सामान मंगवा करके यहाँ मुंबई में बेचती हैं, मतलब आप सेल आउट करती हैं। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाएं?
0: गीत तो वैसे मुझे पुराने काफी पसंद है, उसमें से एक मेरा पसंदीदा गीत है ओ मेरे दिल के चैन, जो कि फिल्म है मेरे जीवन साथी से
1: जी,
0: और मुंबई की भागदौड़ में चैन तो कम ही है, इसलिए गीत सुनकर मैं थोड़ा चैन मिल जाता है
1: जी। तो आपकी पसंद का ये गीत आपको प्रस्तुत करते हैं, और लीजिए चैन के थोड़े से लम्हे।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, आज किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं पूनम मंडोवरा जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ।
0: मध्य प्रदेश जबलपुर से क्या बात है? तो पूनम जी, क्या चलता है आपके जीवन में और क्या कर रही हैं आप इस वक्त?
1: शिक्षिका हूँ केंद्रीय विद्यालय में।
0: अरे वाह, आप एक शिक्षिका हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती हैं, तो कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं आप?
1: कक्षा 6 से 10 तक मैं विज्ञान की शिक्षिका हूँ।
0: विज्ञान की शिक्षिका कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक?
1: दसवीं।
0: तो ये आप कितने सालों से पढ़ा रही हैं?
1: मुझे 14-15 वर्षों का अनुभव।
0: 14-15 वर्षों का, यानी कि बहुत सारा एक अनुभव आपके साथ इकट्ठा हो गया होगा, तो काफी सारा समय आपको पढ़ाने में निकल जाता होगा।
1: जी बिल्कुल, अभी नया सिलेबस भी आपने सुना भी होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो हम लोग का सिलेबस की बुक्स भी हर साल लगभग बदल रही है।
0: अच्छा अच्छा, तो इसके लिए तो आपको भी तैयारी करनी होती होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, हमें भी कई वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ती हैं। कई बार हमें घर से सप्ताह भर 10 दिन के लिए बाहर रहना पड़ता है, घर में भी हमें करीब 1 या 2 घंटा पढ़ाई करनी पड़ती है।
0: जी देखिए, सब जानते हैं कि पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना होना या शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी तो है ही, लेकिन हमेशा लगातार पढ़ते रहना पड़ता है। तो आप फिर खुद भी पढ़ती हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाती हैं, कैसे ये सब चीज आप मैनेज करते हैं?
1: जी सहेली आपने बिल्कुल सही बोला, ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमें ना समय का प्रबंधन बड़े अच्छे से करना पड़ता है।
0: जी ये बात तो बिल्कुल सही कही,
1: अपने दोनों बच्चों पर भी ध्यान देना है, साथ ही मुझे विद्यालय के बच्चों पर भी बराबरी से ध्यान देना है, तो मुझे समय का प्रबंधन बड़े सकुशलता से करना पड़ता है।
0: जी बिल्कुल
1: सही कहूँ तो मैं कुछ टीवी वगैरह ज्यादा मोबाइल वगैरह नहीं देखती हूँ। अच्छा, आपके विविध भारती के गाने और विविध भारती की जो मुझे न्यूज है
0: जी जी
1: वो बड़ी अच्छी लगती है, तो अपने रिक्रिएशन या अपने एंजॉयमेंट के लिए वो जरूर मैं सुनती हूँ।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और दोनों बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं या किसी और भी अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी वो सब पसंद करते हैं भाग लेना?
1: हाँ जी बिल्कुल, आपने सही बोला, मेरे दोनों बच्चे चेस के बड़े शौकीन हैं।
0: चेस खेल के शौकीन है, क्या बात है। घर में खेला जाता है या स्कूल में ही सिखा रहे हैं आप बच्चों को?
1: नहीं, स्कूल में सिखाते हैं, साथ में मैं उन्हें बाहर चेस क्लब मैंने ज्वाइन करा रखा है, और अभी रिसेंटली वो दोनों रीजनल चेस स्पोर्ट्स मीट में गए थे
0: जी,
1: और दोनों का सिलेक्शन नेशनल्स के लिए हुआ है।
0: क्या बात है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। पूनम जी बताइए, इस बात पर कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे याद हो कि बारात मूवी का कोई सा भी गाना सुना दीजिए।
0: तो चलिए सुनते हैं फिल्म यादों की बारात से ये गीत।

0: अंतराल हुआ खत्म और चलिए देखते हैं कि सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: बड़ौदा से।
0: बड़ौदा से? बड़ौदा से कौन सी सखी बात कर रही है? क्या नाम है आपका?
1: बड़ौदा से रमीला बेन बोल रही हूँ।
0: बड़ौदा से रमीला बेन।
1: हाँ।
0: कैसा है बड़ौदा रमीला बेन?
1: ओ बड़ौदा तो बहुत बड़ा है, मगर हम तो बड़ौदा में छोटा सा गांव है सुंदरपुरा, वहाँ से बोल रही हूँ।
0: अच्छा, ये बड़ौदा से पास में है सुंदरपुरा?
1: हाँ, सुंदरपुरा गांव है
0: जी। तो इन दिनों तो बहुत गर्मी होगी वहाँ?
1: बहुत सारी गर्मी है, रहने को भी कहाँ जाए ऐसा लगता, बर्फ गिरे तो अच्छा है ऐसा।
0: लेकिन आम के भी तो मजे ले रहे होंगे आप?
1: हाँ, आम हमारे पास में बगीचे है बहुत सारे, वहाँ आम के नए कितने भी सारे आम है।
0: अच्छा,
1: मेरी शादी हुई थी 1990 में, अभी 36 के उतर के 37 में हो जाएगी।
0: 36 वर्ष पूरे हो गए आपके शादी के?
1: हाँ,
0: तो ये तो बहुत बड़ा एक साथ आपका आपके पति के साथ है, तो इतने सालों का क्या अनुभव रहा आपका, क्या कहना चाहेंगे आप हमारी सखियों को?
1: हमारे तीन बच्चे हैं।
0: तीन बच्चे? अरे वाह।
1: हाँ,
0: तो बहुत सारे जी।
1: हाँ, और वो प्रियंका।
0: अच्छा, तो जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे आपने इतने सालों में?
1: अरे बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं।
0: आपके आने वाले जिंदगी में सुखद और खुश भरे दिन आए, ये शुभकामना करते हैं। रमीला बेन, आज आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे पति को तो क्रांति पिक्चर का गाना बहुत अच्छा लगता है,
0: तो क्रांति फिल्म का एक गीत आपके लिए, ये हम विविध भारती की ओर से सुनिए।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का दीपा जी हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: जी आपने अपना नाम नहीं बताया, आपने हमारा नाम तो पहचान लिया।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदा नाका इंदौर से।
0: हसीना भी तो बताइए क्या हाल है इंदौर के, और इंदौर का तो जो भोजन है खाना वहाँ का बहुत मशहूर है, सराफा, 56 दुकानें।
1: जी बहुत मशहूर है मैडम यहाँ पर, और साफ सफाई में नंबर वन है।
0: जी हाँ, ये तो नंबर वन है हमारे देश का साफ सफाई में इंदौर शहर। तो क्या चल रहा है इन दिनों आपके जीवन में?
1: अभी तो जॉब पे थे मैडम, तो आपको कॉल कर रहे थे, और गर्मी बहुत ज्यादा है गर्मी।
0: जी तो आप जॉब करती हैं?
1: जी सिलाई करते हैं।
0: सिलाई का काम करती हैं, तो घर से करती हैं या कहीं जाती हैं आप?
1: दुकान पे जाना पड़ता है।
0: अच्छा, इन दिनों में आप अपना ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो सर पे कपड़ा वगैरह बांध के निकलती हैं ना आप?
1: हाँ, 9 बजे निकल जाते, इतनी ज्यादा 9 बजे इतनी गर्मी नहीं देती है, मगर फिर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: हाँ ये बात तो सही है। और जब काम से आप फुर्सत पाती हैं तो आप क्या करती हैं अपने फुर्सत के क्षणों में?
1: अधिकतर सुनते हैं मैडम, रेडियो के बिना तो हम लोग एक पल नहीं रह पाते। कहीं पर भी फोन इन का भी काम आता ना, सब दूर लगाते रहते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, और देखिए आज आपका कॉल लग भी गया। तो आज हसीना भी आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: इनका नाम है अपना बना लो, और गाने के बोल हैं, इस दिल का नहीं कोई, इस दिल से प्यार करना, देखो कोई प्यार न करना, मरना लेकिन प्यार न करना, ये सुना दीजिए।
0: चलिए लीजिए, पेश है आप ही की पसंद का गीत विविध भारती की ओर से।
2: इस

0: हेलो सहेली।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, किस सहेली से बात हो रही है हमारी?
1: साधना प्रतापगढ़ से।
0: साधना जी प्रतापगढ़ से, कैसी है साधना जी?
1: बहुत अच्छे, अपना बताइए।
0: बस हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और कैसा चल रहा है मौसम प्रतापगढ़ में?
1: बहुत ही अच्छा मौसम है, आपकी तरफ कैसा मौसम है?
0: अच्छा
1: जी, आज मुझे गाना सुन
0: रहा। हाँ बताइए, कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: मिलन फिल्म का गाना है। गाने बोले गुलाबी चुंदरिया लग मुझे नजरिया है, लता जिंदा है।
0: तो चलिए सुनते हैं पिया मिलन का गोरा मुखड़ा गुलाबी चुनरिया, आप ही की पसंद का ये गीत।

0: के बाद हम फिर हाजिर हैं। देखते हैं किस सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका? कौन से सिटी से बात हो रही है हमारी?
1: हमारा है, मेरी नाम है ग्राम बैठी पोस्ट पकड़िया जिला सिंदौली से।
0: जिला सिंदौली से ये कौन से बड़े शहर के पास पड़ता है इमरती जी?
1: ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में सिंदौली शहर पड़ता है।
0: अच्छा, तो वहाँ से बात कर रही हैं। क्या करती हैं इमरती जी?
1: मैं घर में रहती हूँ मैम, मैं ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा, आप देख नहीं सकते, घर पे रहते हैं तो?
1: लेकिन मैं आप लोगों का प्रोग्राम सुनती हूँ हमेशा मैं रेडियो पे।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो
1: और आप लोग आते हैं सर की सहेली में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग हंसते भी तभी अच्छा लगता है।
0: तो वो मुस्कान आप ही सबके लिए होती है और जो बातें होती है हम सब सखियों के लिए तो होती है। जो बात आप लोग लिखते हैं, जो संदेश हम पढ़ के आपको सुनाते हैं, वो चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़े, कुछ नया सीखे, है ना?
1: जी, हर विषय पे आप लोग जानकारियाँ देते हैं, हर विषय की जो बातचीत आप लोग करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता
0: जी
1: है, जानकारियाँ भी मिलती हैं रेडियो के जरिए।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तो इमरती जी बताइए, आज कौन सी फिल्म का गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: राज फिल्म का इतना मैं चाहूँ तुझे, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में गीत है, बहुत अच्छा गीत लगता है मुझे। मैं पुराने सभी तरह के गीत अच्छे लगते हैं, रेडियो पे जैसा भी गाना बजता है वो सभी गाने अच्छे।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं रजनी रावत बोल रही हूँ।
0: रजनी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी, मैं एमपी भिंड जिले से बोल रही हूँ।
0: एमपी भिंड से। रजनी जी, क्या करते हैं आप? गृहिणी हैं या कुछ किसी तरह का काम करते हैं?
1: जी, वैसे तो मैं गृहिणी ही हूँ और घर में ही काम करती हूँ, जो कुछ करना है। बाकी फिल्मी गाने सुनने का बहुत शौक है, पुराने गीत
0: जी।
1: और आपके प्रोग्राम सुनने का शौक है पूरे विविध भारती के।
0: क्या बात है, विविध भारती के आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनती हैं?
1: विविध भारती का एक गीत मालिका है
0: जी,
1: और सबसे अच्छा लगता है मुझे छाया गीत
0: जी। हाँ
1: जी, हाँ। और वो कम से कम मैं 15-20 सालों से मतलब वो कार्यक्रम सुन रही हूँ। मैं छोटे से मतलब मैंने विविध भारती सुना है बचपन से, और मेरी उम्र मतलब लगभग 43 साल होगी
0: जी।
1: मैंने कम से कम 20-25 साल हो गए विविध भारती सुनते सुनते।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: और सखी सहेली सुनती रही मैं
0: जी।
1: सखी सहेली तो बहुत बाद में शुरू हुआ था प्रोग्राम।
0: तो आज रजनी जी कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी, मुझे आशा भोसले के बाद में तीसरी कसम फिल्म का गाना है पान खाए सैया हमारे।
0: तो आशा जी को याद करते हुए सुनते हैं ये आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम झनकार बोल रहे हैं, मुंबई
0: झनकार,
1: से।
0: झनकार मुंबई से, क्या बात है, आपकी तो आवाज में ही एक झनक सुनाई दे रही है झनकार जी।
1: जी बहुत धन्यवाद।
0: तो क्या करती
1: और
0: हैं झनकार आप?
1: आजकल तो मेरी एक कथक टीचर है और श्रीमती नूतन पशुवर्धन, मैं
0: जी,
1: उनको असिस्ट करती हूँ, बच्चों को कथक सिखाती हूँ उनके साथ।
0: क्या बात
1: तो
0: है,
1: मुझे अच्छा।
0: तो आप कथक सिखाती हैं, इसका मतलब है
1: हाँ,
0: कि आपने भी पहले सीखा होगा।
1: मैं बहुत साल से उनके साथ हूँ और अभी भी सीख ही रही हूँ, क्योंकि ये ऐसी विद्या है
0: जी
1: जो चलती रहती है। हम कभी कह नहीं सकते कि हम परांगत हो गए हैं, तो अभी
0: जी
1: भी उनके साथ सीख ही रही हूँ और कुछ
0: जी
1: आया नहीं है ज्यादा। पर हाँ, ये उन्होंने कहा कि थोड़ा मेरी हेल्प करो, साथ में असिस्ट करो, तो मुझे तो बहुत गौरव महसूस हुआ। तो मैं उनके साथ बच्चों को आजकल कथक थोड़ा सिखाती हूँ।
0: बहुत सुंदर बात है, क्या
1: शायद
0: बात
1: आपको
0: है।
1: पीछे घुंघरू सुनाई पड़े होंगे, क्योंकि मैं उसी क्लास में हूँ।
0: अच्छा, आप उसी क्लास में हैं और सिखा रही
1: हाँ,
0: हैं,
1: सीख रही हूँ इस वक्त तो
0: सीख रहे
1: टाइप से
0: हैं।
1: अपनी। हाँ
0: अच्छा, बहुत सुंदर बात है। और जब सिखाती हैं आप, आपने जो सीखा उसी तरीके से आप सिखाती हैं या आपने आपने कोई अपना ही एक तरीका अपनाया है बच्चों को
1: नहीं,
0: सिखाने?
1: शास्त्रीय संगीत भी सीखती हूँ मैं और कथक में भी। एक हम गुरु जो प्रणाली होती है, गुरु शिष्य,
0: जी
1: हम उसी को फॉलो करते हैं। तो इसमें आपको अपना बिल्कुल नहीं डालना होता है, ये
0: जी
1: बहुत संभाल के दी गई विद्याएं होती हैं जो
0: बिल्कुल।
1: गुरु से शिष्यों में जाती है, तो उसको थोड़ा सा संभालना पड़ता है और अपने को थोड़ा पीछे रखना पड़ता है।
0: ये
1: क्योंकि
0: बात
1: हम कुछ
0: आपने,
1: भी करते हैं, सिखाते हैं, हमको हमारे दिमाग में पता है। दीपा जी, मैं आपको बात कर रही हूँ,
0: जी
1: मैं जब बोलती हूँ ना बच्चों के साथ, है तत तत है, तो मेरे दिमाग में मेरी ताई की आवाज होती, गुरु की, कि
0: क्या बात है।
1: वो जैसे बोलती थी थई जोर से मारो, तत लगाओ, तो वो अपने आप मेरे अंदर से मेरे गुरु ही बोल रहे होते हैं। वो ही कोशिश करती हूँ।
0: बिल्कुल
1: अब
0: सही
1: थोड़ी
0: कहा।
1: तो अपूर्णता है, थोड़ा तो है, तो गलती होती होगी, लेकिन ये हम वैसे ही चाहते हैं जैसे है। कम से कम पहले थोड़ा आ जाए, तब हम शायद कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं,
0: जी
1: पर
0: बिल्कुल
1: उस
0: सही।
1: योग्य हो जाए तब कर सकते हैं। अभी मुझे नहीं लगता मैं उस योग्य हूँ।
0: देखिए, गुरु शिष्य परंपरा की यही खूबसूरती है कि कभी भी जो सीखता है विद्यार्थी हमेशा अपने आप को विद्यार्थी ही समझता है और कहीं वो अहम या अहंकार की भावना पनप ही नहीं पाती, है
1: हाँ
0: ना
1: हाँ इसलिए हमारे यहाँ तो शुरू में नमस्कार किया जाता है,
0: जी।
1: जिस जगह हम हैं उस जगह को, अपने गुरु को, सबको नमस्कार करके ही हम क्लास शुरू करते हैं।
0: जी, तो आप कोई छोटा सा तोड़ा टुकड़ा अगर इस वक्त आपको याद है तो बोल के बताएंगी?
1: कोशिश कर सकती हूँ
0: जी
1: और चलिए मैं आपको एक टुकड़ा बोलती हूँ
0: जी
1: जो तीन ताल में है, और मैं बोलती हूँ तो तीन ताल में 16 मात्रा होते हैं, और
0: जी
1: मैं वो आपको टुकड़ा बोलती हूँ। तत तत थुन थुन तिग्दा दिग दिग थई, तत तत थुन थुन तिग्दा दिग दिग थई, तिग्दा दिग दिग थई, तिग्दा दिग दिग थई, ता थई, तत तत थई, तत तत थई, तत तत थई। इसे सादा तोड़ा बोलते हैं, और कथक में जो कई अंग होते हैं, जैसे ठाट है, आमद है, तोड़े हैं, टुकड़े हैं, परन है, तो ऐसा ही ये एक सादा तोड़ा है। और ये बहुत ही शुरू में 2-1 साल बच्चे जब सीखते हैं तो फिर उनको सिखाया जाता है।
0: क्या
1: और
0: बात है
1: आपने एकदम से बोला तो बस मेरे को ये मैंने बोल दिया।
0: जी। तो देखिए, लेकिन आप क्योंकि हमेशा सीख भी रही हैं, सिखा भी रही हैं, तो आपको वो
1: जी
0: मुंह
1: जी
0: जबानी अच्छे से याद है। तो बताइए
1: हाँ
0: झनकार
1: सर,
0: जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं वो एक स्वामी पिचल का है, पल भर में ये क्या हो गया, मुझे
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: अच्छी लगी
0: जी
1: थी फिल्म
0: जी वो
1: शबाना
0: बहुत
1: आज।
0: सुंदर गीत है, तो सुनते हैं आप ही की पसंद का।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मेरा नाम सीमा है।
0: सीमा जी कहाँ से बात कर रही हैं सीमा जी?
1: जी उज्जैन, उज्जैन के पास गांव है पान बिहार।
0: अच्छा सा नाम है पान बिहार, है ना, सुनने में
1: इस अच्छा सा और बड़ा भी है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या करती हैं सीमा जी आप?
1: कुछ नहीं मैडम, मैं तो खेती का काम करती हूँ।
0: खेती का काम? तो ये कोई छोटा काम नहीं है, ये तो बहुत बड़ा काम है और बहुत महत्वपूर्ण भी है ना।
1: महत्वपूर्ण भी, मतलब खेत पे ही शुरुआत खेत से ही होती है हमारे तो सुबह की।
0: तो किस तरह का काम आपका खेत पे रहता है? कोई
1: ये निंदाई खुदाई है, तो कुछ चारा वारा डालना है
0: जी,
1: इसमें पानी देना है।
0: तो वहाँ पे पशु भी हैं?
1: हाँ है ना,
0: क्योंकि आपने चारे की बात की ना, तो वहाँ पे पशु भी हैं
1: ना। है भैंस भैंस है।
0: क्या है वहाँ पर पशुधन में? भैंस है। कितनी भैंसे हैं वहाँ?
1: दो भैंसे हैं और दो गाय हैं।
0: दो गाय दो भैंसे, तो भाई इन्हें भी बहुत ध्यान से रखना होता है ना, बिल्कुल अपने परिवार अपने बच्चों की तरह।
1: बच्चों की तरह रखना पड़ता है उनको, टाइम से पानी पिलाना।
0: जी, तो इन दिनों गर्मी भी बहुत है, तो उनके भी चारा देने का,
1: तो उनको छाया की व्यवस्था भी की है ना।
0: जी अच्छा, बहुत सुंदर बात कि उनके, आप खुद का तो ध्यान रख ही रही हैं, उनके लिए भी छाया की एक अलग से जगह बनाई है जहाँ पे वो छाव में रह सके, बैठ सके।
1: बंदे रहते हैं और उनको चारा पानी पानी वानी टाइम टाइम से पिलाते हैं।
0: जी, तो थक कर जब शाम को घर पे आती हैं, फिर से आप

0: को भोजन बनाना
1: फिर
0: होता
1: वो वहां पे
0: होगा।
1: घर रहे, उसमें घर में अंदर बांध के खिला देते हैं।
0: अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे सीमा जी। आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: जी मैडम, मेरे को वो सुनना है, माँ तो कितनी अच्छी है कितनी भोली है।
0: तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है। तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैम, मैं मनीषा कौशल इंदौर से बात कर रही हूँ।
0: मनीषा जी, इंदौर से। मनीषा जी,
1: मध्य प्रदेश
0: जी, क्या कर रही थी अभी आप फोन लगाने से पहले?
1: मैम, मैंने अभी ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ, सिलाई का काम करती हूँ। मैं
0: सिलाई का काम करती हैं।
1: खुशी इतनी हो रही मुझे कि मेरी कॉल लग गई, पहली बार कॉल लगा मेरा।
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना।
1: क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं हमेशा बोलते थे कि एक बार मैं लगा के रहूंगी, क्योंकि वो हमेशा सखी सहेली सुनते हैं, दिन भर उनका प्रोग्राम चलता रहता है। उनको मतलब शौक है रेडियो सुनने का, तो वो वेडिंग का काम करते हैं, तो वो मतलब चलता रहता है उनका डेली का, तो वो बोलते लगा के देखना, एक बार तो लग ही जाएगा तेरा। बोल
0: के बहुत अच्छा लगा। आप बताइए, आज आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती है?
1: मैम, बहुत प्यार करते हैं तुमसे, सलम वाला गाना सुनवा दीजिए।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, बताइए किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: दीदी मैं बोल रही हूँ कवाई शालपुरा जिला बारा राजस्थान से, प्रेम नगर तिवारी साहब। और दीदी आज मेरा 7 सालों बाद कॉल लगा, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है।
0: 7 सालों के बाद?
1: जी दीदी,
0: बहुत बहुत बधाई आपको प्रेमलता जी, तो बहुत खुशी हो रही होगी आपको।
1: हाँ दीदी बहुत खुशी हो रही है।
0: रेडियो तो सुनती हैं, इसके अलावा आपको क्या पसंद है?
1: दीदी मेरे को तो रेडियो सुनना पसंद है, और मतलब कहीं अपन मतलब कोई मतलब अच्छा धार्मिक कार्यक्रम होते हैं ना
0: जी,
1: उसमें जाना पसंद है मुझे।
0: बहुत अच्छी बात है, तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाए हम?
1: दीदी फिल्म का नाम है गाइड, पिया तोसे नैना लागे रे।
0: तो चलिए सुनते हैं गाइड फिल्म का पिया तोसे नैना लागे रे, आप ही की पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली में बातों का सिलसिला आज बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 02240002462, अंग्रेजी में 02240024662। इसके अलावा 02228670288, यानी 02228670288, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सहेलियों के कॉल लगे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल न करें, ताकि अन्य हमारी सहेलियों को एक अवसर प्रदान हो सके। आज की हेलो सहेली में सहयोग दिया संपादन में नम्रता टिकोड़े ने, तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारे इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो दीजिए दीपा माहेश्वरी को इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतों भरी कहानी सपने में ठिठका इंतजार। इसकी लेखिका है ममता सिंह और वही आपको ये कहानी सुना रही है।
1: उसने आंगन में रखे गमलों को बाहर दरवाजे के सामने रखा, एक निगाह कमरे में डाली, मेन स्विच बंद किया, दरवाजा खींचा, वो बंद हो गया। चाबी पैंट की जेब में डालकर बरामदे तक आ गई थी वो। उसके गुलाबी गाल और नीली आंखों में ज्वार सा नजर आ रहा था। लग रहा था कि आंखें जैसे अब छलकी कि तब छलकी, आंखों में नदी बह रही थी। मैं कार से उतरकर उसकी ओर दौड़ी, उसे हुलसकर गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके ठंडे रिस्पॉन्स से मैं वहीं रुक गई। बेटा, सारी किताबें एक साथ रख ली है ना, अकेले क्यों परेशान हुई? मैं तो आ रही थी ना, मैं रखवा देती। मैंने उसका सूटकेस अपने हाथ में लेते हुए कहा। उसने सूटकेस की ओर देखते हुए हां में सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। मेरा मन कर रहा था उसे अपनी तरफ खींचकर खूब कस के गले लगा लूं, उसका सारा दर्द अपने आंचल में छुपा लूं, लेकिन उसके पथराए व्यवहार से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। डर लग रहा था कहीं इस बार भी मैं इसे खो न दूं। पता नहीं ये कैसी पीढ़ी है, इन्हें ज्यादा प्यार दिखाओ तो ये बिदक जाते हैं, पर इसके नजरिए से सोचती हूं तो इसका बर्ताव ठीक लगता है। इतनी छोटी सी उम्र में इसने कितनी बड़ी दुनिया देख ली, दुखों के न जाने कितने रंग इसकी नाजुक हथेली में लगे। ऊपर वाला भी कभी कभी किसी के साथ बड़ी नाइंसाफी करता है। अनुष्का की आंखें मुझसे मिली और फिर सड़क की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में बहुत सारे प्रश्न तैर रहे थे। अनुष्का ने अपनी आंखें मेरी आंखों पर चिपका दी। हां, कहने के साथ साथ वो सारे प्रश्न मेरे कानों में गूंजने लगे जो मुझसे पूछे गए थे। इस मशीनी युग में रिश्ते से ज्यादा कागज की अहमियत है। मम्मी, मेरी ज्यादातर किताबें वहीं पड़ी हैं, मैं एक बार फिर आऊंगी ले जाने के लिए। अनुष्का की आवाज बहुत मध्यम थी। बिल्कुल बेटा, तुम जब चाहोगे आ जाना, मैं तुम्हें लेकर आऊंगी। कहते कहते मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था, आवाज भर्रा गई थी। मैं डर गई थी कि कहीं इसी घर में अकेले रहने का यह फैसला न कर ले। इस ख्याल से ही मेरा दिल बैठ गया। 3 बरस मैंने अनुष्का के बिना कैसे बिताया ये मेरा दिल ही जानता है। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच।

अनुष्का पूरे रास्ते कार की खिड़की से बाहर देखती रही। कई बार उसने टिश्यू पेपर से आंखों को दबाया, शायद भर आए पानी को सुखा रही थी। उसकी आंखें गोलाई में ऐसे घूम रही थीं जैसे सड़क के किनारे दुकानों पर लिखी हर इबारत को वो पढ़ रही हो, जबकि वो तो सिर्फ अपने आप से गुफ्तगू कर रही थी। मैं उसकी ओर देखकर कुछ कहना चाहती थी, पर जैसे जबड़ा लॉक हो जाता। डर लग रहा था कहीं उसे कोई बात बुरी न लग जाए और वो मेरे साथ चलने से इनकार कर दे। इन 3 बरस में बचपन के सुनहरे रंग से अलग किशोरावस्था का चंपई रंग इसके गालों पर निखर आया है। हालात ने इसे जल्दी से सयानी बना दिया है। पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकी और वक्त के उस एक पल से मैं बाहर आ गई। देखो बेटा अनुष्का, ये देखो, ये तुम्हारा कमरा है। अनुष्का ने जब दहलीज पार की तो एक अजीब सी गंध ने उसे घेर लिया। घर सजा धजा, दीवारों पर वही तस्वीरें टंगी थीं, रस्किन बॉन्ड, रुडयार्ड की जंगल बुक और भी उसकी पसंद की तमाम किताबें कमरे में जस की तस सजी थीं। उसकी आंखों के सामने पुराने घर की टूटी अलमारी, माँ के कपड़ों से भरी संदूक और रसोई में रखी चूल्हे की आंच पर खाना पकाती माँ का चेहरा घूम गया। लाचार, बेबस, जीर्ण माँ से वो असंख्य सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन वो कोई सवाल वो पूछ नहीं सकी और माँ विदा हो गईं। वो इस दुनिया से चली गईं। कई बार अनुष्का ने पूछना चाहा, हर बार वो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर टाल देती। वैसे भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझते इंसान के प्रति दया भाव ज्यादा होता है, प्रेम कम। अनुष्का कभी अपने इस कमरे को देख रही थी जो उससे कहीं छूट गया था, कभी वो उस घर को याद कर रही थी जिसे अभी अभी छोड़कर आई थी। दरवाजे पर खड़ी उसकी आंखों में समंदर सा ज्वार था, आंखों में जंगल था जो उसके मन की वीरानी को बयां कर रही थी। चौखट के उस पार वही घर था, दीवारें, खिड़कियां, आंगन, सब कुछ वैसा ही, लेकिन उसका मन मानो हजार टुकड़ों में बटा पड़ा था। उसने गहरी सांस ली। क्या मैं सचमुच लौट आई हूं? लेकिन किस रूप में? कहीं फिर यहां से कहीं और तो नहीं जाना पड़ेगा मुझे? कब मेरी किसको जरूरत पड़ जाए और मैं उसके काम आ जाऊं? आखिर उस घर में अपनी मां की जरूरत बनकर ही तो मैं गई थी ना। मां के लिए मैं सिर्फ जरूरत थी। उसकी आंखों में स्मृतियों का सागर उमड़ आया। ये वही घर था जिसे छोड़कर अनुष्का भटकती रही, कानूनी लड़ाइयों और अनचाहे सवालों के बीच अब फिर उसी चौखट पर आ खड़ी थी। उसका मन भारी हो रहा था।

लौट कर माँ ने मुझे अपनाने का दावा किया था, वही माँ जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा अपना लिया। किसी ने मेरे भीतर की ज्वाला को जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे जज्बात का फैसला हर बार कानून करेगा। मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी, कितने दिन रहूंगी, इसका निर्णय कानून ने किया। आखिर मुझे क्यों, माँ के अधूरेपन का बोझ मुझे क्यों ढोना पड़ा? आखिर मैंने क्या गुनाह किया था, क्या बात थी आखिर? मैंने उसके कंधे को सहलाया, उसने अपनी पलकें उठाई, मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में अपनापन पाकर मुझे राहत मिली, सुकून मिला। अनुष्का की पनीली आंखों में टूटी हुई स्मृतियों का गुबार था जिसे मैं लगातार देख रही थी। फिर अचानक मैंने उसे खूब कस के सीने से लगा लिया और उसके भीतर का झरना फूटकर देर तक बहता रहा और मेरे भीतर की ममता देर तक उसे भिगोती रही। मैं उसे बहुत देर तक सीने से लगाए बैठी रही। फिर धीरे धीरे उसने दरवाजे के भीतर कदम रखा, हर कोना मानो उसकी चुप्पी सुन रहा था। एक मेज पर रखी पुरानी चादर, दीवार पर धूल जमी तस्वीरें और बंद खिड़की से आती ठंडी हवा, सब कुछ अपना सा लगा। वो सीधी खिड़की तक गई, उसने खिड़की खोली, धूप का एक सुनहरा टुकड़ा कमरे में भराया। उसने सूटकेस का जिप खोला, उसमें से कुछ वो तलाशने लगी। कुछ किताबें उसी घर में छूट गई हैं, सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे अपने सामान सूटकेस से बाहर निकालने लगी वो। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और मैं रसोई में चली गई। अनुष्का के लिए फ्रैंकी और ब्रेड टोस्ट लेकर लौटी तो देखा वो अपनी पुरानी ड्राइंग बुक पलट रही थी। वाटर कलर का डब्बा और ब्रश मेज पर रखा हुआ था। कितनी जुनूनी है ये लड़की। सचमुच अजीब है। सेकंड क्लास में पढ़ती थी तभी कितनी सुंदर पेंटिंग करने लगी थी। संस्कृति मंत्रालय के कला विभाग में एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इतनी छोटी सी उम्र में इसने फर्स्ट प्राइज ले लिया था। जिंदगी का वो सबसे खुशगवार लम्हा था जब गोद में बैठी अनुष्का ने मुस्कुराते हुए अपने नरम हाथों का घेरा मेरे गले में डाल दिया था। उसे जब पहली बार घर लेकर आए थे तब घर पहुंचकर एक छोटी सी पार्टी दी थी हमने, और बस उसकी सारी थकान, कानूनी झंझट, समाज के ताने सब गायब हो गए थे। कितना सुनहरा समय था वो, आंखों के सामने जैसे अभी ठहर गया है।

फूल सी नरम नाजुक बच्ची की जान बचाने के लिए हमने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस के सायरन से जंगल का वीराना शोर से भर गया। कुछ ही देर में वो मासूम अस्पताल की रोशनी में थी। फाइल पर लिख गया, अननोन गर्ल, उम्र एक दिन। उसकी नाम की जगह खालीपन था, पहचान की जगह एक सवाल, मां की गोद नहीं, कागज के पन्नों में कैद जिंदगी की शुरुआत। झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची सुबह अखबार की सुर्खी बन गई थी। चाय का प्याला हाथ पे लिए मैं तो जैसे बर्फ बन गई। अब क्या होगा, उस बच्ची का कोई ना कोई उम्मीदवार जरूर आधमकेगा, फिर मेरी सुनी गोद का क्या होगा? नीरो, ऊपर वाले ने मेरी सुनी गोद भर दी थी, झाड़ी में पड़ी वो बच्ची ऊपर वाले ने मेरे लिए ही तो भेजी थी ना। नीरो, ये बच्ची तो अपने लिए जंगल में कोई छोड़ गया था। चलो चलो जल्दी चलते हैं अस्पताल, वरना कोई भी उस बच्ची को अपना उम्मीदवार बताकर उठा ले जाएगा। चलो चलो जल्दी चलते हैं। देखा है ना, यहां तो हर चीज का व्यापार होता है। वाक्य पूरा होते तक मेरी आवाज कांप गई थी, दिल कलप गया था, जैसे उस नन्ही जान से मेरा बरसों का नाता हो। क्या वो खिलौना है जो अस्पताल से कोई उठा ले जाएगा? अरे वैसे हमने अडॉप्शन के लिए आवेदन तो पहले ही कर रखा है, ये कागजी कार्रवाई होगी और वो बच्चे हमें मिल जाएगी। नीरो ने मुझे दिलासा दी थी। अस्पताल की खिड़की से अंदर झांकते ही मेरे कदम जैसे रुक गए थे। नन्ही सी देह, नींद में सिकुड़ा हुआ चेहरा, वो जैसे कोई अधूरी कविता लग रही थी। मेरा आंचल एक बार फिर ममता से भर गया। ऐसा लग रहा था एक बार फिर मेरी छाती में दूध उतर आया हो। नीरो, यही हमारी बेटी है, यही है हमारी बेटी। मेरी आवाज कांप रही थी लेकिन आंखों में अविश्वास के बादल थे। नीरो ने धीरे से मेरा हाथ थामा, पर उनके भीतर भी वही प्रश्न उमड़ा, क्या सचमुच बच्ची हमें मिलेगी? कहीं कानूनी झंझट में उलझकर इसकी उंगली हमसे छूट न जाए। सपना जैसे पास खड़ा था लेकिन छूते ही ओझल हो जाने का डर मेरे साथ था। बच्ची को घर लाना इतना आसान नहीं था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, अदालत, कागजात, पूछताछ, हर जगह शक की नजरें थीं। तो क्या आप बांझ हैं? क्यों चाहते हैं बच्चा? क्या गारंटी है कि आप उसका भविष्य बिगाड़ेंगे नहीं? आप सही तरीके से इस बच्चे को माता पिता का प्रेम दे पाएंगे, ये हम कैसे यकीन करें? ये सवाल मुझे भीतर तक छलनी कर देता था। कई रातें मैंने रोते रोते गुजारी, पर हर सुबह वही दृढ़ वाक्य दोहराती, नीरो, उस बच्ची ने कांटों सी जिंदगी पाई है, हमें उसके लिए कांटों का ये रास्ता भी पार करना होगा। आप सीधे गोद नहीं ले सकते बच्ची को, आपको सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। आप इंतजार कीजिए, थोड़ा सब्र रखिए,

डॉक्टर ने सख्त स्वर में समझाया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज, पूरी जांच, ये सब होने के बाद ही आपको बच्ची मिल सकती है। मेरी आंखें फाइल से हटकर बच्ची पर टिक गई थी। कागजों से बड़ी हैं उसकी सांसें, सोचते हुए मेरा मन थोड़ा उदास हुआ था। घर लौटते ही मैंने वो फॉर्म भरा जिसे पूरा करने के बाद वो दुधमुही मासूम मुझे मिल जाएगी, जिसकी अधमुंदी आंखें अपनी मां को देखने को आतुर होंगी। आधार कार्ड की कॉपी, आयकर रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, परीक्षा के प्रश्न पत्र की तरह न जाने कितने तरह के प्रश्न थे उसमें, जिनके उत्तर देकर मुझे और नीरो को भरने पड़े वो फॉर्म। प्रत्येक कॉलम भरते हुए मुझे लगता जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो और मैं दीवार पार कर रही हूं। हर दस्तावेज पर कलम चलाते हुए आंखों के सामने उस प्यारी बच्ची का चेहरा आ जाता, उसकी निरीह आंखें, नन्ही नरम हथेलियां, उसकी निर्बल सांसें, उसकी अकेली पहचान। कल तक जो मेरे लिए कोई नहीं थी, आज वो मेरे दिल की धड़कन बन गई, मेरी सांस, मेरी दुनिया है वो बच्ची, मेरे जिगर का टुकड़ा बन गई थी। क्या मां बनने के लिए इतना सारा हिसाब किताब करना जरूरी है? मां बनने के लिए इन सारे हिसाब का जवाब देना जरूरी है? मैं खुद से ही सवाल कर रही थी।

कानून का इंतजार करना होगा। 60 दिन तक हम देखेंगे कि असली माँ बाप सामने आते हैं या नहीं। वकील मिस्टर सेठी ने यही तो कहा था। बाद में ये 4 से 6 महीने मेरे और नीरव के लिए सदी से भी लंबे थे। हर दिन एक ही चिंता होती, कहीं ये बच्ची किसी और को सौंप न दी जाए। कानून को हमें अपनी ममता क्यों साबित करनी पड़ रही है? कभी अस्पताल के बाहर खड़े होकर हम सोचते, अपनी उस अबोध बच्ची तक पहुंचने के लिए हमें और कितनी दीवारें पार करनी होंगी। कानूनी कागजात के साथ साथ हमारी और भी तरह से जांच हुई। एक दिन एक सोशल वर्कर घर आई। उन्होंने एक एक करके सब देखा, रसोई, कमरा और वो झूला जिसे मैंने पहले ही सजा रखा था। एक जासूस की तरह उन्होंने मेरे घर का मुआयना किया। अगर बच्ची अपनी असली माँ बाप के बारे में पूछेगी तो आप क्या बताएंगे? उनके ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, बेहद चुभने वाले थे ये सवाल। हम उन्हें सच बताएंगे, लेकिन ये भी कि माँ बाप वही होते हैं जो बच्चे को अपनाते हैं, जो बच्चे का पालन पोषण कर

रखते हैं। वो माँ बाप नहीं होते हैं जो पैदा करके झाड़ी में फेंक देते हैं, नीरो ने दृढ़ स्वर में कहा था। फिर पुलिस हमारे घर आई, पड़ोसियों से सवाल जवाब किए, फिर शुरू हुआ हमारे कोर्ट के चक्कर काटना। क्या आप जानते हैं दत्तक संतान के अधिकार असली संतान के समान ही होते हैं? तो क्या आप तैयार हैं इन सब बातों के लिए? जज ने अपनी फ्रेंच कट दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सख्ती से पूछा था। जज साहब, यही हमारी सबसे बड़ी चाहत है। मुझे बच्ची चाहिए, बच्ची को मां का गोद चाहिए। मेरी सुनी गोद ऊपर वाले ने भर दी है, आप ये बच्ची मुझसे मत छीनिए, लरजते स्वर में मैंने कहा था। फिर अदालत के आदेश पर अखबार में नोटिस निकाला गया, यदि किसी को इस बच्चे पर दावा करना हो तो 30 दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित हों। महीने भर डर के साए में जीती रही मैं, कहीं कोई उस बच्ची का उम्मीदवार न प्रकट हो जाए। पर ऊपर वाले ने सुन ली, कानून की कलम हमारे हिस्से में आई। और जब कानून की कलम हमारे हिस्से में आई तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मेरी आंखों से आंसू का झरना फूट पड़ा था। मैं खुश थी, लेकिन मेरी आंखों की नदी रुकी नहीं रही थी। हमारी सारी भाग दौड़, सारी थकान, सारी बेचैनी उस क्षण पिघल कर एक आनंद की बूंद बन गई थी, जब रुई के गुलाबी फाहे सी नरम नरम वो बच्ची मेरे गोद में आई थी। नीरो भी पिता बनकर निहाल हो गया था। घर का दरवाजा खुला, सर्दियों से सूना आंगन जैसे जीवन से भर गया हो। छोटे छोटे कपड़े टंगे, दूध की खुशबू, खिलौनों की खनक, सब में एक नई रोशनी थी। घर का हर कोना जैसे नन्ही सांसों की आहट से भर गया। झूले में ऊपर की ओर टंगी चक्री गोल गोल घूमने लगी और बच्ची की आंखें भी गोलाई में गोल गोल घूमने लगी। मैं उसे देख देख कर मुस्कुराती रही। नीरो, देखो ना कितनी प्यारी लग रही है ये। पहली बार हंसी है ये। मुझे अपने गाल पर नमकीन पानी का ठंडक महसूस हुआ था, मेरे होठों पर जैसे किसी ने गुलाब की पंखड़ी धर दी हो। नीरो चुपचाप खड़ा देखता रहा, उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर सुकून था, खुशी थी। उसने बच्ची की हथेली पर अपनी उंगली रखी और उस नन्ही पकड़ में उसे अपना भविष्य, अपनी विरासत, अपना पूरा वजूद महसूस हुआ। उस मासूम की एक मुस्कान, एक किलकारी जैसे उनके जीवन का सबसे मधुर संगीत बन गई थी। अगली सुबह की पहली रोशनी खिड़की से छन कर कमरे में आई। नन्ही बच्ची ने आंखें खोली और अचानक मासूम सी हंसी बिखेर दी। उसके रोने और उसकी किलकारी से पूरा घर जैसे जगमगा उठा। उस बच्ची की आवाज ही मेरी सुबह की घंटी है, मेरी पूजा की आरती है। मैंने जैसे ही अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ाई, नन्ही बच्ची ने कसकर पकड़ ली। उस पकड़ में बड़ी ताकत थी। शाम को आंगन में झूला डाला गया। रात को बच्ची सोती तो मैं धीरे धीरे लोरी गाती। नीरो पास बैठकर मुझे और उस बच्ची को देखता रहता।

कितना अजीब है, कल तक ये चेहरा अजनबी था, ये बच्ची मेरे लिए अजनबी थी, आज इसकी सांसें हमारी रूह में बस गई। इसकी किलकारियों ने घर की हर दीवार पर नई धड़कन लिख दी थी। रात को जब बच्ची रोती, मैं नींद से उठकर दूध की बोतल तैयार करती। थकी होती पर उसे लगता जैसे उसकी थकान ही बच्ची की मुस्कान में घुलकर गायब हो जाती है। नीरो दफ्तर से लौटकर सीधे बच्ची की उंगली पकड़ लेता, दिन भर का तनाव उसी पल मिट जाता। रीना, हमने उसे अपनाया नहीं है, इसने हमें अपनाया है, हमारी जिंदगी को इसने अपनाया है, इसने खुशी दी है हमें, नीरो ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था। मैंने बच्ची को सीने से लगाते हुए आंखें बंद कर ली। मेरे भीतर का अटूट मातृत्व समुद्र में तब्दील हो गया था। तब महसूस हुआ कि मां बनना कितना कठिन होता है, लेकिन मातृत्व का सुख पाना भी किसी नियामत से कम नहीं। वो बरसात की भोर थी, आंगन की मिट्टी में ताजी महक फैली हुई थी, पेड़ों की पत्तियों से टपकते मोती जैसे कण हवा में चमक रहे थे। मैंने खिड़की खोली तो भीतर तक ठंडी बयार आ गई। झूले पर बैठी नन्ही काया ताली बजा बजा कर बारिश की बूंदों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे बादलों से बातें कर रही हो। उसी क्षण

समय दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक कमजोर थकी हुई स्त्री खड़ी थी, उसके चेहरे पर पीड़ा थी। मैं इसकी जन्म देने वाली माँ हूं। मेरी प्रश्नवाचक निगाहों को भांपते हुए उसने धीमे स्वर में

कहा, जैसे धरती हमारे पैरों तले खिसक गई हो। इतनी मुश्किलों के बाद तो हमारी मुराद पूरी हुई, फिर ये अचानक ये मुसीबत कहां से आ गई? मेरे होठ बुदबुदाए, लेकिन स्त्री ने अनुष्का को देखकर अपने कांपते हाथ जोड़े। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकी, हालात ने मुझे बेबस कर दिया, अब मेरे पास समय नहीं बचा है। मैं चाहती हूं कुछ समय के लिए मैं इसे अपने घर ले जाऊं। वैसे तो तुम्हारी गोद ही इसकी सच्ची दुनिया है। उसने अपने आंचल से अपनी आंखें पोंछी, फिर उसने अनुष्का की मासूम हथेली छू ली और बच्ची के शरीर में एक निशान भी बताए। बच्ची ने बिना सोचे उसकी उंगली पकड़ ली और अगले ही पल खिलखिला उठी। उसकी मुस्कुराहट की खनक ने मेरे भीतर से वीरान सन्नाटा भर दिया। अनुष्का के बगैर जीने की कल्पना मात्र से मैं सिहर गई। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। कभी कभी अजनबी चेहरा ही रूह का सबसे बड़ा टुकड़ा बन जाता है। जिंदगी ने हमें ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया जहां से रास्ता नहीं नजर आ रहा था। वो औरत जिसने मां बनने का दावा किया है, वो कैंसर की मरीज है, वो भी सेकेंड स्टेज में। उसने वो सारे कागजात सामने रखे हैं जिससे उसे अनुष्का को सौंप दिया जाना चाहिए, लेकिन दिमाग और दिल की लड़ाई में दिल को ही हथियार डालना पड़ता है। फिर से अदालत की सीलन भरी दीवारें, बोझिल हवा और कोनों में सिसकते सन्नाटे, जज का फैसला। जन्म देने वाली मां को कैंसर है, उसकी स्थिति गंभीर है, इसलिए बच्ची का अधिकार उसी के पास रहेगा। हालांकि इस सब प्रक्रिया में कई बरस बीत गए। अनुष्का के जन्मदात्री मां भी और ज्यादा कृशकाय हो चुकी थी। इस दौरान उससे कई मर्तबा मुलाकात हुई। उसकी तकलीफ देह हालात के बारे में जानकर अनुष्का को उन्हें उनकी बची खुची जिंदगी के लिए सौंप देना ही इंसानियत थी। उसकी आंखें बुझती लौ जैसी थीं। वो मेरे जीवन की सबसे बोझिल रात थी। रात हौले हौले जा रही थी, लेकिन सुबह की कोई आमद नहीं नजर आ रही थी। उसमें भीगी पेड़ों की शाखें उदास हो गई थीं। अनुष्का का घर में आने का समय पता ही न चला, लेकिन उसे कुछ समय के लिए ही सही, उसके जाने का लम्हा सदी बन गया था। अनुष्का बहुत बोलती थी, बहुत प्यारा बोलती थी, लेकिन उस रात जब उसे इस घर से उस घर यानी उसकी मां के पास ले जाया जा रहा था, तब वो जैसे बेजान गुड़िया में तब्दील हो गई थी। उसे तब तक पता चल चुका था कि जहां जा रही है वही उसकी असली मां है। मेरी तो वो दत्तक पुत्री है। मेरे भीतर तूफान कुलाचे मार रहा था, नीर और निर्विकार भाव से इस नियति को स्वीकार कर रहा था। मेरे कानों में सिर्फ अनुष्का की किलकारियों की गूंज रह गई। वो लम्हे जब पहली बार उसने मां पुकारा था, वो रातें जब बुखार में हमने जाकर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखी थी, वो मासूम मुस्कान जो उनके जीवन का एकमात्र संगीत थी, सब कुछ ऐसे पल भर में स्मृतियों की तिजोरी में रख उठे थे। अनुष्का ने मासूम निगाहों से मेरी ओर देखा। हम सब ने अपनी सुविधा अनुसार अनुष्का का घर तय कर दिया, लेकिन अनुष्का के नजरिए से किसी ने नहीं सोचा। वो अपनी मां के घर जब पहुंची तो उसके रोने का सिलसिला रुका ही नहीं। फिर जब वो रुका तो उसकी सुनी आंखें मेरा आंचल तलाशती रही। मैं उससे जब मिलने जाती मेरा आंचल पकड़ लेती, मुझे आने ही नहीं देती थी।

घर से कस कर लिपट जाती, जैसे मैं ही उसके जन्म देने वाली मां हूं। वक्त ने उसे जल्दी समझदार और बड़ा बना दिया था। उसकी सूनी आंखों में सपनों की जगह इंतजार ठिठक गया था। घर में रखे खिलौनों को हाथ न लगाती, खामोशी उसकी सदा बन गई थी। उसे जैसे हम दो परिवारों ने एक छोटी बच्ची से वस्तु बना दिया था। उसकी पीड़ा को महसूस कर मेरा दिल कचोटने लगता था।

किताबों के ऊंचे रैक से एक मोटी किताब गिरी और मैं जैसे यादों के ऊंचे पहाड़ से धम से नीचे आ गिरी। पर इस बार पहाड़ से नीचे आने पर अनुष्का जैसी प्यारी फूल मेरे सामने है। उसने दरवाजा पकड़ रखा था जैसे ये आखिरी सहारा हो। उसकी आंखें कह रही थीं, माँ तुमने मुझे झाड़ी से उठाया था, पर क्या सचमुच माँ की जगह भर सकोगी? अनुष्का, अनुष्का, उस दिन तुम झाड़ी में मिली थी अकेली और डरी हुई। मैंने तब तुमसे एक वादा किया था, तुम्हें मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और मैं उस वादे को हमेशा निभाती रहूंगी। कहते हुए मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। अनुष्का के होंठ कांपे। याद आया कि उस दिन उसने पहली बार किसी अनजानी बाहों में अपने दर्द को ढक लिया था। उस औरत की छाती पर सिर रखकर रोई थी और फिर अब वही छाती फिर से उसके लिए स्तंभ थी। धीरे धीरे अनुष्का की उंगलियां चौखट से ढीली हो गईं। उस पल दोनों के बीच

एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच का पुल। घर के भीतर हल्की सी रोशनी बिखरी हुई थी, शाम की धूप खिड़की से छनकर कमरे में।

दोस्तों नमस्कार, उपस्थित हो गए हैं आपके इस कार्यक्रम को लेकर जिसका नाम है तरुण कुसुम। बना रहेगा हमारा और आपका साथ 5:40 तक। सुनेंगे लोकगीत और गज़लें, साथ ही करेंगे बातें भी। तो पहले शुरुआत करते हैं इस देवी गीत से जिसे गाया है विभा सिन्हा ने।

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। साथ ही हम उपलब्ध हैं मोबाइल सेट पर भी न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। हमारी

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: दोस्तों, आप आकाशवाणी दरभंगा से इस समय सुन रहे हैं युवाओं को संबोधित कार्यक्रम तरुण कुसुम। आप अभी सुन रहे थे विज्ञापन से पहले लोकगीत विभा सिन्हा का गाया हुआ। हमने आपसे कहा था कि बातें करेंगे आपसे। तो देखिए दोस्तों, इन दिनों जिस तरीके से समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं और जीवन जो है वो भाग दौड़ भरा हो गया है। हम याद करते हैं कि हमारे बचपन के दिनों में इतनी भाग दौड़ कहाँ थी। आज हर व्यक्ति परेशान और अपने कामों में भाग रहा है तेज़ी से। वो कहते हैं ना, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। जीवन इसी सुबह और शाम के चक्कर में समाप्त हो जाता है और अंत में हमें पता चलता है कि हमने तो बहुत कुछ खो दिया। जब आप समय के साथ आगे बढ़ते हैं तो एक समय में आपको एहसास होता है कि हमें वो काम भी करने थे जिन पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया। और युवावस्था में अगर हम उन कामों को करेंगे तो हमारी आदत जो है बनी रहेगी और हम आगे चलकर और बेहतर, उससे भी बेहतर कर पाएंगे। वो है परोपकार। भाग दौड़ भरे जीवन में परोपकार का काफ़ी महत्व बन गया है। इन दिनों में काफ़ी महत्व हो गया है। आज का जीवन अत्यंत व्यस्त और तेज़ रफ्तार है। सुबह से लेकर रात तक इंसान अपने काम, नौकरी, व्यापार और परिवार की जिम्मेदारियों में उलझा रहता है। ऐसे में अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करने का अवसर है। यही भावना तो परोपकार कहलाती है। परोपकार का अर्थ होता है दूसरों की भलाई करना, निस्वार्थ भाव से कार्य करना। ये ज़रूरी नहीं कि परोपकार के लिए बहुत धन या समय हो। एक मधुर मुस्कान, किसी ज़रूरतमंद की सहायता, रास्ता भटके व्यक्ति को सही दिशा दिखाना, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाई में मदद देना, ये सब छोटे छोटे परोपकार ही तो हैं। भाग दौड़ भरे जीवन में यदि हम प्रतिदिन थोड़ी सी संवेदना और करुणा को स्थान दें तो समाज में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। परोपकार न केवल दूसरों के जीवन को सरल बनाता है बल्कि हमारे मन को भी शांति और संतोष प्रदान करता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो भीतर एक आत्मिक सुख का अनुभव होता है जो किसी भी भौतिक सुख से बढ़कर होता है। आज आवश्यकता है कि हम अपने व्यस्त कार्यक्रम में से भी थोड़ा समय निकालकर समाज के लिए सोचें। यदि हर व्यक्ति प्रतिदिन एक छोटा सा नेक काम

करने का संकल्प ले तो समाज में प्रेम, सहयोग और सौहार्द की भावना और भी अधिक प्रबल हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, हमें चाहिए कि जीवन की भागदौड़ के बीच भी परोपकार को अपनी आदत बना लें, क्योंकि सच्चा सुख दूसरों को सुख देने में ही है।

दोस्तों सुन रहे थे आप आज क्रमशः विभा सिन्हा, वंदना सिन्हा, विभा झा और श्याम मोहन मिश्रा के गाए लोकगीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्रमशः गुलाम अली और भूपेंद्र की आवाज़ में गज़लें, तो सुनिए।

ख्याल रंग के नगमा कहूँ तुझे, खुशबू ख्याल रंग के नगमा कहूँ तुझे, हैरान हूँ तुझको देख के मैं क्या कहूँ तुझे।

आप सुन रहे थे गज़लें, आवाज़ें थीं क्रमशः गुलाम अली, भूपेंद्र और चंदन दास की। इसके साथ ही दोस्तों को संबोधित यानी युवा दोस्तों

तरुण कुसुम था युवा दोस्तों को संबोधित। आकाशवाणी दरभंगा से लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में यानी संध्या 5:40 पर आप नई फिल्मों के गाने सुनते हैं। तो ये पहला गाना आप तक हम पहुंचा रहे हैं फिल्म ड्रीम गर्ल 2 का।

आप सुन रहे थे मीत ब्रोस, मोनाली ठाकुर और पीयूष मेहरोलिया को। फिल्म थी सत्य प्रेम की कथा। अब जो गाना आप सुनेंगे वो है कार्यक्रम की अंतिम भेंट, आवाज़ अरिजीत सिंह की और फिल्म है डंकी।

आप सुन रहे थे ये गाना। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने को हैं, कुछ क्षणों में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने बताया कि बैठक में श्री अधिकारी के निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वितरिक कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय

0: घोषित करेगी। केरला में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डाटा दिया गया है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 941 अंक बढ़कर 77,959 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 298 अंक की बढ़त के साथ 24,331 पर दर्ज हुआ। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। कल भारतीय महिला रिकव टीम ने फाइनल में प्रवेश किया। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी दरभंगा है। आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे हफ्तावार जायजा। पेशकश होगी सज्जाद अहमद खान की। विद्यापति गीतों के कार्यक्रम में 6:15 पर आज कलाकार हैं रामकुमार मल्लिक। पर आप सुनते हैं मैथिली संवाद। 6:30 गाम घर कार्यक्रम के तहत आज होगा नन्ना मुन्ना राही। बच्चे सुनेंगे रेड क्रॉस दिवस पर चर्चा, साथ ही चर्चा होगी यूएन सड़क सुरक्षा सप्ताह पर। 7:00 खेती गृहस्थी कार्यक्रम में फसल में खरपतवार नियंत्रण पर चर्चा सुनेंगे किसान भाई और मौसम संबंधी जानकारी, साथ ही समसामयिक कृषि कार्यों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे हमारे किसान श्रोता। फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर आएंगे 7:52 पर।

बजकर 15 मिनट पर होता है मैथिली कार्यक्रम सिंगर हर। साढ़े 9 बजे सुनिएगा साहित्य की कार्यक्रम। सूत्रधार होंगे अमलनाथ ठाकुर और प्रस्तुतकर्ता होंगे विनीत कुमार ठाकुर। और रात 10 बजे हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे, जो कि फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम है। तो ये थे आज के शेष प्रमुख कार्यक्रम। और अब कल के कार्यक्रमों के बारे में आपको हम कल के नहीं क्षमा करेंगे रविवार के एक विशेष कार्यक्रम के बारे में आपको हम सूचना दे दें। तो कार्यक्रम संबंधी सूचना इस प्रकार से है कि श्रोताओं, माँ को सृष्टि का आधार ही नहीं ईश्वर का वरदान भी कहा गया है। माँ एवं संतान के पारस्परिक संबंध और दायित्व, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर पुष्पम नारायण। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 0627222481, यानी 0627222481, और दूसरा नंबर होगा 9430029353, अर्थात 9430029353। समय याद रखेंगे रविवार 10 मई 2026 दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। समाज फरमाइए हफ्तावार जायजा, पेशकश सज्जाद अहमद खान की है। सामेईन आदाब, जायजे के अहम इशारिये। शिवहर के जिला जज ने लोक अदालत के इनाकात के लिए प्रचार गाड़ी को झंडी दिखाकर किया रवाना। डिप्लोमा ट्रेनी समेत 668 ओहदों के लिए फॉर्म 11 मई तक, और अब तफसील। शिवहर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी शिवहर ने 9 मई को मुनाकिद होने वाली कौमी लोक अदालत की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए वसी पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में सिविल कोर्ट के अहाते से एक तशहीरी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसका मकसद अवाम को लोक अदालत की अहमियत को समझने और वहां अपने मुकदमात का हल तलाश करने की तरगीब देना है। पब्लिसिटी गाड़ी को झंडी दिखाते हुए प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज दीपक कुमार ने फरमाया कि कौमी लोक अदालत इंसाफ तक रिसाई का एक ताकतवर और आसान जरिया है। ये बाहमी रजामंदी से मुकदमात का फौरी और खुश असलूबी से हल

आप सुन रहे थे ये गीत रामकुमार मल्लिक का गाया हुआ। इसके साथ ही विद्यापति गीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आकाशवाणी दरभंगा आ एफएम रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी हृदयकांत मिश्र। प्रदेश मे मंत्रिमंडल विस्तार आ विभागक बंटवाराक बाद कतेको मंत्री सब आइ कार्यभार संभारि लेलनि। भूमि सुधार आ राजस्व विभागक मंत्री दिलीप जायसवाल आइ अपन कार्यभार संभारलनि। ओ कहलनि जे ई विभाग बेसी चुनौती सँ भरल अछि। श्री जायसवाल कहलनि जे विभागक लंबित सार्वजनिक काज सब के पूरा करबाक लेल बढ़िया कार्यनीति बनाओल जायत। नगर विकास आ आवास विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभागक मंत्री नीतीश मिश्रा, मद्य निषेध उत्पाद आ निबंधन विभागक मंत्री मदन सहनी, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, कला आ संस्कृति विभागक मंत्री प्रमोद कुमार, उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह सेहो अपन पदभार ग्रहण कऽ लेलनि। समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता पदभार संभारबाक बाद कहलनि जे विभागीय योजना सभक लाभ लोक धरि पहुँचाबै लेल ओ काज करती। एम्हर पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश सहित कतेको आनो आन मंत्री सभ सेहो कार्यभार संभारि लेलनि अछि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

0: आइ पूर्व मुख्यमंत्री आ जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार सँ हुनकर पटनाक आवास पर भेंटघाट कयलनि। भेटल जनतबक अनुसार एहि भेंटक दरमियान विस्तारित मंत्रिमंडल के लऽ कऽ मुख्य रूप सँ चर्चा भेल। शिक्षक नियुक्तिक चारिम चरणक परीक्षाक विज्ञापन शीघ्रहि जारी करबाक मांग के लऽ कऽ अभ्यर्थी सब आइ पटना मे प्रदर्शन कयलनि। अभ्यर्थी सभक जत्था पटना कॉलेज सँ बीपीएससी ऑफिस दिस बढ़ि रहल छल, तखने जेपी गोलम्बर लग पुलिस प्रदर्शनकारी सबके रोकबाक कोशिश कयलक। प्रदर्शनकारी छात्र सब बैरिकेटिंग तोड़ि कऽ आगू बढ़बाक कोशिश करय लगला, जाहि के बाद पुलिस लाठीचार्ज कयलक। लाठीचार्ज में कतेको प्रदर्शनकारी छात्र सब घायल भऽ गेलाह। प्रदर्शनकारी छात्र सब TRI 4 के लऽ कऽ सरकार पर टाल मटोलक नीति अपनेबाक आरोप लगौलनि। एहि बीच नवनियुक्त शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहलनि अछि जे सरकार सब लंबित परीक्षा सबके शीघ्रहि लेत। पटनाक IGIMS मे नर्सिंग छात्रा सभक आइ तो दोसर दिन सेहो प्रदर्शन जारी अछि। प्रदर्शनकारी छात्रा सभक आरोप अछि जे हुनका सबके जानबूझि कऽ परीक्षा में फेल कयल गेल अछि। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलासक अध्यक्ष आ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शिक्षक नियुक्ति परीक्षाक मांग कऽ रहल अभ्यर्थी सब पर लाठीचार्जक घटनाक निंदा कयलनि अछि। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पासवान कहलनि जे लोकतंत्र में सबके अपन बात रखबाक अधिकार अछि। ओ कहलनि जे कोनो समस्याक समाधान गपशप सँ कयल जयबाक चाही। एम्हर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव TRI 4 अभ्यर्थी सब पर भेल लाठीचार्जक कड़गर निंदा कयलनि अछि। आइ पटना में संवाददाता सब सँ गपशप में ओ जनौलनि जे सरकार में जनताक कोनो सुनवाई नहि भऽ रहल अछि। पटना उच्च न्यायालय सहित प्रदेशक सब अदालत में काल्हि राष्ट्रीय लोक अदालतक आयोजन कयल जायत। लोक अदालत में आपसी समझौताक आधार पर कतेको प्रकारक दीवानी आ किछु फौजदारी मामलाक निपटारा कयल जायत। पटना उच्च न्यायालयक जनतब पर ट्रैफिक चलान सँ जुड़ल मामलाक सभक सेहो निष्पादन लोक अदालतक माध्यम सँ कयल जायत। केंद्र सरकार बिहार में लीचीक फसिल के कीड़ा मकोड़ा से होय वाला नुकसान रोकबाक लेल एक विशेषज्ञ कार्यबल बनौलक अछि। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जनौलनि जे ई कार्यबल ओहि सब क्षेत्रक दौरा कऽ निवारण उपाय लेल अनुशंसाक संग रिपोर्ट जमा करत। पश्चिमी विक्षोभक असरि सँ प्रदेश में वर्षाक परिस्थिति बनल अछि। आइ दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और पटना सहित कतेको जिला में तेज हवाक संग वर्षा भेल अछि। मौसम विभागक अनुसार पछिला 24 घंटाक बीच किशनगंजक ठाकुरगंज में सबसे बेसी 54.4 मिलीमीटर बारिश भेल अछि। मौसम पूर्वानुमान में कहल गेल अछि जे अगला 24 घंटाक बीच राज्यक बेसी क्षेत्र में अन्हर बिहारक संग वर्षा भऽ सकैत अछि। किछु ठाम पाथर सेहो खसि सकैत अछि। मुंगेर जिलाक ईस्ट कॉलोनी थाना पुलिस 450 ग्राम ब्राउन शुगर आ 100 ग्राम व्हाइट ड्रग्सक संग एकटा युवक के गिरफ्तार कयलक अछि। सुपौलक कुनौली बॉर्डर पर SSB आ पुलिसक टीम 40 किलो गांजाक संग दूटा तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि। कटिहार जिलाक फराक थाना क्षेत्र में पुलिस छापा मारि कऽ भारी मात्रा में शराबक संग 9 तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि। अररिया जिलाक कतेको थाना क्षेत्र में पशु तस्करक खिलाफ चलाओल गेल विशेष अभियान में पुलिस 146 पशुक संग 5 ट्रक और 7 पशु तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: आकाशवाणी दरभंगा से लीजिए सुनिए ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम गाम घर।

0: गाम घर में सब श्रोता लोकनि के मुनि दिससँ स्नेहपूर्वक नमस्कार संगे स्वागत अछि। आ देवू भाई अहू के नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार मुनि बहिन, संगे समस्त श्रोता लोकनि के सेहो नमस्कार। मुनि बहिन, आज तक बुझते छी जे आज शुक्र दिन अछि। आ शुक्र दिन को हमरा लोकनि साप्ताहिक कार्यक्रम सुनै छी किसले
0: धिया पुता के मुखसँ। आ धिया पुता के सेहो बाट जोहित रहै छथिन जे कखन अपना सब किसले सुनेबनि। आ आइ जे कहलहुँ देवू भाई शुक्र दिन अछि, विशेष दिन से।

0: हुई छाए।
1: हाँ हाँ, तो सबसे पहले तो जो हमारा लोकन के श्रोता लोकन के कह दियन जे आई जे छे आठ मई
0: आई विशेष दिन ई अछि विश्व रेड क्रॉस दिवस आई अपना सब मना रहल छी। आ ई दिवस जे छै रेड क्रॉस के संस्थापक के जयंती के अवसर पर मनाओल जाइत अछि, जे एकर जे छै संघर्ष आपदा आ स्वास्थ्य आपात स्थिति में जे मानवता के सेवा करय वाला स्वयं सेवक के समर्पण के सम्मानित कयल जाइत अछि उसका दिन।
1: ठीक है कहल है मुनि बहिन, जे आई जो 8 मई अछि और 8 मई के हमरा लोकन विश्व रेड क्रॉस दिवस सड़क सुरक्षा सप्ताह सेहो हमरा लोकन मनायब।
0: आई जे
1: मुनि बहिन विश्व रेड क्रॉस दिवस जे ई संस्था आ शांति लेल पहिल जे नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूनेट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही मनाओल जाते हैं। 2025 का विषय छल जे मनुख के जीवित रखना है, बढ़त असमानता, स्वास्थ्य संकट आ संघर्षक बीच मनुख के सेवा के प्रति प्रतिबद्धता।
0: आही बेर जे 2026 के जे अछि विश्व रेड क्रॉस दिवस के थीम ओ अछि मानवता के जीवित रखनाई। एकर उद्देश्य अछि करुणा, निष्पक्षता आ मानवीय सेवा के बढ़ावा देनाय। ई जतेक गप हम केलहुँ वे देवू भाई, ओ सब अपना सब में हेबा के चाही। ई सब गुण
1: छै कि विश्व रेड क्रॉस दिवस के मुख्य उद्देश्य अछि मुनि बहिन जे लोक सबटा में उदारता, सहानुभूति आ निस्वार्थ भावना से विकसित करनाय अछि। एहि अवसर पर सब कोई के शांति लेल किछु करबाक लेल प्रोत्साहित करनाय सेहो अछि। रेड क्रॉस के 60 नियम सेहो अछि मुनि बहिन, जाहि में मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता आ सार्वभौमिकता इत्यादि शामिल अछि। 7 मूलभूत सिद्धांत एकटा नैतिक परिचालन आ संस्थागत ढांचा अछि, जेकरा अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस आ रेड क्रिसेंट आंदोलन काज के आधार पर प्रदान कराबैत अछि।
0: अच्छा देवू भाई, अपना सब बुझलहुँ जे विश्व रेड क्रॉस दिवस सब साल 8 मई के मानवता आ सेवा भावना के सम्मान में मनाओल जाइत अछि। आ इस सम्मान आ सेवा के भाव जे अछि अपना सब गोटे में हेबा के चाही। एकरा संगे अपना सब गपशप केलहुँ, सड़क सुरक्षा सप्ताह सेहो अखन चलि रहल अछि। तो देवू भाई देखे छी न सड़क पर अपना सब, काल्हि खना हम आबे छलहुँ हैं तो देखलहुँ बाट में एकटा स्कूटर पर एकटा नवयुवक तीनू बैसल बिना हेलमेट के, आ तीनू एना कऽ गाड़ी निकाललखिन हड़बड़ा कऽ जे कि हुनका अपने खरोंच लागि गेल। सब आ हा हा हा केलकै जे आ हा बच्चा के लागि गेल, लेकिन ओ सब एतेक जोश में रहैत जे जोश में जे छै आबि कऽ अपनो हानि करवा लेलथि।
1: समस्या तऽ अपने तऽ हानि पहुँचाबै छथिन, सङ्ग सङ्ग आनो कोई के जे माने कष्ट देवला जो तैयार रहै छथिन, अपन साइड पर नहि चलै छथिन। सङ्ग सङ्ग अखिनका दौर में युवा लोकन के देखै छियनि मुनि बहिन जे खास कऽ जे कान में ईयरफोन लगेने छथि, पाछू वाला के आबि रहल छै या आगू हुनका साथ दियन कि नहि दियन, इहो एकटा जो छै सबसे बड़ा एकटा समस्या छै। माने हुनका ई ध्यान रखे पड़त कि जे अपनो बचू आ सङ्ग सङ्ग आनो के बचे के जो छै रास्ता दियो।
0: एकदम एकदम, जे अपना सबके सड़क पर गाड़ी चलेबा के जे नियम अछि ओकरा जरूर से पालन करी। सुरक्षा के नियम के पालन करनाय बहुत आवश्यक अछि। अपना सबके जीवन बड़ अनमोल अछि। जखन अपना सब सड़क पर निकलै छी या अपन परिवार के कोई सदस्य या धियापुता निकलै छथिन, तो मोने मोने भगवान से भगवती से प्रार्थना करै छी जे सकुशल वापस आबि जाइत। लेकिन ई आधुनिक समय में निकलनाय सेहो आवश्यक अछि, घर में तो बैस कर रहब ने। तो ई जे नियम अछि हेलमेट लगा कर चली आ अपन जे गाड़ी के गति अछि ओकर जे निर्धारण कयल गेल अछि कतेक स्पीड में, ओकरा सदिखन कंट्रोल में राखी। गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलबे ला नहीं मना ही छे, मुदा अपन सुरक्षा के ध्यान में राखि कर अपन आ सबक सुरक्षा। जखन अहाँ स्पीड में चलेबे ककरो जाकर धक्का लगा लेब तो ई तो एक सरासर अनुचित अछि। तो अपन आन सबके ध्यान में रख कर तखन गाड़ी चलाओ।
1: संग संग जो छै जो चौक चौराहा पर अहाँ चला रहल छी तो अपन साइड सिंगल के जरूर दऽ कऽ जे अपन इंडिकेट कऽ कऽ गाड़ी के आगू बढ़ाबी। तो ऐसे होइ छै कि

0: कि अपनो बचब आओर आनो कोई के जो छे सुरक्षा भेट सकत अछि। मुनि बहन बेर रहत फेन आगू गपशप करब, मुदा ओहिसँ पहिने एकटा छोट सीन विराम लै छी।
1: बेस तऽ सुनी।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: व्यावसायिक संदेश के उपरांत पुनः कार्यक्रम में श्रोतालोकन के स्वागत छन। आ मुनि बहिन जे हमर जे किसले सुनिहार जो हमर जे बाल
3: बुतरू छत
2: वो अपन बाट जो है हता तो किएक ने हुनक एकटा बाल गीत हुनका लोकन के सुना दियन।
3: एकदम एकदम सुनी।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: हाँ मुनि बहन, विराम से पहले हमारा लोग मृदुला मिश्र के स्वर में जो हमारा लोग बाल गीत सुने छो चंदा मामा आओ आओ, आब एक संग जो छे देख रहल छी कि अहाँ के हाथ में किछ कार्यक्रम संबंधी सूचना सेहो अछि, तऽ ओ श्रोता लोकन के बता देल जाओ।
3: श्रोता लोकन, माँ के सृष्टि के आधारे नहीं ईश्वर के वरदान सेहो कहल गेल अछि। माँ एवं संतान के पारस्परिक संबंध और दायित्व यह अछि आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगीक अगला अंकक विषय। विशेषज्ञ हेथिन डॉक्टर पुष्पम नारायण। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़वा के लेल फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है हमर सबके 9430029353। मोबाइल नंबर एक बेर फिर से कह दे छी श्रोता लोग इनके 9430029353। समय मोन राखब रवि दिन 10 मई 2026 दिन के 11 बजे।
2: एक संगे सूचना समाप्त भेल और फेन पुनः कार्यक्रम में धियापुता के स्वागत करे छियन। आ हुनक जो छे आई साप्ताहिक कार्यक्रम किसले सेहो सब बाट जो है हता, तो आई हमरा लोकन जे बता दियन जे आई हमरा लोकन हुनकर मुख से बहुत रास जो छे नाटक कहानी खिस्सा पिहानी सेहो सुनब। तो ये अहाँ के श्री कामेश्वरी प्रिया पुअर होम नेत्रहीन विद्यालय दरभंगा से संकलन वाचन और निर्माण में सहयोग छथि आशुतोष कुमार झा और प्रस्तुति असद दाऊद के
3: बेस्त सुनैत छी।

0: काकचेष्टा वकोध्यानं स्वाननिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणं। एहि श्लोक में बताओल गेल अछि जे एकटा विद्यार्थी में की गुण हेबाक चाही। जेना कि कौआ के भांति सब किछु बिझबाक चेष्टा, बगुला के भांति एकाग्रता और ध्यान, कुकुर के भांति पातरनीन कम भोजन ग्रहण केनाय और गृह के त्याग अर्थात घरक त्याग केनाय, ई पांचो एकटा विद्यार्थी के लक्षण होइत अछि। जे विद्यार्थी एकर अनुसरण करै छथि ओ जिंदगी में अपन लक्ष्य के प्राप्ति करै छथि। आजुक किसलय कार्यक्रम के संग हम आशुतोष कुमार झा आयल छी श्री कामेश्वरी प्रिया पुअर होम राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय दरभंगा।
1: एतय बहुतो रास विद्यार्थी सब उपस्थित छथि और बहुत किछु

0: सुनावा चाहे छे तो एक बेर फिर किसले के संग हम उपस्थित छी और गप करे छी हिन के सब के संग।
1: वो की नाम छी यहाँ का?
2: अवतार कुमार।
1: अवतार कुमार आहा कोन क्लास में पढ़े छी?
2: नाइन्थ।
1: नाइन्थ वर्ग में पढ़े छी। आहा के सबसे नीक कोन विषय लागैत अछि?
2: हिंदी।
1: आज कार्यक्रम में आहा की सुनब?
2: कविता।
1: सुनाओ।
2: नव किरण का रस सजा है, कली कसम से पद सजा है, वादनों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी।
1: की नाम छी अहाँ का?
3: शुभम कुमार।
1: अहाँ कोन वर्ग में पढ़े छी?
3: पाँचवें।
1: आज के दिन अहाँ की सुनायब?
3: कविता।
1: सुनाओ।
3: हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप विश्वास चाहे अनेक हैं, बेला गुलाब जुई चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुदे माला में एक हैं, कोयल की कूक प्यारी, पपी एक टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है, धर्म है अनेक जिनका, सार वही है, पंत है निराले सबकी, मंजिल तो एक है।
1: बुआ की नाम छी यहाँ का?
4: रौनक कुमार।
1: आ कोन वर्ग में पढ़े छी?
4: छठी में।
1: आजुक दिन आके सुनाब?
4: कहानी।
1: सुनाओ।
4: कहानी का शीर्षक है कंजूस सेठ। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में एक कंजूस सेठ रहा करता था। वह अपना एक रुपया तक खर्च करने में हकलाता था। एक दिन उनके मित्रों ने उन्हें अपना चित्र बनवाने के लिए मना लिया और कंजूस सेठ यह सोचने लगा कि कल चित्रकार मेरे पास चित्र लेके आएगा तो मैं उसे पैसा दूंगा। उसे तो एक रुपए खर्च करने में दिक्कत होती थी, तो फिर वो 100 स्वर्ण मुद्राएं कैसे दे देता। तो जब कल आया चित्रकार तो चित्र दिखाने वाला था, तभी सेठ अपने कमरे में गया और अपना भेष बदल कर आ गया। चित्रकार दिखाया अपना चित्र तो सेठ ने कहा कि ये चित्र तो मेरे चेहरे से मिलता ही नहीं है, मैं तुम्हें इसके 100 स्वर्ण मुद्राएं कैसे दे दूंगा। तो फिर चित्रकार निराश होकर चला गया। फिर वह कल आया तो सेठ भी अपना भेष बदलने में महारत हासिल किया था, तो फिर वह अपना भेष बदल कर आ गया। तो फिर चित्रकार ने अपने चित्र से सेठ का चेहरा मिलाया तो वह नहीं मिला, तो फिर चित्रकार के हाथ निराशा लग गया। तो फिर वह चित्रकार सोचने लगा, आज तक मुझसे ऐसी भूल नहीं हुई, पर आज ये कैसे हो रहा है। चित्रकार को सेठ की कारस्तानी के बारे में पता चल गया, तो फिर वह तेनाली राम के पास गया। कहा, तेनाली राम कंजूस सेठ के पास कि अरे ये तो आईना है। तो चित्रकार ने कहा, सेठ जी आईने से अच्छा आपका चित्र कोई नहीं बना सकता, इसलिए मेरे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दें। तो फिर सेठ समझ गया कि यह तेनाली राम की ही सलाह है और वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर हवाले कर दिया। जब यह घटना तेनाली राम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में सुनाया तो सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। धन्यवाद।
1: बहुत बढ़िया से आप बोल के सुनाया है। कोई कविता भी सुनाइएगा?
5: नहीं, एक गाना सुना सकता।
1: सुनाइए।
6: तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी

परमात्मा का स्पर्श हो। राधे परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। तुम हो समर्पण का शिखर, तुम हो समर्पण का शिखर, तुम ही मेरा उत्कर्ष हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो।

का गीत हो। मैं हूँ जहाँ तुम हो वहाँ तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। मैं हूँ जहाँ तुम हो वहाँ तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। मुझे

0: करते हो।
1: धन्यवाद,
2: बहुत सुंदर।
3: वकील नाम छी अहाँके?
4: देव कुमार।
3: आ कोन वर्गमे पढ़ै छी?
4: 9th।
3: आजुक कार्यक्रममे अहाँ की सुनाबऽ चाहै छी?
4: कविता
3: सुनाओ।
4: लब पे आते है दुआबन के तमन्ना मेरे जिंदगी सम के सरत हो खुदाया, मेरे दुनिया का हो मेरे दम से अंधरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से हुए मेरे वतन की जिन जिस तरह से फूले सोते चमन की जिन जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत यारा बिरीम के सम से हो मुझको मोहब्बत रहा। इतना ही काम गरीबों के हिमायत करना, दर्दमंदों से जाए फोर से जाए मोहब्बत करम में, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जुरा को बचाना मुझको। धन्यवाद,
2: बहुत सुंदर।
3: वकील नाम छी अहाँके?
5: मनीष कुमार।
3: कोन वर्गमे पढ़ै छी अहाँ?
5: 3rd।
3: आज कार्यक्रम अहाँ की सुनाबऽ चाहै छी?
5: कविता
3: सुनाओ।
5: देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस्वने प्रभु सरस्वने, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने, देश की इच्छा देश की आशा, काम देश की देश के भाषा, एक बने प्रभु एक बने, देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने।
3: वकील नाम छी अहाँका?
6: रौनक कुमार।
3: आ कोन वर्गमे पढ़ै छी?
6: 6th।
3: की सुनाबऽ चाहै छी?
6: कविता
3: सुनाओ।
6: ये कविता का शीर्षक है अरमान। है शौक यही अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे, जो लोग गरीब भिखारी हैं जिन पर नक्सी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे, जो लोग हार कर बैठे हैं उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे, रोको मत आगे बढ़ने दो हम आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि के सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगी, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुनके पक्के सच्चे थे, हम जग में नाम कमाएंगे।
3: वकील नाम छी अहाँका?
7: अमरजीत कुमार।
3: अमरजीत कुमार, अहाँ कोन वर्गमे पढ़ै छी?
7: 4।
3: की सुनाबऽ चाहै छी?
7: कविता
3: सुनाओ।
7: सुबह सुबह जब चिड़िया उठकर कुछ गीत खुश के गाती है, कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग से जनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, जब छमछम बूंदे गिरती है बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती धोकर लाती है, हे जग से जनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है।
3: की नाम छी अहाँके?
8: गौरव कुमार।
3: कोन वर्गमे पढ़ै छी?
8: 7।
3: की सुनाबऽ चाहै छी?
8: कविता
3: सुनाओ।
8: चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर है हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चरु भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वन माले उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक।
3: वकील नाम छी अहाँका?
9: मेरा नाम आलोक कुमार सर।
3: आ कोन वर्गमे पढ़ै छी?
9: कक्षा 3।
3: आजुक कार्यक्रम अहाँ की सुनाबऽ चाहै छी?
9: गाना
3: सुनाओ।
9: मेरे

0: कयल जाइत अछि कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दरभंगा द्वारा 9 मई यानी शनि दिन राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन कयल जा रहल अछि। एहि लोक अदालत मे ट्रैफिक चालान, आपराधिक समझौता योग्य मामला, दीवानी विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक विवाद, तलाक के छोड़ कर बिजली पानि आ टेलीफोन बिल, श्रम विवाद आ बैंक ऋण से संबंधित मामला के आपसी सहमति से त्वरित निपटारा कयल जायत। लोक अदालत जतः भेटत सरल, सुलभ आ किफायती न्याय, त आओ एहि सुनहरा अवसर के लाभ उठाओ आ अपन लंबित मामला के समाधान पाओ। बेसी जानकारी के लेल संपर्क करू जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दरभंगा, राष्ट्रीय लोक अदालत, न्याय अहाँ के द्वार।
1: तो ई छल लोक अदालत
0: की जानकारी।
1: जानकारी मुनि बहिन बहुत निक लागल आ सब गोटे के आशा करे छिन जे सब गोटा के लाभ भेटत। तो बहुत निक चीज है और ए लेल जो छे जागरूकता सेहो हेबाक चाही जे सब गोटे एक दूसर के जो छे प्रति जो छे स्नेह रखबाक चाही, जागरूकता रखबाक चाही, तखने कोनो तरह समस्या के
0: आ अपना सबके समय से सेहो बांधल छी देवू भाई। तो कार्यक्रम आब जे नन्हा मुन्हा राही अछि ओहो समेटबाक बेर लक्षिया गेल अछि।
1: तो आब हमरा लोकन जो छै जे कार्यक्रम गाम घर में जे किसले छल धियापुता के लेल ई प्रोग्राम का समेट कर आब हमरा लोकन खेती गृहस्थी दिस चलबाक चाही। तो कार्यक्रम खेती गृहस्थी में समस्त किसान श्रोता लोकन के अन्नदाता के स्वागत करै छियनि आ नमस्कार करै छियनि। तो आइ हमरा लोकन गपशप करब मुनि बहिन जे हमरा लोकन खेती बाड़ी तक करै छी मुदा खेती बाड़ी में जो छै बहुत रास पूँजी लगत अछि, परिश्रम लगत अछि, तखन जाकर खेती बाड़ी होइ छै आ निक उपजा बाड़ी सेहो होइ छै। मुदा अखनका तऽ देखि रहल छी अखनका जे मौसम अछि जे हमर किसान श्रोता लोकनि जे बड़ा परिश्रम लगा कऽ मेहनत कऽ कऽ मूँग के खेती कयने छलाह, उड़द के खेती कयने छलाह और आम फसिल के तऽ बुझू जे सेहो आम लीची महुआ के सेहो जे अखन के जे बरखा भ रहल अछि ओहिमे बुझू जे बेसी से बेसी क्षति पहुँचा रहल अछि।
0: अखन देख रहल छी बाहर के मौसम जे अछि देवू भाई, सब किसान भाई सब तऽ देख छथिन अखन बाहर में कतौ ठनका तेज अन्हर पानि बरस रहल अछि आ एहन हर एक दू दिन पर बुझू तऽ भइये रहल अछि पानि।
1: तो जे एकरा की कहबै कि जे है समय के अनुकूल जब बरखा होइ छै कहबै तो छै जे समय से पहले चेत किसान। तो हमरा लोकनि तऽ समयके अनुकूलता खेती बाड़ी करै छी मुदा ऊपरवला के लेल जो छै हुनका शोभनीय नहि लगै छनि ताहि दुआरे जे अखन जो छै समय से पहिने पानि दऽ रहल छै जो कि पानिके एहन आवश्यकता नहि छै अखन।
0: आब एहिमे की भऽ जाइ छै किसान भाई के लेल कखनो मौसम के मार पड़ि जाइ छै, कखनो पाथर खसि पड़ल, कखनो बाढ़ि आबि गेल, कखनो देखब जे फसिल सब मे बेसी खरपतवार भऽ जायत सेहो बढ़वार रोकि दै छै तऽ ओहो सब परेशान रहै छथिन किसान भाई।
1: जे फसिल जे पाछू पाछू आ खरपतवार आगू आगू तऽ जे एहिपर होइ छै कि जखने खेत मे जे खरपतवार जखने बेसी होयत तऽ खेतक जे पोषक तत्व होइए ओ बुझू जे सबटा के जो छै पोषक तत्व के जो छै जे घीच लै छै आ फसिल के जो छै जे नहि भेट पाबै छै जाहिसँ जे छै उपजा बाड़ी पर एकर सेहो प्रभाव मुनि बहिन पड़ै छै। तैं किसान श्रोता लोकनि से जँ मटर चना मसूर अरहर मूंग उड़द मे खर पतवार समस्या देखाए दे तऽ ओकरा लेल जो छै पेंडी मेथेलिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व के 100 लीटर पानि मे घोल बनाकर बाग काल यानी पौध निकलला सँ पहिने जे छिड़काव करबाक चाही बा 15 से 25 दिन बाद सबटा फसिल में 50 ग्राम क्यूज लोफा इथाइल प्रति हेक्टेयर 100 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कैला से सकरी पात वाला खर पतवार पर नियंत्रण पावल जा सकते अछि।
0: आ चौड़ी पत्ता वाला जे खर पतवार होइत अछि देवू भाई, एहि सबके जे छै जाहिमे भऽ गेल अहाँके साठी, मकई, बड़का दुधिया, हजार दाना, गाजर घास, इहो सब जे छै एहि सबसँ किसान भाइके बहुत प्रकोपसँ क्षति भऽ जाइ छै। आ खरीफ फसिलमे रवि मौसममे मौसम फसिलके तुलनामे खरपतवारके प्रकोप बेसी भऽ जाइत अछि। आ सामान्यतः खरपतवार फसल के प्राप्त हो

0: वाला जे ई जे बढ़िया पोषक तत्व कहि सकै छियै ओ खरपतवार ओकर लाभ लऽ लैत अछि, उपयोग कऽ लैत अछि। तैं दुआरे एकरा सङ्ग सङ्ग खरपतवार फसिलके नुकसानदायक रोग आ कीटके सेहो आश्रय दऽ कऽ फसिलके नुकसान हानि पहुँचाबैत अछि। एकरा अलावे किछु खरपतवार एहनो छै जे उत्पादनके गुणवत्ताके घटा कऽ आ मनुख आ मालजालके स्वास्थ्यके प्रति खतरा सेहो उत्पन्न करैत अछि।
1: हाँ मुनि बहिन, देखियौ हमर किसान श्रोता लोकनि 12 मास 3600 दिन किछु ने किछु खेती बाड़ी करते रहै छथिन। खरीफ आओर नगदी फसिलमे जँ कुसियारक गप करी तऽ ओहो फसलमे खरपतवारके समस्या बनल रहैत अछि। तैँ खरपतवारसँ नियन्त्रण लेल हमरा लोकनिके 30, 60 आ 90 दिनपर जे खेतक कमठौन करैत रहबाक चाही। जँ खरपतवार बेसी समस्या देखबामे आबे तऽ एट्राजिन 2.5 सँ 3.0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 700 सँ 800 लीटर पानिमे घोल बनाकऽ रोपनीके 3 दिनके अंदर छिड़काव करबाक चाही। ओकर बाद पुनः 55 सँ 60 दिन बाद 2 सँ 4 डी नामक दवाके 1.25 सँ 1.50 किलोग्राम 700 सँ 800 लीटर पानिमे घोल बनाकऽ प्रति हेक्टेयर दर सँ छिड़काव करबाक चाही। ओकर बाद 90 दिनके बाद एक कमठान कऽ देबाक चाही। जँ एहि तरह हमरा लोकनि जे समय समय पर फसिलके खरपतवारके नियन्त्रण करैत रह मुनि बहिन तब बुझै छी जे उपजा बाड़ी नीक हैत आ सङ्ग सङ्ग जखने उपजा बाड़ी नीक हैत तखने तऽ बुझू जे मन गदगद भऽ जाइ छै।
0: आ मन गदगद होइ छै तऽ मन होइ छै कि
1: गीतनाथ
0: अखन एतेक झमाझम पानि बरस रहल अछि तऽ ओहिमे तऽ आओर गीतनाथ सुनि कऽ किसान भाइके आनन्द एतनि।
1: तऽ आब हमरा लोकनि सुनै छियै एकटा ई लोकगीत।

तो किसान भाई अखन अपना सब सुने छलो है अरविंद कुमार झा आ ओम प्रकाश सिंह के गाओल ई देवी गीत। आ किसान भाई मौसम के जानकारी सेहो बड़ बेसी आवश्यक है तक के पूर्वानुमानित अवधि में उत्तर बिहारक जिला में हल्लुक से मध्यम गरज वाला मेघ बन सकत अहि अवधि में अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकत आ न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबाक अनुमान आ सापेक्ष आर्द्रता भिनसर में 80-85% आ दुपहरिया में 35-40% रहबाक अनुमान।

0: संबंधी सोचना और कार्यक्रम के फिर आगा बढ़ावी। मुनि बहन, भारतीय अर्थव्यवस्था में पशु और खेती के दोनों के एक दूसरे के पूरक मानल गए तो ते दुआरे हमारा लोग मालजाल पाले छी, मुदा कखनो काल का देख रेख के उपरांतो कखनो काल का जो छे बहुत रास जो छे रोग व्याधि भ जाए छे, जाय में संक्रामक रोग जे छे सबसे खतरनाक होया। तो आ वही विषय से संबंधित एक हमारा लोग भेंटवार्ता सुने छी। भेंटवार्ता के विषय है पशुओं में संक्रामक रोग आ इससे बचाव के उपाय। भेंटवार्ताकार डॉक्टर चंद्रभूषण मिश्रा, हिनका से गप कर रहल अनिल कुमार कर्ण। तो आओ हमारा लोग सुनी भेंटवार्ता।
1: किसान भाई लोकन, आजुक खेती गृहस्थी कार्यक्रम में अपने सब गोटे के स्वागत, संगे सब गोटे के नमस्कार। खेती पथारी वाला काजक संग हम सब पशुपालन वाला काज सेहो अदो काल से करत आबि रहल छी। खेती पथारी में जना समस्या हुई है, ठीक ओहिना पशुपालन के क्षेत्र में सेहो बहुत रास समस्या मालजाल के हुई है। ते आई आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में उपस्थित छथि डॉक्टर चंद्रभूषण मिश्रा। डॉक्टर चंद्रभूषण मिश्रा जी, अपने के आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, संगे अपने के नमस्कार।
2: नमस्कार अनिल बाबू।
1: डॉक्टर साहब, हम जानना चाहब जे पशु के बहुत तरह के रोग हुई है, जाहि में संक्रामक रोग सब बड्ड बेसी घातक हुई है, कतेक पशु के जान चल जाइए जानकारी के अभाव में व सजगता के अभाव में कह सके छे। तो सबसे पहिने तो हमरा ई कहू जे संक्रामक रोग सब मालजाल के किया हुई है, आई सब बचबो के लेल सामान्य परहेज की सब करक चाहिए।
2: पशुपालक भाई अनिल बाबू जना कहला, संक्रामक रोग जे छे वो जितबे आसानी से पकड़े छे उतबे वो खतरनाक ओकर असर होइ छे। ई कहियो कहियो एहन परिस्थिति भ जात कि सब व्यवस्था के बाद वहाँ ओकरा कंट्रोल नहि कऽ सकै छी। तैं संक्रामक रोग से बचाव के सबसे आसान, सुलभ और निश्चिंत तरीका छे जे साल में शेड्यूल के मुताबिक पशु के टीकाकरण कराबू। जेना FMD टीकाकरण होइ छे जून में और दिसंबर में, जेना HSBQ के टीकाकरण होइ छे साल में एक बार जून के आसपास। तो ऐसे की है जेना अब अहाँ केना पकड़बै, अगर पशु के मुँह से अचानक लार खसऽ लगलै, ओकरा मुँह जीभ में घाव भ गेलै, ओकरा खाना में दिक्कत भ गेलै, ओकरा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहा लगलै, बच्चा एहिमें बेसी प्रभावित होइ छे दूध पीला पर माय के, तो अहाँ बुझियौ कि ओकरा FMD या खुरपका मुँहपका कहै छै से बीमारी भ गेलै। दोसर बीमारी लंगरा, जकरा BQ कहै छै, ब्लैक क्वार्टर, ये एक बैक्टीरिया जनित बीमारी छै जे कोनो पशु के भ गेला पर ओकर पैर में स्वेलिंग होइ छै, जे स्वेलिंग के अहाँ अगर खूब फूल जाए छे, ओकरा अगर आंगुर से दबेबै तो बालू के पोटरी के जना दबावे के आवाज होइ छे, तेहन क्रिपिटेटिंग साउंड अहाँ कोई में आयत। पशु के बुखार बहुत ज्यादा भ जाए छे, पशु काज केनाय पाच केनाय सब बंद कर दे छे, तो ओकर भी अहाँ ब्लैक क्वार्टर भेले तत्काल सबसे पहिने बालू के पोटरी बनाकर तवा पर बालू के गरम कर कपड़ा में राखि ओकरा खूब सेकू और तत्काल पशु चिकित्सक से इस संबंध में संपर्क करू।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहब जे बचाव के लेल बरसात से पहिने टीकाकरण तो हेबाक चाहिए, चिकित्सा के लेल सामान्य रूप से अब तो दवाई बीरो के बारे में सामान्य गप आदमी सेहो बहुत रास गप बुझा लगल के।
2: जी जी,
1: जना पेंसिलिन भेले, एम्पिसिलिन व सिफालैक्सिन, एकरो व्यवहार कैल जा सकैए।
2: निश्चित रूप से अहाँ के कनिको मवेशी के बुखार बढ़ल तो ओकरा सबसे पहिने एमोक्सिसिलिन, पेंसिलिन के भी भेले एमोक्सिसिलिन, ओहिसँ ओकर प्रयोग अहाँ तुरंत कऽ सकै छी। ओहिमे आइ काल्हि एमोक्सिसिलिन लॉन्ग एक्टिंग भी आबऽ लगलै है कि अगर अहाँके बुझाइए कि एक दिन भंग के बाद हमरा फेर सुई देबऽमे दिक्कत ककरो बजाबऽ के पड़त, तऽ एक दिन अगर अहाँ पेंसिलिन लॉन्ग एक्टिंग दऽ एम्पिसिलिन दऽ देबै तऽ ओ 3 दिन तक काज करत और बहुत सारा बीमारी के ऊपर कंट्रोल भऽ जायत। जँ बुखार छै तऽ मेलोक्सिकाम, पारासिटामोल, फ्लूनीमैक्सिमिन ई सब दवाई अबै छै तकरा अहाँ दियौ, और बहुत ज्यादा सांस चलऽ लगलै, मवेशी गाभिन नहि अइ तऽ ओकरा डेक्सामेथासोन या आइसोफ्लुपोरिडोन ई अबै छै। ई एते दवाई अहाँ प्रारम्भिक रूपसँ भी कोनो अगर कनि मनी जनै छी तऽ अहाँ निश्चित रूपसँ दऽ सकै छी, जाहिसँ बीमारीमे बहुत नियन्त्रण भऽ जायत।
1: डॉक्टर साहब, डकहा वा गिल्टी रोग सेहो मालजाल के भ जाइए, इहो एकटा संक्रामक रोग है, एहिसँ बचाव के लेल आ सामान्य उपचार के संबंध में कहल जाए।
2: डकहा के नाम

0: सुनते पशुपालक रुआ काँपि जाइ छनि। डकहा के सबसँ पैघ लक्षण छै कि ओकर पशु के तापमान 104 सँ बेसी 106 107 तक भऽ जाइ छै। पशु बहुत ज्यादे हाँफ लागत, मुँह से लार निकलऽ लागत, कंठ से लऽ कऽ ओकरा दुनू पैर के बीच तक ओहिमे सूजन भऽ जायत और ओहिके बहुत ज्यादा सीरियस भेला पर मवेशी के मृत्यु भी भऽ जाइ छै सांस नली में गड़बड़ी के कारण। तैं पशु अगर अहाँ के डकहा के गलाघोटू के शिकायत भऽ रहल अइ, डकहा के शिकायत भऽ गेलै, तऽ अहाँ सबसँ पहिने एम्पीसिलिन डेक्सामेथासोन एकर और एनाल्जेसिक में मेलोक्सी काम ग्रुप के सुइया एकटा लगा कऽ तहन तुरंत अस्पताल या योग्य पशु चिकित्सक सँ संपर्क करू ताकि अहाँ के पशुधन बचि सके।
1: देखियौ, कखनो कखनो एहनो देखल जाइ छै डॉक्टर साहब जे माल जाल जे छै कोनो एहन खर पात खा लेलक जे बिखाह होइए तऽ पशुके आपातकालीन स्थितिमे विस्पान कऽ लैए, तऽ ओहिसँ बचऽके लेल की करऽके चाही?
0: आइ काल्हि बढ़ैत वैज्ञानिक खेतीके नेकसँ एक वैज्ञानिक तरीका बढ़लैए जाहिमे विभिन्न प्रकारके कीटनाशीके प्रयोग होइ छै। भीषण गर्मी पड़लासँ भी बहुत सारा चारा जे छै से ओकर सहीसँ ग्रोथ नहि भेला पर ओहिमे पॉइजनिंग डेवलप कऽ जाइ छै। जे तऽ सबसँ पहिने अगर पशु एहन घास खा लेलक जाहिमे कोनो तरहके छिड़काव भेल छै दवाइके, तऽ ओकरा तुरंत तुरंत उठऽ बैसऽ लागत, छटपट छटपट करऽ लागत, पेटमे दर्द हुअ लागत। तैं अहाँके पास अगर खाएवला सोडा उपलब्ध अइ तऽ खाएवला सोडा सुसुम पानिमे घोरिकऽ ओकरा पिया दियौ। ओहूसँ जल्दी अगर दही कतौ उपलब्ध अइ तऽ दही दऽ दियौ। ओहूसँ जल्दी विनेगर होइ तऽ ओ दऽ दियौ। पशुके पूरा शरीरके रगड़ि कहाँ खूब धोइयौ। अब आबि जाउ, जनेरा खेलासँ सबसे ज्यादा आइकाल्हि गर्मीके समयमे जनेरा खेलासँ पॉइजनिंगके बहुत ज्यादा संभावना रहै छै। तँ जनेरके अगर खा लेलासँ पशुमे ई सब लक्षण आयल, पैर हाथ खूब पटकऽ लागल, मुँह से गौज आबऽ लागल, फेन आबऽ लागल, पशु चित्त भऽ कऽ लेट गेल, एहि स्थितिमे अहाँ सोडियम थायोसल्फेटके घोल, सोडियम बाइकार्बोनेटके घोल और एट्रोपिन सल्फेट पशुके भारके मुताबिक 2 ampulles लऽ कऽ 10-12 ampulles तक दऽ सकै छी। संगहि कैल्शियम बोरोग्लुकोनेटके इंजेक्शन ओकरा आई भी चढ़वा सकै छी। तँ जनेरावलामे अहाँके स्थायी कंट्रोल भऽ जायत और पशु अहाँके बचि सकैए।
1: एकर अतिरिक्त किछु आर जानकारी डॉक्टर साहब हम अहाँसँ चाहब, जे दुधारू पशु अइ ओहि पशु सबमे प्रजनन सम्बन्धी समस्या सेहो उत्पन्न भऽ जाइए, जेना एकटा होइ छै रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, जकरा जड़ि बाहर निकलब कहै छियै, तऽ ओकर कारण की होइ छै? देखभालमे कमी होइ छै कि खानपानमे कमी होइ छै? तऽ सामान्य रूपसँ कहल जाय जे एकरा लेल की करक चाही?
0: देखियौ, सबसँ बड़का जखन पशु गाभिन रहै छै तऽ ओ अहाँके बैंक छै, बैंक भेलै ATM टाइपके, लेकिन ATM के पिन अहाँके तखन भेटैए जखन पशु बिया जाइ छै। आ ओहि समयमे अहाँ अगर ओकरा अंतिम 3 मास जे भेलै ओहि मासमे अगर बढ़िआँसँ ओकरा खान पान अहाँ नहि देलियै तऽ अहाँके ATM पीने नहि भेटत, कमजोर भऽ जायत। ओहिसँ पशुके सबसे पहिला दिक्कत ओहिमे हैत कि अहाँके ओकर जड़े नहि निकलत। ओहिसँ बचऽके लेल कमसँ कम 2 मास पहिने ओकरा कॉपर, कोबाल्ट, विटामिन ई, एहिसँ सम्बन्धित जे टैबलेट छै ओहो दऽ सकै छियै। बहुत कंपनी अहाँके ओकर पाउडर बनबै छै, ओ अहाँके 2 kg पाउडर ओकरा खुआ दियौ एकटा पुड़िया सुबह शाम, ओहिसँ भी अहाँके बस जे छै से जर आसानीसँ खसि पड़त आ कोनो तरहके इन्फेक्शन नहि होयत।
1: एकटा आरो रोग होइ छै दुधारू पशुमे जे गर्भाशयमे कोनो तरहक संक्रमण भऽ गेल, इन्फेक्शन भऽ गेल, जकरा गर्भाशय शोथ सेहो कहल जाइ छै, ई किया होइ छै आ जँ भऽ गेल तऽ एहि लेल सामान्य रूपसँ की करक चाही?
0: दू तरहके गर्भाशयमे इन्फेक्शन दू तरहके होइ छै। एकटा तऽ जे नहि बियाएल अइ ओकरोमे होइ छै इन्फेक्शन, जाहिके चलते ओ पाल विलम्बसँ खेलक, पाल खा कऽ उलटि गेल रहि रहि कऽ। गर्भाशयमे अहाँ देखबै कि उज्जर रङ्गके या पानि रङ्गके, एकटा बात जानि लियौ कि कोनो सामान्य पशुके जे निगार अबै छै जागरके, ओ घोंघाके फुरबे ओकर जे पानि जेना खसै छै तहिने पानि खसै छै। आब ओहिसँ कनिको अन्तर पड़लै, मलमाट भेलै या दुधा मने दुधिया रङ्गके भऽ गेलै या पस रङ्गके भऽ गेलै, एहिके मतलब ओकरा इन्फेक्शन कतौ ने कतौसँ चलि गेलैए। ओ इन्फेक्शन 3-4 तरहसँ जाइ छै, नीचामे बैसल अइ जतऽ ओ गोबर लागल छै, गन्दगी लागल छै, दोसर मवेशीके निगार खसल छै, ओ ओकरामे सटि गेलै, ओकरामे चलि गेलै, या कृत्रिम गर्भाधानके कालमे जँ ओकर इंस्ट्रूमेंट सहीसँ स्टरलाइज नहि रहलै, जे दोसर पशुके जे इन्फेक्शन छै ओ सीमेन डालै छै तखने ओकरा बजदानीमे चलि जाइ छै। तेसर जँ अगर साँढ़सँ अहाँ पाल खुआबै छियै तऽ साँढ़मे भी इन्फेक्शन बहुत तरहके रहै छै जे ओहिमे चलि जाइ

0: छै। दोसर, दुधारू पशुमे भी इन्फेक्शन होइ छै बजदानीमे, जेना ओकर जर सहीसँ नहि निकललै या जे कनि बचलै कस ओकरा ओहिमे सड़ि गेलै, जाहिसँ ओकर व्हाइटिश डिस्चार्ज अबै छै, एहि लेल ओकरा बढ़िआँसँ तीन दिन, कमसँ कम तीन दिन ओहिमे लिक्सेन या आओर तरहके ऑक्सीवेन, बहुत तरहके होइ छै एन्टीबायोटिक, ओकरा तीन तरहके एन्टीबायोटिक दऽ कऽ तीन दिन कमसँ कम दियौ, विटामिन ए के इंजेक्शन दियौ, ओकरा बाद नियोमाइसिन सल्फेटके सुई दियौ, ताकि ओकर बजदानी जे छै से दुरुस्त भऽ जाए। आओर
1: हाँ मुनि बहन, अखन हमरा लोकनि भेंटवार्ता सुनल छलहुँ पशुओंमे संक्रामक रोग आ ओहिसँ बचावके उपाय। भेंटवार्ता काल छल डॉक्टर चंद्रभूषण मिश्रा आ हिनकासँ गप कऽ रहल छल अनिल कुमार कर। दुनू गोटेके भेल गपशप बहुत नीक लागल, किसान श्रोता लोकनिके सेहो नीक लागल।
2: एहिके सङ्गे कार्यक्रम खेती गृहस्थी समेटबाक बेर भऽ गेल अछि, तऽ किसान भाई सभसँ चलबाक आज्ञा माँगै छी। नमस्कार देवू भाई।
1: नमस्कार मुनि बहिन।

खेती गृहस्थी किसान भाइयों को संबोधित था। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: छोटा शहर लेकिन सपने ग्लोबल, अब टॉप क्लास इंजीनियरिंग शिक्षा यही बिहार में। हर जिले में एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, पूरे राज्य में 38 प्रमुख संस्थान, विश्व स्तरीय शिक्षा अब बिना बिहार छोड़े। एडवांस्ड लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, अनुभवी फैकल्टी और राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों का मार्गदर्शन, साथ ही बेहतरीन प्लेसमेंट सपोर्ट, ताकि आपके करियर को मिले मजबूत शुरुआत।
2: एडमिशन आधारित है JEE मेन 2026 या BCECE मेरिट पर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 मई 2026 कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें

0: CECEboard.bihar.gov.in विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: कहाँ चलती है, इधर तो आओ।
2: इधर आइए, इधर
3: इधर।
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
5: और इस गीत के बाद
6: छाया गीत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे के बाद अधिकांश मंत्रियों ने कार्यभार संभाला। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने राज्य मंत्रिमंडल में परिवारवाद को तरजीह देने का लगाया आरोप। शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण की परीक्षा का विज्ञापन शीघ्र जारी करने की मांग को लेकर पटना में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। और केंद्र सरकार ने बिहार में लीची की फसल को कीड़ों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए एक विशेषज्ञ कार्यबल का गठन किया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे के बाद अधिकांश मंत्रियों ने आज कार्यभार संभाल लिया है। भूमि सुधार और राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि विभाग के लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए ठोस कार्यनीति बनाई जाएगी।
1: राजस्व विभाग से सही तरीके से सब काम उसका निपटारा हो, इसका विभाग आज से प्रयास शुरू कर देगा। नीचे स्तर पर विभाग की काफी बदनामी है और जिसको लेकर के लगातार विभाग प्रयास कर रही है कि विभाग के अंदर साफ सुथरा और स्वच्छ काम लोगों तक मिल सके।
0: सूचना और जनसंपर्क विभाग के मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद श्रवण कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सूचना तंत्र को मजबूत किया जाएगा।
2: तो जो सूचना तंत्र है उसको और मजबूत करना पड़ेगा और इसी माध्यम से सरकार का सारे कामों को जन जन तक पहुँचा रहा है। सरकार ने जो किया है उसको लोगों तक पहुँचाना इस विभाग का मुख्य काम है। इस काम को पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ आगे ले चलने का प्रयास करूंगा।
0: स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने भी कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक आम लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वे ईमानदारी से काम करेंगे।
3: पिताजी ने जो 20 साल में किया, चाहे स्वास्थ्य हो या कोई भी विभाग, मेरी कोशिश रही कि वो जो काम है वो सिलसिला जारी रहे और जो भी उन्होंने 7 निश्चय 3 में या समृद्धि यात्रा में वादा किया है, चाहे स्वास्थ्य हो या कोई विभाग, उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँ।
0: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कार्यभार संभालने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रोजगार उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी।
4: सबके साथ बैठेंगे, बैठ के समस्या समझेंगे और सब मिलके समाधान ढूंढेंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और साथ में शिक्षा के साथ संस्कार और शिक्षा के साथ रोजगार।
0: कला और संस्कृति विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि

0: अश्लील गानों पर रोक लगाई जाएगी।
1: सबसे पहला मैंने कहा कि अश्लील गाने जो बजते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको प्रमोट करते हैं, उसको हम समाप्त करेंगे, रोकेंगे, क्योंकि कला और संस्कृति ऐसा चीज है जो लोगों को एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मन को ठीक रखता है। ऐसे गाना गाएं जिसके कारण किसी का मन खराब हो, कोई उसमें आपत्ति व्यक्त करे।
0: उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने भी अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार सृजन और पलायन रोकने को अपनी प्राथमिकता बताया।
2: अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, सेवा भाव के साथ उद्योग के क्षेत्र में भी बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अपने नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अपने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देशानुसार बिहार को उस नई ऊंचाई तक लेकर जाएंगे और एक बेटी की तरह सेवा करके देंगे।
0: पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि 7 निश्चय 3 के तहत तय संकल्पों को पूरा करने के लिए विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगा।
3: और जो जवाबदेही मिली है, निश्चित तौर पर उस पर खरा उतरना है। बिहार एक ग्रामीण परिवेश वाला राज्य है, पंचायती राज विभाग की भूमिका ऐसे परिवेश में और ज्यादा अहम हो जाती है। बिहार भी देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल हो, 7 निश्चय 3 के माध्यम से एक रोड मैप पेश किया गया है, उस रोड मैप पर चलते हुए पंचायती राज विभाग भी अपना योगदान देगा।
0: इधर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री मदन सहनी, ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बोलो मंडल, पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री संजय कुमार सिंह और समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता समेत कई अन्य मंत्रियों ने भी कार्यभार संभाल लिया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने राज्य मंत्रिमंडल में परिवारवाद को तरजीह देने का आरोप लगाया है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने बताया कि नए मंत्रिमंडल में 17 मंत्री परिवारवाद से आते हैं।
4: ये लोग केवल अपने परिवार को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। आप सब लोग जानते हैं इतने ऐसे मंत्री हैं, सम्राट चौधरी तो खुद ही उनके पिता शकुनी चौधरी हैं, विजय चौधरी जी उनके पिता भी एमएलए थे, निशांत कुमार हो गए, नीतीश मिश्रा हो गए, संतोष सुमन हो गए, दीपक प्रकाश हो गए, श्रेयसी सिंह हो गए, अशोक चौधरी हो गए, सुनील कुमार हो गए, रमा निषाद हो गए, शीला मंडल हो गए, बुल्लू मंडल हो गए, लेसी सिंह हो गए, श्वेता गुप्ता हो गए, संजय टाइगर हो गए, भगवान सिंह कुशवाहा हो गए, सब लोग जो है परिवारवादी जो है लोग हैं।
0: भाजपा के शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। आज कोलकाता में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके नाम की घोषणा की। शपथ ग्रहण समारोह कल होगा। इधर विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने चुनाव बाद पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: इधर आइए, इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना,
3: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभवाणी,
0: आकाशवाणी।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण की परीक्षा का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आज पटना में प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का जत्था पटना कॉलेज से बीपीएससी ऑफिस की तरफ पढ़ रहा था, तभी जेपी कोलंबर के पास पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर आगे पढ़ने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी छात्र घायल हो गए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने DRE-4 को लेकर सरकार पर टाल मटोल की नीति अपनाने का आरोप लगाया।
1: हम लोग बीपीएससी DRE-4 की मांग कर रहे हैं। जब हमारे बीपीएससी एक वरीय अधिकारी पॉडकास्ट में आके जब ओपन कहते हैं कि हम 25 तारीख को फॉर्म निकाल रहे हैं, 28 तारीख को फॉर्म भराया जाएगा, तो आखिर ऐसा क्या हुआ बीपीएससी को कि हम लोग का पहले अभी
2: वादा चुनाव से पहले वादा किए थे कि TR-4 चुनाव के बाद हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। सरकार की मानसिकता की 2030 में होगा।
0: इस बीच नवनियुक्त शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि सरकार सभी लंबित परीक्षाओं का जल्द से जल्द आयोजन करेगी। उन्होंने छात्रों से आंदोलन नहीं करने की अपील की है।
3: उन लोगों से भी हम बुला के बात करेंगे, अपने विभाग के अधिकारियों को भी कहेंगे, और आंदोलन का रास्ता किसी को अपनाना नहीं चाहिए। एक बार अपनी बात, अभी तो सरकार तुरंत नहीं बनी है, हम लोग एक बार विभाग को समझेंगे और उसके बाद बात करेंगे जो आवश्यक होगा। ये बिहार की सरकार माननीय सम्राट जी के नेतृत्व में जो भी आवश्यक होगा करेगी, इसके लिए आंदोलन की जरूरत ही नहीं।
0: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने TRE-4 के अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार में न तो जनता की कोई सुनवाई हो रही है और न ही अपराधियों पर ही कोई कार्रवाई हो रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की मांग कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की घटना की निंदा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने बिहार में लीची की फसल को कीड़ों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए एक विशेषज्ञ कार्यबल का गठन किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि यह कार्यबल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर निवारण उपायों के लिए अनुशंसाओं के साथ रिपोर्ट जमा करेगा। मुजफ्फरपुर के राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक को इस पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस कार्यबल को एक सप्ताह के भीतर केंद्रीय कृषि मंत्री को अपनी रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है, ताकि समय पर आवश्यक कार्यवाही की जा सके। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कहा है कि उत्तर कोयल नहर परियोजना से औरंगाबाद, गया और अरवल जिले में जल्द ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। श्री कुमार परियोजना के कार्यों के निरीक्षण के बाद मदनपुर में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।
4: अभी तक काम करना है, 65% काम पूरा हो गया, 35% काम जून तक पूरा कर लिया जाएगा, और इसका लागत है 1367 करोड़, और इससे 6% को फायदा होगा।
0: पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। आज पटना, वैशाली, सारण, सिवान, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल और पूर्वी चंपारण समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि आंधी के चलते कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, इसके चलते आवागमन और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में धूल भरी आंधी चलने के साथ बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है।
5: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर एवं वैशाली जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अरवल, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, लखीसराय, नालंदा, पटना, सारण, शेखपुरा एवं सिवान जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

0: विभाजन किया जाएगा। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार के दीवानी और कुछ फौजदारी मामलों का निपटारा किया जाएगा। पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों का भी निष्पादन लोक अदालतों के माध्यम से होगा। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड के सहुरिया पंचायत स्थित कन्या मध्य विद्यालय मुरजा में मध्याह्न भोजन खाने से 2 दर्जन से अधिक बच्चों की तबीयत खराब हो गई। बच्चों को उल्टी, पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत के बाद सौर बाजार पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। कल भी जिले के एक विद्यालय में मध्याह्न भोजन खाने से 300 से अधिक बच्चे बीमार हो गए थे। जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने कहा कि मामले के हर बिंदु की जांच की जा रही है। मुंगेर जिले की ईस्ट कॉलोनी थाना पुलिस ने 450 ग्राम ब्राउन शुगर और लगभग 100 ग्राम व्हाइट ड्रग्स के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। सुपौल के कुनौली बॉर्डर पर एसएसबी और पुलिस की टीम ने 40 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। गया जिले के मानपुर केरे रोड स्थित एक घर में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर 935 बोतल शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पशु तस्करों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने 146 पशुओं के साथ 5 ट्रक को जब्त किया है, साथ ही 7 पशु तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। रोहतास जिले के परथवा थाना क्षेत्र के बहुआरा गांव के पास एक यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गिर गई। हादसे में एक वृद्ध की मौत हो गई जबकि 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे के बाद अधिकांश मंत्रियों ने कार्यभार संभाला। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने राज्य मंत्रिमंडल में परिवारवाद को तरजीह देने का लगाया आरोप। शिक्षक नियुक्ति के 4th चरण की परीक्षा का विज्ञापन शीघ्र जारी करने की मांग को लेकर पटना में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। और केंद्र सरकार ने बिहार में लीची की फसल को कीड़ों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए एक विशेषज्ञ कार्यबल का गठन किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: और इस गीत के बाद
3: छाया गीत।

0: is All India Radio, the news.
1: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है वैशाली जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंह।
2: वैशाली जिले में भारत की जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। इस चरण के अंतर्गत प्रगणकों द्वारा घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है तथा मकानों का चिन्हांकन भी किया जा रहा है। सर्वे के दौरान परिवारों से सामाजिक, आर्थिक एवं आवासीय स्थिति से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है। प्रशासन की ओर से पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर कार्यक्रम आयोजित कर आम लोगों की समस्याओं के समाधान की व्यवस्था की गई है। इससे पूर्व जिले में स्वगणना कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 17 अप्रैल से 1 मई तक चले इस अभियान में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान नागरिकों ने आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपनी और अपने परिवार

0: की जानकारी स्वयं भरकर जनगणना में भाग लिया। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वे सभी जानकारी उपलब्ध कराकर जनगणना कार्य को सफल बनाने में सहयोग करें। जिले के हाजीपुर स्थित ऐतिहासिक कोन्हारा घाट पर वाटर मेट्रो सेवा की शुरुआत जल्द ही की जाएगी। इसे लेकर कार्रवाई तेज कर दी गई है। जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा संभावित स्थलों का निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग, प्रतीक्षालय तथा घाटों की आधारभूत संरचना का आकलन किया जा रहा है। अधिकारियों ने जल मार्ग संचालन की व्यवहारिकता और सुरक्षा मानकों की भी समीक्षा की। इस सेवा के शुरू होने से जल परिवहन को बढ़ावा मिलने और व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार की संभावना जताई जा रही है। वहीं इससे पर्यटन और स्थानीय रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम बीते दिनों भारत के 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर पहुंचे। इस दौरान उन्हें नाश्ते में जिले का मालभोग केला परोसा गया, जिससे जिले के केला उत्पादकों में खुशी की लहर दौड़ गई। स्थानीय किसानों ने बताया कि केले की एक विशेष किस्म है जिसका उत्पादन काफी कठिनाई से किया जाता है। किसानों ने कहा कि इसका स्वाद अन्य केलों से काफी अलग और विशेष होता है। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच जिले में घरेलू रसोई गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति सुचारू रूप से जिले की 67 गैस एजेंसियों के माध्यम से 8 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को नियमित रूप से गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा एजेंसियों में उपलब्ध स्टॉक, वितरण व्यवस्था और उपभोक्ताओं को समय पर डिलीवरी की लगातार समीक्षा की जा रही है। कालाबाजारी और अनियमितताओं को रोकने के लिए विशेष निगरानी और छापेमारी अभियान भी चलाया गया। जिलाधिकारी ने उपभोक्ताओं से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी शिकायत की सूचना प्रशासन को देने की अपील की। बीते दिनों वैशाली जिले में फार्मर रजिस्ट्रेशन अभियान के तहत 112% लक्ष्य हासिल कर उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की गई। अभियान के दौरान 2,40,000 से अधिक किसानों का डिजिटल पंजीकरण किया गया। गांव-गांव विशेष अभियान चलाकर किसानों को रजिस्ट्रेशन के लिए जागरूक किया गया तथा कृषि विभाग के कर्मियों द्वारा शिविर लगाकर किसानों का पंजीकरण किया गया। विभाग के अधिकारी ने बताया कि डिजिटल रजिस्ट्रेशन के किसानों को सरकारी योजनाओं, अनुदान और कृषि संबंधित सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। इसके साथ ही उर्वरकों की उपलब्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिले भर में सघन अभियान चलाया जा रहा है। जिले में ज्ञान भारतम मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटलीकरण करने का कार्य किया जा रहा है। इस क्रम में 150 वर्ष पुरानी दुर्लभ कबीरपंथी पांडुलिपि प्राप्त हुई है। यह पांडुलिपि भक्ति आंदोलन, संत परंपरा और उस समय की सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार इसमें कबीरपंथ से संबंधित कई दुर्लभ संदर्भ और ऐतिहासिक जानकारियां मौजूद हैं। जिला प्रशासन द्वारा इसके संरक्षण, डिजिटलीकरण और सुरक्षित संग्रहण की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इससे शोधार्थियों और इतिहासकारों के अध्ययन के लिए भी उपयोगी बताया गया है। जिले के वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से मस्ती की पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने की पद्धति अपनाई जा रही है, जिससे पढ़ाई को रोचक और सरल बनाया जा सके। विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों, गीत, चित्रकला और समूह आधारित अभ्यासों के माध्यम से बच्चों में सीखने की रुचि बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। वैशाली जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा HPV टीकाकरण अभियान के तहत विशेष अभियान चलाकर 22,000 से अधिक किशोरियों का टीकाकरण किया गया। विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य संस्थानों में नियमित रूप से विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। इस दौरान विभाग की ओर से किशोरियों और अभिभावकों को HPV वैक्सीन के महत्व और इससे होने वाले लाभों की जानकारी दी गई। जिला पदाधिकारी ने कहा कि HPV वैक्सीन बेटियों के सुरक्षित भविष्य की गारंटी है और यह गंभीर बीमारियों से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से बालिकाओं को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया गया तथा अभिभावकों से सहयोग करने की अपील की गई।
1: आप सुन रहे थे वैशाली जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंह।
2: आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये पहला गाना शैलेंद्र का लिखा हुआ, जिसकी धुन बनाई है सलील चौधरी ने, आवाज लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है परख।

ये गाना हमने लिया है फिल्म मेरा साया से। गीत लिखा है राजा मेहदी अली ख़ान ने, संगीत मदन मोहन का, और आवाज़ है लता मंगेशकर की।

चिराग। इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत मदन मोहन का है।

आप सुन रहे थे फिल्म दूज का चांद में लता मंगेशकर को। नगमा निगार थे साहिर लुधियानवी और मौसिकार रोशन। यह है इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, शैलेंद्र का लिखा हुआ नगमा, मौसिकी शंकर जयकिशन की। गुलोकारा हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले। फिल्म का नाम है मयूर पंख।

आप सुन रहे थे फिल्म मयूर पंख में लता मंगेशकर और आशा भोसले को। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार।

कोना छी श्रोता बंधु अपने लोकनि, हम तो कुशल छी आ अपनों लोकनि कुशल है से विश्वास है। असल में बहुत दिन भगल छल

मम्मीसँ तऽ कनेक राहत जरूर भेटैए एहन समयमे, मुदा ई जे बारिश अछि से थोड़े बहुत नोकसान सेहो करैत अछि फसल सबके। नहि, जेना अखन से खेरहीके सीजन अछि, गाछ सब छै, जँ बेसी पानि हेतै तऽ ओ गाछ पिरा जायत खेरहीके, सह कि नहि। इएह सब गप करबाक तऽ छल अहाँसँ, तैं सोचैत रही जे जायब अहाँ सबसँ गप हैत, आ अहूँ सब से रेडियो पर आबि गेल छी, रेडियो खोलि लेने छी, वा आन जे माध्यम अछि हमरा सुनबाक न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यमसँ, ओतौ से हम अहाँ सब संग जुड़ल रहैत छी। तऽ सबसँ पहिने तऽ स्वीकार करू हमर मने सोनूक नमस्कार। अपने लोकनिके बूझल अछि जे ई कार्यक्रम सिंगरहार अछि, आ एहि कार्यक्रममे हमसब साहित्यिक गपसप करै छी, किन्तु जखन गप करबै तऽ खाली साहित्यिके गप तऽ नहि होइ छै, किछु सामाजिक गपसप तऽ सेहो हमसब करै छी। आ से किएक नहि करब, साहित्योमे तऽ सामाजिक गप रहैत अछि ने। किएक तऽ कोनो साहित्य समाजसँ बेलग नहि भऽ सकैत अछि, अनेक कोनो समाज साहित्यसँ से बेलग भऽ सकैत अछि। साहित्य तऽ समाजक समानांतर चलैत अछि, समाजमे जे कोनो घटना कि परिघटना घटैत अछि तकर चित्रण साहित्यमे रहैत अछि, जे समाजक जे आम जन छथि तकरा ओ जे घटना घटल रहैत अछि वा घटवला रहैत अछि, या नीक बेजाय जे किछु बात रहैत अछि, से साहित्यक माध्यमसँ आमजनके बुझेबाक देखेबाक हमसब साहित्य हमर सभक काज करैत अछि। तैं मनुष्यके चाही जे ओ समय निकालि कऽ अपन जे साहित्य अछि तकरा पढ़ैत, स्वच्छ साहित्य पढ़ैत, से पढ़बाक चाही। पढ़ब तऽ अहू लेल आवश्यक छै ने, जे कहल गेल अछि जे मनुष्यक सबसँ नीक संगी ओकर कोनो पुस्तक होइत अछि। पुस्तकमे जे बात रहैत अछि कहल गेल, ओकरा जब मानी आ अपन जीवनमे उतारी तऽ निश्चित रूपसँ से लोक आगू बढ़ैत अछि। आ ततबे नहि, ओहि सङ्गे सङ्गे से लोक अपनासँ जुड़ैत अछि, अपन साहित्यसँ जुड़ैत अछि। भऽ सकैत अछि एहन अहाँक जे कोनो परमप्रिय सङ्गी हेता से समयपर अहाँक सङ्ग छोड़ियो सकैत छथि, मुदा कोनो पुस्तकमे जे बात अहाँ पढ़ने छी ओ जँ विषम परिस्थितिमे स्मरण अबैत अछि तऽ ओ अहाँक सङ्ग नहि छोड़ैत अछि। मने पुस्तक केहनो विषम परिस्थितिमे अहाँक सङ्ग दैत अछि। तैं पुस्तकसँ मित्रता अवश्य करबाक चाही, से जखन मित्रता करबै तऽ पुस्तक से अहूँ सङ्ग ओहिना सम्बन्ध बना कऽ राखत,

आय हमर विचार जे किएक ने आय जे छै से हमरा लोकनि कोनो पुस्तकक विषयमे गप करी। एहन पुस्तक जे नीति विषयक हुए, छैहे साहित्यमे सब तरहक पुस्तक अछि, सब विषयक पुस्तक भेटैत अछि। नीति जिनका से हम सम्मानित छियनि, हुनक नीति से लोक रहा उपयोग करैत अछि, लोक कहैत छै जे हुनक नीति से बहुत नीक छलनि हैं, तो ओहने हुनके नाम पर हुनके से अनुसरण कऽ कऽ जे साहित्यमे साहित्य सब लिखायल अछि, ताहि तरहक जे एकटा पुस्तक अछि ताहि पर आइ हमरा लोकनि से किएक ने गप करी। ओहि पुस्तकमे आखिर की छै, की बात छै, ओ पुस्तक कोन तरहे से हमरा सबके या अपन पाठकके आके समाजके किछु दै छै, किछु बुझेबाक प्रयास केलक अछि, तऽ ईसब गपसप हमसब करब ओहि पुस्तकक माध्यमसँ। मुदा जखन सिंगरहारमे हमसब अबैत छी तऽ बुझले अछि जे हमसब सब किछु समेट कऽ नहि छी, गपसप तऽ हेबे करै छै, हेबे करतै, पुस्तकपर सेहो गप करब हमसब। मुदा किएक ने एहि सबसँ पहिने एकटा कर्णप्रिय मैथिली गीतक आनन्द लऽ ली।

एखन ई कर्णप्रिय गीत हमसब सुनि रहल छलहुँ हैं। वास्तवमे मिथिला तऽ एहन धाम अछि, एहन जगह अछि जतऽ रुकबाक ककरा इच्छा नहि होइत छैक, आ से हमरा सब तऽ जानिते छी। एहिठाम स्वयं भगवान सेहो आबि कऽ रहल छथि। खैर, हमसब गप करबा लए छलहुँ हैं पुस्तकके विषयमे, पुस्तक परमे। तऽ आइ से हमर विचार अछि जे एकटा महाकाव्य विषयमे किछु गपसप करी। ओ महाकाव्य अछि चाणक्य, जकर प्रणेता छथि दीनानाथ पाठक बंधु। अच्छा, एहि पुस्तकसँ पहिने से हम गपके क्रममे कहलहुँ जे ओहन जे नीति निर्धारक छथि तऽ चाणक्य नीति तऽ हमरा सबके बुझले अछि। तऽ कहबाक हमरा ई अछि जे आइ हमरा सब चाणक्य महाकाव्य पर गपशप से करबै, मुदा इहो बुझल रहक चाही हमरा सबके जे महाकाव्य सर्गमे निबद्ध रहैत अछि। जेना अध्याय होइ छै तऽ महाकाव्यमे सर्ग होइत अछि, तऽ कतेक सर्ग रहबाक चाही कमसँ कम? तऽ कमसँ कम 8 सर्ग हेबाक चाही। से ई चाणक्य महाकाव्यमे 11 सर्ग होइत अछि आ एकर नायक चाणक्य छथि। तऽ चाणक्य तऽ बुझले अछि हमरा सबके जे इतिहास प्रसिद्ध नायक छथि, सङ्गहि सङ्ग ई नीतिशास्त्रक सेहो विद्वान छलथि, परम त्यागी सेहो छलाह। ततबे नहि, नायकक जे प्रधान गुण सब छै ताहि सब गुणसँ ई भरल छथि। मने चाणक्य धीरोदात नायक छथि आ ई एहन त्यागी लोक छलाह जे सम्पूर्ण आर्यावर्तक साम्राज्यसँ भ्रष्टाचार अनाचारके ध्वस्त कऽ देलनि आ एकटा पराक्रमी प्रतिभा सम्पन्न युवकके राज सिंहासन पर बैसा देलनि आ स्वयं अपन जे जीवन छलनि हैं तकरा व्यतीत करबाक लेल, तकरा बितेबाक लेल पुनः अपन जन्मभूमि चलि जाइ छथि। से एहि बात के लेल ई जे चाणक्य महाकाव्य अछि तकर ई पद्यांश के सुनल जाय, अकानल जाय। कटि तटि में कौपीन कांख तर कृष्ण सार मृग छाला, कर में दर्फ कमंडल उराजित गर रुद्राक्षक माला, जटाजूट चंदन सँ चर्चित भाल स्वयं संपन्न भेष,

मन चलल छथि जन्मभूमि में, बिताबे जीवन शेष। मने एहन लोक जे पराक्रमी छलाह, अपन पराक्रम सँ, अपन नीति सँ संपूर्ण साम्राज्य में जे व्याप्त कुरीति सब छलै, भ्रष्टाचार छलै, तकरा समाप्त कऽ देलनि आ एकदम योगी जकां स्वयं चलि देला। फेर किछु नहि चाही आ ओ राज ओहि दोसर युवक के दऽ देलनि जे कुशल संचालन कऽ सकैत छलै राज्य के, जकरा पर हिनका भरोस भेलनि जे ई एहि देशक एहि राज्यक संचालन नीक जकाँ कऽ सकैत अछि। तकरा पर ई विश्वास कऽ कऽ ओहि राजगद्दी पर ओकरा बैसा कऽ आ विदा भऽ गेलाह। एहन जे लोक चाणक्य छलाह, तिनके विषयमे एहि चाणक्य महाकाव्यमे लिखल अछि, ततबे नहि लिखल अछि, आर बहुत बात सब चाणक्य महाकाव्यमे अछि। पहिले कहलहुँ हैं जे ई तऽ स्वयं नीति निर्धारक छलखिन हैं, नीति शास्त्रक विद्वान छलखिन हैं, ज्ञाता छलखिन हैं, तऽ स्वाभाविक छै जे हुनक नीति सब सेहो तऽ आयल हेतै। अच्छा, ततबे नहि, एहि महाकाव्य के जे प्रणेता, तिनक से चमत्कार जे छन महाकाव्य लिखबाक, सेहो बहुत सुंदर छन। आ से तकरा देखबाक लेल देखियौ एहि पद्यांश मे जे चाणक्य महाकाव्यक प्रणेता दीनानाथ पाठक बंधु प्रकृति वर्णन जे केलथि है, से कतेक नीक जकाँ, कतेक मनोरम छै ओ दृश्य, सोझा में आबिकऽ ठाड़ भऽ जाइत छै। कोना से एहि पद्यांश के सुनल जाय। जल में किरण, किरण में लाली, लाली में सौंदर्य अपार, सुख में खग, खग में कलरव, कलरव में मोदपचार, सर में कमल, कमल पर मधुकर, मधुकर में कलमद गुंजार, तरु में दल, दल पर कोकिल कुल, कोकिल कुल कलनाद उचार। मने ई जे चाणक्य महाकाव्यक लेखक छथि, से ततेक चमत्कार एहिमे उत्पन्न करै छथि जे लगै छै जे जकर ओ वर्णन केलखिन हैं, से दृश्य सोझा में आबि कऽ ठाड़ भऽ जाइत अछि, जीवंत भऽ जाइत अछि। आ इएह एकटा कुशल लेखक के गुण होइत छै, कोनो कविक गुण होइत छनि। अच्छा, आर गपशप हमरा लोकनि करबै, मुदा जखन कविता गप करै छी, काव्यक गप करै छियै, साहित्यक गप हमसब करै छी, गीत नाद तऽ बनिते छै, होइते छैक, तऽ आउ ने एकटा आर गीत सुनै छी आ फेर आर किछु गप हमरा सब चाणक्य महाकाव्य पर करब।

एखन एकटा आर कर्णप्रिय गीत हमसब सुनलहुँ ममता ठाकुरसँ। हमसब गप कऽ रहल छलहुँ हेँ चाणक्य महाकाव्यक विषयमे। अच्छा, एकटा गप आर छै जे हमरा सभक जे समाज अछि ओकर जे नेता होइत छथि ओ केहन हेबाक चाही, कोन तरहक हेबाक चाही। चूँकि पहिने कहलहुँ चाणक्य नीति निर्धारक छलखिन हेँ, तऽ निश्चित रूपसँ एहि चाणक्य महाकाव्यमे

किछु नीतिक गप सेहो हेतैक। हाँ तऽ देखियौ जे एहिमे केहन हेबाक चाही हमर नेता, ताहि विषयमे जे कहलथि हैं, कहलखिन हैं, लिखलखिन हैं कवि, से देखियौ। काल कूट घट पीब सुधारस जग में बाँट सकै छि, मर्त्य लोक सँ देव लोक धरि नेता ओ कहबै छि। विख ज्वाला परिपूर्ण नागफन चढ़ि जे नाचि सकै छि, सह समाजक राष्ट्रक जन नेता कहबै छि। स्पष्ट छै ने, कालकूट घट पीबी सुधारस जग में बाँट सकै छि। महादेव अपने तऽ बिख पी गेलखिन सबटा, आ अमृत जे छलैए ओ आन सबके बाँट देलखिन, तैं ओ महादेव छथि, देव तऽ सब छथि, आ ओ महादेव मने कहबाक तात्पर्यता छै जे अपन सुख त्याग दिए आमजन के सुख लेल सहचा आमजनक नेता भऽ सकैत अछि। अब होइत अछि केहन से तऽ अहाँ स्वयं जनैत छियै, समझदार बुझनिहार तऽ छै अपने सब। दोसर लाइनमे कहलखिन हैं जे विख ज्वाला परिपूर्ण नाग फन चढ़ि जे नाचि सकै छि, तऽ नागक फन पर के चढ़ला तऽ कृष्ण, तऽ कृष्ण केहन से नेता भेलखिन हैं तऽ देखबे केलिए, जो अपन सब किछु त्याग केलखिन हैं दोसर के लेल, सुख के लेल, मुदा आजुक जे परिस्थिति अइ सेहो हमरा सबके बुझले अछि। तऽ गप करैत करैत समय एकदम ससरि गेल अछि, मुदा किएक ने चलैत चलैत हमरा लोकनि जे सब दिन शब्द विमर्श करैत छी, तऽ से किछु शब्द पर गपशप करैत चली या किछु शब्द कहि दी। एकटा शब्द अछि सट्टा। सट्टा होइत अछि पात्र सनक बाँस खुट्टा जे गाड़ल जाइत अछि तकरा सट्टा कहैत छियै। आ तहिना ओधि आ एकटा वीर अछि शब्द। आ एकदम समय समाप्त अछि, तऽ आजुक कार्यक्रमसँ सोनूके चलबाक आज्ञा देल जाय। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने को हैं। कुछ क्षणों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में

0: अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहाँ राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
3: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल के वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण

0: अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
1: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। टीएमआर जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
0: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
3: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट था, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
4: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को LPG सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाड टोबैगो के संबंध, इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है।

0: त्रिनिदाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
1: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकार ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर ₹94.48 के स्तर पर बंद हुआ।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को

0: कायम की जानी चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि ये खसूसी अदालतें एक माह के अंदर कायम की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अस्खुद नोटिस लेते हुए एक मुकदमे की समाअत के दौरान हिदायत जारी की कि इन खसूसी अदालतों को कोई और केस नहीं सौंपा जाएगा और मुकदमे की कार्रवाई यौमिया बुनियाद पर की जाएगी। मरकजी वजारत सेहत ने हंटा वायरस के मामलात के कम आलमी खतरे के जायजे के पेश नजर एहतियाती निगरानी के इकदाम फाल कर दिए हैं। जराए के मुताबिक वजारत सेहत क्रूज शिप MV होंडियस पर हंटा वायरस इन्फेक्शन के रिपोर्ट शुदा मामलात से मुतालिक बदलती हुई सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। ये काम अमराज की रोकथाम से मुतालिक कौमी मरकजी NCDC इंटीग्रेटेड डिजीजेस सर्विलांस प्रोग्राम सेहत की आलमी तंजीम WHO और सेहत के दीगर बैन अलाक्वामी सेहत हुकाम के तआवुन से किया जा रहा है। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में जमीनी वसाइल के महकमे की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। डिजिटल इंडिया जमीनों के रिकॉर्ड की जदीदकारी के प्रोग्राम 3.0 की सूरत हाल का जायजा लेते हुए जनाब चौहान ने कहा कि जदीदकारी की काविशों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि जमीन से मुतालिक खिदमात को शफाफ मौसर और रुकावटों से पाक बनाकर शहरियों के साथ साथ महसूलाती हुकाम के लिए सहूलत का बाइस हों। उन्होंने वाजे किया कि मुजव्वजा अराजी की पैमाइश के इकदाम क़िता अराजी की फौरी और दुरुस्त कदर की तशखीस में सहूलत फराहम करेंगे जिससे बैंकों को कर्जों की मंजूरी के अवामिल को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत को महाराष्ट्र के झोंपड़पट्टी वाले इलाकों की बेहतरी सफाई और बाजाबादकारी के एक्ट 1971 से मुतालिक कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए 4 हफ्ते के अंदर एक आला सतह की माहिरीन की कमेटी तश्कील देने की हिदायत जारी की है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक कानून की जमीनी मौसरियत का जायजा लेने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल आवरी करते हुए हाई कोर्ट की जानिब से इस सिलसिले में कार्रवाई के दौरान यह फैसला किया गया। जस्टिस GS कुलकर्णी और अद्वैत सेठना पर मुश्तमिल बेंच ने मुंबई में झोपड़पट्टी की बहाली और शहरी मनसूबाबंदी की इंतहाई नाकिस पेशरफ्त पर तनकीद की और कहा कि यह कानून 5 दहाइयों से ज्यादा नाफिजुल अमल है। खवातीन के कौमी कमीशन NCW ने संगीन जंसी जराइम के मामलों में तेज रफ्तार अदालती कार्रवाई सख्त निगरानी और पैरोल पर पाबंदी की जरूरत पर जोर दिया है। कमीशन ने अपने एक बयान में खवातीन और बच्चों के खिलाफ संगीन जराइम में मुलव्वस मुलजमीन के लिए मौजूदा पैरोल फ्रेमवर्क पर गहरी तशवीश का इजहार किया। भारत की सिमरनजीत कौर आज शंघाई में खेले गए तीरंदाजी आलमी कप स्टेज 2 में खवातीन के रिकर्व इंफरादी मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिमरनजीत कौर ने क्वार्टर फाइनल में अपनी चीनी ताइपाई हरीफ फेंग यू जू को सीधे सेटों में 0 के मुकाबले 6-0 से शिकस्त देकर अपने पहले वर्ल्ड कप तमगे से सिर्फ 1 जीत की दूरी पर पहुंच गई हैं। अब सेमीफाइनल में सिमरनजीत कौर का मुकाबला आलमी नंबर 1 जनूबी कोरिया की किम श्योंग से होगा। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सुवेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के पहले BJP के वजीर आला होंगे। हलफ बरदारी की तकरीब कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। TVK के सरबरा सी जोसेफ विजय को कांग्रेस VCK IUML और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत हासिल हो गई है। वो कल तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मुनशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। उसने रियासत की पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली और गैर कानूनी मुनशियात की तिजारत करने वाले बड़े ताजिरों को गिरफ्तार करने पर जोर दिया। भारत और सिंगापुर ने दहशतगर्दी से मुकाबला करने में मालूमात शेयरिंग को बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। और तीरंदाजी में सिमरनजीत कौर शंघाई में आलमी कप स्टेज 2 में खवातीन के रिकर्व मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम साहित्य की। साहित्य की श्रोताओं नमस्कार। साहित्य के आज के इस अंक में आप सुनेंगे मांझड़ी खाड़े से काव्य पाठ। इसके बाद सुनिएगा सुरेंद्र प्रसाद सुमन की वार्ता राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन और छायावाद। और कार्यक्रम के अंत में प्रमोद नारायण मिश्र की कहानी अनुत्तरित प्रश्न। लेकिन पहले संपादकीय श्रोताओं, संपादकीय में आज हिंदी जगत

0: की प्रतिष्ठित साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध पर रोशनी डालना चाहेंगे। उनका जन्म 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। उनका प्रारंभिक जीवन निजामाबाद कस्बे में ही बीता और यहीं से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत की। अयोध्या सिंह उपाध्याय आधुनिक हिंदी साहित्य में एक अग्रणी स्थान रखते हैं। वे द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और लेखक होने के साथ साथ एक अध्यापक, संपादक और आलोचक भी थे। उन्होंने साहित्य की कई विधाओं में अनुपम कृतियों का सृजन किया है। हिंदी कविता के विकास में उनका विशेष योगदान रहा है। उन्हें हिंदी और खड़ी बोली पर समान अधिकार प्राप्त था। उनकी काव्य कृति प्रिय प्रवास तथा उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाट और अधखिला फूल को कालजयी रचनाओं का दर्जा प्राप्त है। उनका साहित्य तत्कालीन सामाजिक समस्याओं और मानवीय संवेदनाओं को दर्शाता है। आज भी जब सामाजिक असमानता और यथार्थवाद की बात होती है तो उनके साहित्य में एक दिशा मिलती है। उनकी रचना प्रिय प्रवास में राधा को केवल एक प्रेमिका नहीं बल्कि एक लोक सेविका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये नारी सशक्तिकरण की आज की धारणा से मेल खाता है। उन्होंने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में अहम भूमिका निभाई, जो आज हिंदी कविता की मुख्य धारा है। हम कह सकते हैं कि उनका योगदान न केवल उस समय के लिए बल्कि वर्तमान साहित्य के संदर्भ में भी अत्यंत प्रासंगिक और आधारभूत है। अभी आप सुन रहे थे संपादकीय साहित्यिकी में। लीजिए अब प्रस्तुत है मंजरी खड़े से उनकी काव्य रचनाएं।
1: मेरी पहली कविता का शीर्षक है कुछ कपड़े। कुछ कपड़े आ जाते हैं, कुछ कपड़े आ जाते हैं अपने आप। जी हाँ, अपने आप। सवाल ना पूछिए कैसे, बस अपने आप आ जाते हैं, कभी मन के कभी बेमन के। मन के कपड़े बार बार चढ़ते हैं तन पर, मन के कपड़े बार बार चढ़ते हैं तन पर, चढ़ते हैं तन पर लेकिन छूते हैं मन को, चढ़ते हैं तन पर लेकिन छूते हैं मन को। ये कुछ कपड़े होते हैं। कुछ कपड़े बेमन के होते हैं, जो तन और मन दोनों के न होते हैं। बेमन के कपड़े संख्या में अधिक पर प्रशंसा में कम होते हैं। दोष किसका है? कपड़ों का, हमारे अस्थि मज्जा का, रंग रूप का, कद काठी का, किसका? मन के या बेमन के कपड़े कपड़े ही होते हैं, सामाजिक होने का प्रतीक भी होते हैं। सामाजिक व्यवस्था कभी मन की रही नहीं, अतीत हो या वर्तमान, बेमन की व्यवस्था का ही साम्राज्य। बेमन की व्यवस्था में मौन है, विरोध है, आक्रोश है, बेमन के कपड़ों की तरह। मेरी अगली कविता का शीर्षक है अंतिम पन्ना। खुलती जाती हैं धीरे धीरे किसी रहस्य की तरह किताबें। पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक की यात्रा जगमगाते दिए जैसी सब कुछ दिखाती हैं, महसूस कराती हैं, सैर कराती हैं किताबें। जिस उद्देश्य से उठाई जाती हैं किताबें, वैसे ही गंध रस का अनुभव कराती हैं किताबें। जिस उद्देश्य से उठाई जाती हैं किताबें, वैसे ही गंध रस का अनुभव कराती हैं किताबें। मन मिजाज यदि खुश हो, मन मिजाज यदि खुश हो तो अपना दरवाज़ा खोल देती हैं किताबें। फिर अंदर से सिर्फ ज्ञान ही नहीं, वो परंपरा, वो संस्कृति, वो सब कुछ खुलता चला जाता है ताले की सही चाबी की तरह। लेकिन अंतिम पन्ना अंतिम होकर भी अंतिम नहीं रह जाता। वो किताब में छिपे रहस्य को जान लेने की जो खुशी देता है, वहीं कहे का बहुत कुछ अनकहा रह जाने का पीड़ा भी दे जाता है।

0: उस अनकहे को जानने का जुनून भी जगा जाता है। किताब का अंतिम पन्ना उसी पीड़ा की शांति का नया मार्ग खोल जाता है। इसीलिए किताब का अंतिम पन्ना किताबी दुनिया की अटूट और मजबूत कड़ी बन जाता है। किताब का अंतिम पन्ना अंतिम होकर भी अंतिम नहीं रह जाता। मेरी अगली कविता का शीर्षक है अटका सा बसंत। किसी मजदूर की फटी रक्तिम बिवाइयों की धार को क्यों नहीं रोकने आता है बसंत। किसी मजदूर की फटी रक्तिम बिवाइयों की धार को क्यों नहीं रोकने आता है बसंत। किसी इंसान की जीवित प्रतिमा बनी नारी के कपोल जलों को सोखने क्यों नहीं आता है बसंत। किसी पिता के कंधों पर जिम्मेदारियों के बोझ को क्यों नहीं उतार जाता है बसंत। अन्य के कुछ दानों के लिए पसरी नन्ही हथेलियों पर क्यों नहीं छाता है बसंत। खुले आकाश और कोरी धरती को लपेटे लोगों के बीच जिंदा रहने के संघर्ष में क्यों नहीं खिलता है बसंत। पूछता है मेरा मन आखिर कहीं कहीं अटका सा क्यों रह जाता है बसंत। अटका सा बसंत भटका सा बसंत। अटका सा बसंत भटका सा बसंत। मेरी अगली कविता का शीर्षक है इंटरनेट सेवा आज बंद है। एक साथ रहते हुए भी घर के लोगों ने बहुत समय बाद एक दूसरे को देखा है। एक साथ रहते हुए भी घर के लोगों ने बहुत समय बाद एक दूसरे को देखा है क्योंकि इंटरनेट सेवा बंद है। पति ने पत्नी की मेहनत को और पत्नी ने पति के संघर्ष को भागते दौड़ते जीवन में ठहर कर देखा है क्योंकि इंटरनेट सेवा आज बंद है। आज बहुत समय बाद छत की मुंडेरों पर दो पड़ोसियों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा है। भाई का बहन से और बहन का बहन के झगड़े से आज बहुत समय बाद घर गूंजा है क्योंकि इंटरनेट सेवा बंद है। लंबे समय के बाद भूले भटके रिश्तेदारों की फ़ोन कॉल बजी है। कैसे हो ठीक हूँ जैसी औपचारिकता के बाद सवाल यही गरमाया है कि नेट सेवा कब बहाल होगी। मेज और अलमारियां भी आज खुश हैं क्योंकि उनके ऊपर जमा बोझ से इन्हें हल्का किया गया है। ऐसे अवसर प्राय तभी आते हैं जब ज़बरदस्ती दिवाली की सफाई का दबाव हो या किसी खास मेहमान का घर में आगमन हो। कारण चाहे जो भी हो, घर की दीवारों और साजो सामानों ने घर के ही लोगों की नज़रें इनायत पाई हैं क्योंकि इंटरनेट सेवा बंद है। घर के तमाम ज़रूरी काम भविष्य के प्रोग्राम बनाने की आज कुछ फुर्सत है क्योंकि इंटरनेट सेवा बंद है। बहुत समय बाद घर के सभी सदस्य एक साथ खाना खा रहे हैं। हाँ, सिर्फ खाना खा रहे हैं, वो भी अपने दोनों हाथों का भरपूर उपयोग करते हुए क्योंकि इंटरनेट सेवा बंद है।
1: अभी आप सुन रहे थे मंजरी खड़े से काव्य पाठ। अब प्रस्तुत है सुरेंद्र प्रसाद सुमन की वार्ता राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन और छायावाद।
2: मोटे तौर पर छायावाद का काल सन 1916 ईस्वी से सन 1936 ईस्वी यानी उच्छ्वास से जुगांत तक तथा सन 1920 ईस्वी से सन 1936 ईस्वी तक माना जाता है। यद्यपि सुप्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक नामवर सिंह ने छायावाद का काल सन 1918 ईस्वी से सन 1938 ईस्वी तक निर्धारित किया है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह काल जहां एक तरफ भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का काल था, वहीं दूसरी तरफ प्रथम विश्व युद्ध के साथ ही साथ सोवियत संघ की सफल समाजवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत सहित दुनिया के कई देशों में समाजवादी विचारधारा एवं समाजवादी साम्यवादी पार्टियों के उदय का भी काल था। इसलिए राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन

के साथ ही वैश्विक परिदृश्य की छाया भी छायावादी साहित्य पर पड़ना स्वाभाविक ही था। वैसे छायावाद को कई आचार्यों एवं आलोचकों ने अपने अपने ढंग से पारिभाषित करने का प्रयास किया है। छायावाद क्या है प्रश्न के जवाब में मुकुटधर पांडे ने लिखा है कि अंग्रेजी या किसी पाश्चात्य साहित्य अथवा वंग साहित्य की वर्तमान स्थिति की कुछ भी जानकारी रखने वाले तो सुनते ही समझ जाएंगे कि यह शब्द मिस्टिसिज्म के लिए आया है। इस मिस्टिसिज्म शब्द के आते ही रहस्यवाद शब्द भी प्रचलन में आ गया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसी दृष्टि से छायावाद को रहस्यवाद कहा था और आजकल के हिंदी कवि और कविता शीर्षक अपने निबंध में उन्होंने छायावाद के संबंध में प्रचलित धारणाओं का उल्लेख करते हुए लिखा कि छायावाद से लोगों का क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आता। शायद उनका मतलब है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। सन 1930 के आसपास अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध कवियों वर्ड्सवर्थ, शेली और किट्स आदि के प्रभाव से छायावाद के साथ रोमांटिसिज्म शब्द भी प्रचलन में आ गया। इस रोमांटिसिज्म को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंतावाद कहा। धीरे धीरे यही रोमांटिसिज्म अथवा स्वच्छंतावाद छायावाद का द्योतक समझा जाने लगा। हिंदी में जब कभी छायावाद का जिक्र आता है तो सामान्यतया इसका संबंध उसी तरह की कविताओं से बैठाया जाता है जिन्हें यूरोपीय साहित्य में रोमांटिसिज्म की संज्ञा दी जाती है और इनके अंतर्गत रहस्य भावना एवं स्वच्छंदता के भाव के साथ ही साथ कई तरह के भाव प्रस्फुटित होते हैं। सच पूछिए तो छायावाद की इन सामान्य प्रवृत्तियों के अलावे इसकी विशेष प्रवृत्तियां और विशेषताएं भी हैं जिन्हें नज़रअंदाज कर छायावाद पर कुछ भी कहना उसे संकुचित दायरे में सीमित कर देना है। इसकी अपनी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं जिससे राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों के साथ साथ साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां भी प्रभावित होती रही हैं। इसी पृष्ठभूमि में छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों तथा विशेषताओं का उल्लेख भी किया जाना चाहिए। छायावाद का मूल उत्स भारतीय स्वाधीनता संग्राम में निहित है। अंग्रेजी दास्ता से मुक्ति के साथ ही देशी रजवाड़े तथा सामंतों से मुक्ति के लिए व्यापक आम आवाम की छटपटाहट, चिंता तथा इसके लिए संघर्ष की अभिव्यक्ति अपने विविध रूपों में हुई है। अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक छायावाद की भूमिका में ही छायावाद के संबंध में अपनी धारणा स्पष्ट करते हुए नामवर सिंह ने लिखा है कि छायावाद के काव्य सौंदर्य के विवेचन से स्पष्ट है कि यह सारा सौंदर्य व्यक्ति की स्वाधीनता की भावना से उत्पन्न हुआ है और वह स्वाधीनता की भी व्यक्ति के माध्यम से संपूर्ण समाज की स्वाधीनता की अभिव्यक्ति है। परंतु इस काव्यगत स्वाधीनता को तत्कालीन स्वाधीनता संग्राम से मिलाकर देखने से पता चलता है कि छायावाद में स्वाधीनता संग्राम के कुछ पहलू छूट गए हैं और कहीं कहीं छाया भी धुंधली और मूल से दूर चली गई है। फिर भी छायावाद की कविता से राष्ट्रीय जागरण का पर्याप्त आभास मिलता है। इसी राष्ट्रीय जागरण के फलस्वरूप संपूर्ण भारत में रोमांटिक काव्य की लहर दौड़ गई थी जिसका एक अंग हिंदी का छायावाद भी है। छायावाद की कविताएं अपने पीछे एक विशाल परिदृश्य का पता देती हैं। छायावाद में जो सार्वभौम और शाश्वत तत्व दिखाई पड़ते हैं वे सौंदर्य शास्त्र के किसी अलौकिक नियम से नहीं आए हैं बल्कि उसके ऐतिहासिक कार्यों के ही पुरस्कार हैं। स्मरण रहे कि हिंदी साहित्य में छायावाद के उदय के पहले ही राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में महात्मा गांधी का उदय हो चुका था। यही कारण है कि छायावाद पर गांधी जी का प्रभाव भी प्रलक्षित होने लगा था। प्रमुख आलोचक डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद पर गांधी जी के प्रभाव का उल्लेख करते हुए लिखा है कि जिन परिस्थितियों ने हमारे दर्शन और कर्म को अहिंसा की ओर प्रेरित किया उन्होंने ही भाव सौंदर्य वृत्ति को छायावाद की ओर। इसका यह अर्थ कतई नहीं लगाया जाना चाहिए कि छायावाद और गांधी जी का जीवन दर्शन समान है। छायावाद को गांधी जी से जितनी प्रेरणा मिली उससे कम प्रेरणा रविन्द्रनाथ टैगोर से नहीं मिली। छायावाद वस्तुतः एक व्यापक जीवन दृष्टि भी है जिसमें कई ढंग की प्रवृत्तियां समाहित हैं। छायावादी दौर में राष्ट्रीयता का स्वर प्रमुख था जिसके केंद्र में एक ओर जहां व्यक्तिकता थी वहीं दूसरी ओर सामाजिकता का भी आग्रह था। छायावादी काव्य में भले ही यह सामाजिकता का आग्रह उत्तर छायावादी दौर में अभिव्यक्त होता हुआ दिखाई दे किंतु छायावादी दौर के गद्य में तो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति हो ही रही थी। प्रेमचंद जैसे समर्थ कथाकार सामाजिक यथार्थ को अभिव्यक्त करने में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर रहे थे। छायावाद के पूरे दौर में राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम भी पूरे उफान पर था। कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में हसरत महानी के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ ही पूरी आज़ादी की मांग उठाई जा चुकी थी। कांग्रेस पार्टी का विभाजन भी नरम दल और गरम दल के रूप में हो चुका था।

जहाँ एक तरफ गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक तरीके से सुधारवादी आंदोलन चलाए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, बी के दत्ता, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे गरम दल के नेताओं द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन भी चलाए जा रहे थे। जालियांवाला बाग कांड, सांडर्स वध, असेंबली बम कांड हो चुका था और 23 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी पर लटकाया जा चुका था। दलितों की मुक्ति और राष्ट्र निर्माण के सवाल पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी दूसरी आज़ादी की मांग के साथ मैदान में डटे हुए थे। इन सारी परिस्थितियों के बावजूद छायावादी साहित्य से जो अपेक्षाएं थीं वह तो पूरी नहीं हो सकीं, फिर भी पूर्व छायावादी रचनाएं जहां रोमांटिकता के साथ राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन को गति प्रदान कर रही थीं, वहीं उत्तर छायावादी दौर में छायावाद के प्रमुख समर्थक रचनाकारों ने बहुत हद तक इस कार्य को पूरा किया। छायावाद के प्रमुख रचनाकारों में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम शुमार है। प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियाँ कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, चित्रधार, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर तथा कामायनी आदि में जहाँ उद्दात मानवीय मूल्यों की अभिव्यक्ति हुई है, वहीं उनके विशाख, अजात शत्रु, कामना, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त तथा ध्रुव स्वामिनी जैसे सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना से ओतप्रोत हैं। उनके चंद्रगुप्त नाटक में अलका द्वारा प्रस्तुत यह गीत राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के समरगान सरीखे हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दासी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी, अराति शैन सिंधु में शुवाण वाग्नि से जलो, परवीर हो जयी बनो बढ़े चलो। छायावाद की सुप्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा को लोग प्रायः करुणा और वेदना की रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्मरण करते हैं, लेकिन उनकी रचनाएं कोरे रहस्यवादी न होकर गहरी देशभक्ति की भावना से भी ओतप्रोत हैं। कवित्री महादेवी वर्मा अपनी मैं नीर भरी दुख की बदली शीर्षक कविता में जहाँ एक और अपने हृदय के उमड़ते हुए भावों को अभिव्यक्त करते हुए बिना ज्वाला के ही अपने आप को राख में परिणत करने को अभिशप्त हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमरी कल थी मिट आज चली, वहीं दूसरी ओर देश भक्ति से शराबोर चिर सजल आंखें ऊनी दी आज कैसा व्यस्त बाना, शीर्षक कविता में कुछ यूं कहती हैं, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ के बाधा बनेंगे तितलियों के पार रंगीले, विश्व का करंदन भुला देगी मधुब की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी छांह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि पंत और निराला दोनों ऐसे कवि हैं जो युग प्रवाह के अनुरूप ढलते हैं। दोनों जहां एक ओर छायावाद की रोमांटिक मृदुल छाया में विश्राम करते हैं, वहीं दूसरी ओर देशभक्ति के बितान पर अंग्रेजी साम्राज्यवाद से मुक्ति के साथ ही देशी शासकों शोषकों के ब्रह्मफांस से आम आवाम की मुकम्मल मुक्ति का भी आह्वान करते हैं। यही कारण है कि पूर्व छायावाद और उत्तर छायावाद के पंत और निराला के मिजाज बिल्कुल ही बदले हुए मिजाज लगते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले पंत जहाँ पूर्व छायावादी दौर में छोर दुर्मों की मृदु छाया तुर प्रकृति से भी माया, बाले तेरे केश जाल में कैसे उलझा दूं लोचन जैसी सुप्रसिद्ध पंक्तियों के गायक के रूप में प्रसिद्धि पाते हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तर छायावादी दौर में अपने जुगांत शीर्षक काव्य में छायावाद के अंत और प्रगतिवाद के प्रारंभ का उद्घोष भी करते हैं, दूर झरो जगत के जीर्ण पत्र। राष्ट्रीय स्वाधीनता से ओतप्रोत होकर प्रथम रश्मि शीर्षक कविता में जागरण का संदेश देते हुए पंत जी लिखते हैं, प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी विहंगिनी पाया तूने यह गाना। इतना ही नहीं बल्कि तदजुगीन 30 करोड़ भारतवासियों में दीनहीन श्रमिकों एवं कृषकों का यथार्थ चित्रण पंत जी अपनी भारतवासिनी शीर्षक कविता में कुछ इस प्रकार करते हैं, भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा फैला है श्यामल, गंगा जमुना में आंसू जल मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। महाप्राण निराला पूर्व छायावादी दौर से लेकर उत्तर छायावादी दौर तक कथ्य के अनुरूप शिल्प का प्रयोग करते हुए बिल्कुल ही सधे हुए अंदाज में राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना के साथ ही आजीवन युग के यथार्थ को अभिव्यक्त करने में महारत हासिल कर लेते हैं। अपनी राष्ट्रभक्ति से उद्बुद्ध कविता जागो फिर एक बार में अंग्रेजी साम्राज्यवाद से मुक्ति के लिए कुछ यूं जागरण का संदेश देते हैं, जागो फिर एक बार समर में अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से सिंधु नद

0: तीरवासी शेरों की माद में आया है आज सियार, जागो फिर एक बार। निराला ने उत्तर छायावादी दौर में सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, विधवा, भिक्षुक, तोड़ती पत्थर, कुकुरमुत्ता, महगू महगा रहा और कुत्ता भौंकने लगा तथा राजे ने अपनी रखवाली की जैसी कालजयी कविताएँ भी दी हैं। यहाँ बानगी के तौर पर राजे ने अपनी रखवाली की कुछ पंक्तियाँ पेश है। राजे ने अपनी रखवाली की, किला बना कर रहा, बड़ी बड़ी फौजें रखी, चापलूस कितने सामंत आए, मतलब की लकड़ी पकड़े हुए, कितने ब्राह्मण आए पोथियों में जनता को बांधे हुए, धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ, लोहा बजा धर्म का सभ्यता के नाम पर, खून की नदी बही आँख का अनमूंद कर, जनता ने डुबकियाँ ली आँख खुली, राजे ने अपनी रखवाली की। सच पूछिए तो छायावादी काव्य में राष्ट्रीय जागरण सांस्कृतिक जागरण के बतौर आया है। यह मौजूदा दौर के तथाकथित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आवरण में सांप्रदायिक राष्ट्रवाद के बरक्स विशुद्ध देशी सांस्कृतिक राष्ट्र जागरण के रूप में प्रस्तुत है।
1: राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन और छायावाद। अभी आपने सुरेंद्र प्रसाद सुमन की ये वार्ता सुनी और अब कार्यक्रम के अंत में प्रस्तुत है प्रमोद नारायण मिश्र से उनकी कहानी अनुत्तरित प्रश्न।
2: पिता की मृत्यु के बाद परिवार की पूरी जिम्मेवारी सुनीता पर आ गई थी। उसका बड़ा भाई रमेश एक प्राइवेट फर्म में काम करता था, किंतु पारिवारिक जिम्मेवारी से खुद को दूर कर लिया था। उसके पैसे अपनी पत्नी की फालतू जरूरतों की पूर्ति में ही खर्च हो जाते थे। सुनीता समाहरणालय में काम कर रही थी। वेतन मिलते ही वह अपनी माँ सुलोचना को दे देती थी। उसका खुद पर कोई खर्चा नहीं था। वह सुंदर और पढ़ी लिखी थी। उसकी सभी सहेलियों की शादी हो चुकी थी, किंतु सुलोचना को अपनी बेटी की शादी की चिंता नहीं थी। पूरे परिवार का भरण पोषण करने वाली सुनीता के प्रति सुलोचना का व्यवहार सामान्य था। अपने बेटे रमेश के प्रति अधिक ध्यान रखती थी, जबकि वह परिवार में कुछ देता भी नहीं था। पुत्र के प्रति मोह उसे उसकी गलती को नजरअंदाज कर रही थी। सुनीता महसूस कर रही थी कि माँ के मन में पुत्र और पुत्री के बीच भेद का अंकुर पनप चुका है, किंतु वह कुछ बोलती नहीं थी। वह समझ रही थी कि माँ अभी 2-4 साल उसकी शादी नहीं करेगी, क्योंकि उसकी शादी होते ही उसके वेतन से उसे हाथ धोना पड़ सकता है। नाते रिश्तेदारों के बीच इस बात की चर्चा होने लगी थी। कई रिश्तेदारों ने सुलोचना से सुनीता की शादी के संदर्भ में बातें भी की थी। कई अच्छे लड़कों की चर्चा भी की थी, किंतु वह हंसकर टाल देती थी। ऑफिस से आने के बाद उसे घरेलू कार्यों का भी संपादन करना होता था। उसका सहकर्मी सुनील उसकी हमेशा मदद कर रहा था। ऑफिस कार्यों में जो भी कठिनाइयां आती उसे संपन्न करवा दिया करता था। एकाएक सुनीता सख्त बीमार हो गई। बचने की उम्मीद नहीं थी। उसकी माँ सुलोचना उसे सदर अस्पताल में भर्ती करवा दिया। उसका सहकर्मी सुनील जब उससे मिलने अस्पताल आया तो देखा कि यहाँ इलाज की अच्छी व्यवस्था नहीं है। यहाँ की अव्यवस्था को देखकर सुनील ने सुलोचना को सूचित करते हुए कहा कि किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में इसकी भर्ती करवा दीजिए। सुनील की बातें सुनकर सुलोचना ने कहा, वही किसी नर्सिंग होम में भर्ती करवा दे, बाद में मैं वहीं आ जाऊंगी। सुनील ने सुनीता को शहर के बेहतर नर्सिंग होम में भर्ती करवा दिया और इसकी जानकारी सुलोचना को दे दी। ऑफिस से छूटने पर सुनील जब सुनीता से मिलने नर्सिंग होम आया तो इस बात से दुखी हुआ कि उसकी माँ अभी तक उससे मिलने नहीं आई, किंतु सुलोचना एक बार भी नहीं आई। एक सप्ताह के अच्छी इलाज के बाद सुनीता ठीक हो गई। नर्सिंग होम का बिल भुगतान कर सुनील उसे घर पहुंचा दिया। सुनीता ऑफिस जाने लगी। उसकी छुट्टी मंजूर हो गई थी और पूरे माह का वेतन उसे मिल गया था। सुनीता जब घर आई तो सुलोचना ने बड़े प्यार से सुनीता से कहा, बेटी आज तुमको वेतन मिला होगा, किंतु तुमने अभी तक मुझे दिया नहीं। पहले तो आते ही पूरा वेतन मुझे दे दिया करती थी। माँ की बातें सुनकर सुनीता भीतर ही भीतर जल उठी, किंतु स्वयं पर नियंत्रण रखते हुए धीरे से कहा, माँ इस बार आपको

0: कुछ नहीं दे सकूंगी। सुनीता की बातें सुनकर सुलोचना क्रोधित हो गई और तल्ख शब्दों में कहा, क्यों नहीं दोगी? तुम्हारे ऊपर घर की जिम्मेवारी है, इस जिम्मेवारी से तुम भाग नहीं सकती हो। राशन वाला, दूध वाला का पैसा बाकी है, रोज तकाता करता है। सुनीता ने जवाब दिया, माँ पैसों पर सुनील का अधिकार है, मैं उसकी कर्जदार हूँ। नर्सिंग होम का बिल उसने ही भुगतान किया है, तुम तो एक बार मुझे देखने भी नहीं आई। यह भी नहीं सोचा कि नर्सिंग होम का भुगतान कैसे होगा, यदि सुनील जी नहीं होते तो मेरी लाश यहाँ आती। जहाँ तक पारिवारिक जिम्मेवारी की बात है तो रमेश भैया तो हैं ही, पुत्र होने के कारण यह फर्ज उनका ही है। सुनीता की बातें सुनकर सुलोचना का अंदर का राक्षस जग गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, रमेश से जलती हो तुम, अभी उसकी उम्र ही ऐस मौज करने का है। कुछ भी है बेटा है, अग्नि संस्कार तो वही करेगा, तुम्हारी शादी के बाद वह अपना फर्ज निभाएगा ही। देखो सुनील, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। सुनीता की तर्कपूर्ण बातें सुनकर सुनील मुस्कुरा दिया और उसका हाथ थामते हुए कहा, जब तुम्हारा निर्णय अटल है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, कल हम लोग रजिस्ट्रार के ऑफिस में शादी के लिए आवेदन कर देंगे। अगले दिन शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर दिया गया। दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाए और अपने अपने आवास पर लौट गए। आज सुनीता खुद को हल्का महसूस कर रही थी। घर आकर वह सीधे अपने कमरे में चली गई और सो गई। आज उसे गहरी नींद आई थी। सुबह उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर माँ के पास आई और माँ से पूछा, माँ दो दिनों का कितना किराया दूँ? आज मैं सदा के लिए तुम्हारा घर छोड़ रही हूँ। मैं क्या कहूँ, तुम्हें जो भी उचित लगे दे दो, सुलोचना ने कहा। सुनीता 200 रुपये माँ को थमाकर घर से निकल गई। सुनीता और सुनील दाम्पत्य सूत्र में बंध गए। दोनों नौकरी में थे अतः किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। उनकी ईमानदारी और कर्मठता के कारण दोनों का प्रमोशन हो गया। दोनों की जिंदगी सुख शांति से कटने लगी। कुछ वर्षों के बाद उन्होंने मकान भी खरीद लिया। सुनीता कभी लौट कर अपनी माँ के घर नहीं गई। सुलोचना ने भी कभी उसकी खोज खबर नहीं ली। सुनीता जब भी अकेली होती थी अतीत में खो जाती थी। अपनी माँ के बदले व्यवहार के बारे में सोचती थी तो आश्चर्यचकित हो जाती थी। वह सोच रही थी कि कब तक समाज में बेटा बेटी के बीच उत्पन्न विभेद खत्म होगा, कब लोग लड़की को पराया धन समझते रहेंगे, कब बिना तिलक दहेज की शादी शुरू होगी, दहेज के नाम पर कब तक लड़कियां जलाई जाती रहेगी, अंतरजातीय विवाह पर समाज कब मुहर लगाएगा। इन प्रश्नों का जवाब वह ढूंढ रही थी, किंतु इन प्रश्नों का जवाब उस किसी के पास नहीं था। उसके सारे प्रश्न अनुत्तरित ही रहे।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रमोद नारायण मिश्र से उनकी कहानी अनुत्तरित प्रश्न। इसी के साथ ही साहित्य के कार्यक्रम

0: लड़की को पराया धन समझते रहेंगे, कब बिना तिलक दहेज की शादी शुरू होगी, दहेज के नाम पर कब तक लड़कियां जलाई जाती रहेगी, अंतरजातीय विवाह पर समाज कब मुहर लगाएगा, इन प्रश्नों का जवाब वह ढूंढ रही थी, किंतु इन प्रश्नों का जवाब उस किसी के पास नहीं था, उसके सारे प्रश्न अनुत्तरित ही रहे।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रमोद नारायण मिश्र से उनकी कहानी अनुत्तरित प्रश्न। इसी के साथ ही साहित्य के कार्यक्रम का आज का ये अंक अब समाप्त होता है। सूत्रधार अमलनाथ ठाकुर और प्रस्तुतकर्ता विनीत कुमार ठाकुर।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम साहित्य की, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी गानों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी,

कहानी ठीक बनती है, कहानी ठीक बनती है, नज़ारे ठीक बनते हैं। कहानी ठीक बनती है, नज़ारे ठीक बनते हैं, अमूमन वक्त अच्छा हो तो सारे ठीक मिलते हैं। वजह एक दोस्त ये भी है ताल्लुक़ को बढ़ाने की, वजह एक दोस्त ये भी है ताल्लुक़ को बढ़ाने की, कि हम दोनों के आपस में सितारे ठीक मिलते हैं। नमस्कार, मैं सज्जाद अहमद ख़ान आ गया हूँ आपकी सेवा में। बना रहेगा हमारा और आपका साथ पूरे 11 बजे तक। हमारा नंबर है 9430029353, अर्थात 9430029353। इस नंबर पे अभी के अभी आप कॉल करें और सुनें अपनी पसंद के फिल्मी नगमे, क्योंकि ये कार्यक्रम आपका है और आप ही के लिए है। तो बिना किसी देर के आप बताए गए नंबर पर करें कॉल और सुने अपनी पसंद के फिल्मी नगमे। हमें आपके कॉल्स का इंतज़ार है। हम जानते हैं कि आपको इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जी हाँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल,

0: यानी बिना किसी मेहनत के अगर हम गंतव्य तक पहुंच गए, उसी के लिए है कि ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल। मज़ा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। तो करें थोड़ी मेहनत और इस कार्यक्रम में कॉल के ज़रिए शामिल हों। आपके कॉल का हम इंतज़ार कर रहे हैं। और देखिए, हम आपसे बोल रहे हैं कि आप कॉल करें। एक कॉल आ भी गया है हम तक, जानते हैं कौन साहब हैं। हेलो आकाशवाणी, नमस्कार।
1: अस्सलामुअलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, सिमराज चतरिया से।
1: जी हाँ, मोहम्मद हाशिम।
0: जी हाशिम साहब, सिमराज चतरिया से आवाज़ से पहचान लेते हैं हम। बहुत से हमारे श्रोता जो हैं, जो नियमित श्रोता हैं, उनकी आवाज़ से ही पहचान बन गई है। तो कैसे हैं हाशिम साहब, सब बढ़िया है?
1: हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं?
0: हाँ, सब मालिक की कृपा है। बदले हुए मौसम का हम तो आनंद ले रहे हैं, लेकिन साथ में जो आंधी है ना, वो थोड़ी खतरनाक है। और वर्षा भी कहते हैं कि अभी के समय के अनुकूल नहीं है। यानी ये मौसम कुल मिला जुला करके थोड़ा ठीक नहीं है। तो मौसम के अनुकूल अगर गर्मी वगैरह पड़ती है तो उसका दूरगामी अच्छा प्रभाव पड़ता है, लेकिन अभी का मौसम थोड़ा नुकसान पहुंचा रहा है हम सभी को।
1: हाँ, नुकसान पहुंचा रहा है। हाँ
0: जी। तो आज पहला कॉल आपका कार्यक्रम में शामिल हुआ है, फरमाइश बता दें।
1: काला बाजार रहा है, देवन और वेदा रमन फिल्म आ गया, रिमझिम के तराने लेके आई बरखा।
0: जी, बरसात का आनंद आप इस गाने के माध्यम से लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल हम पहुंचा रहे हैं आपके लिए ये गाना। सिमराज चतरिया में हाशिम साहब, आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शब बखैर, सुनिए ये गाना।
1: शुक्रिया।

0: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार। हाँ,
1: हाँ, मेरा नाम चंद्रेश्वर शाह, मैं ब्रह्मपुर पूर्वी से बोल रहे हैं सर।
0: चंद्रेश्वर शाह जी, स्वागत है कार्यक्रम में। ब्रह्मपुर पूर्वी से बोल रहे हैं
1: दो
0: जी।
1: 3 महीने के बाद फोन किया है आपके पास हम सर।
0: जी तो एक सप्ताह का अंतराल है, इतना 2-3 महीना क्यों आपने लगा दिया भाई?
1: हाँ, मैं आपके फिल्म पे गाना है मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, वो सुना भी है।
0: बिल्कुल, पहुंचा रहे हैं आपके लिए ब्रह्मपुर में। आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि, सुनिए ये गाना।
1: ठीक है।

0: नमस्कार श्रीमान।
1: परिचय देंगे श्रीमान जी?
0: मैं राम कुमार शाह सिमरिया भिंडी पंचायत समस्तीपुर से बोल रहा हूँ।
1: जी राम कुमार शाह जी, स्वागत है कार्यक्रम में। कैसे हैं? बढ़िया
0: जी सर, आप लोगों की कृपा है।
1: मालिक की कृपा बनी रहे हम सभी पे, आप पे, हम पे, सभी पे जी।
0: कार्यक्रम से संबंधित
1: आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, और एक क्षमा आपसे करेंगे चाहेंगे कि कार्यक्रम से संबंधित जो भी बातें हैं ना, कृपया इस कार्यक्रम में ना बोलें। आप एक चिट्ठी लिख दें केंद्र निदेशक महोदय के नाम से, जो भी कुछ कहना चाहते हैं। बल्कि आप मेरी भी कोई बात आपको नापसंद हो तो आप केंद्र निदेशक महोदय से आप शिकायत कर सकते हैं, वो शिकायत मेरी भी हो सकती है। तो उसके लिए पता हम बता रहे हैं, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड है 8460004। तो इस नंबर पे आप चिट्ठी लिख दें इस पते पे, और वहाँ आपकी चिट्ठी की सुनवाई होगी, ठीक है ना। और इस कार्यक्रम में आप इस कार्यक्रम से संबंधित ही बातें करें तो अच्छा है, थोड़ा ये बहुत लिमिटेड समय होता है, तो इसलिए जी कार्यक्रम में अपनी फरमाइश बता दें।
0: श्रीमान है, आज हम अपने दुआओं के साथ देखेंगे
1: जी, जी
0: नजर देखेंगे, देखेंगे
1: जी। लता जी का गाया हुआ है और गुलाम मोहम्मद साहब का संगीत है, आपके लिए पहुंचा रहे हैं सिमरिया भिंडी पंचायत में जी। आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।
0: राम।

0: हम एक हैं। भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
1: जनकपुर जाने के लिए आए,
0: कभी खरीदारी भी करते हैं। सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियाँ।
1: मैं चाहता हूँ कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
0: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
2: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
0: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं। प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा। आकाशवाणी दरभंगा से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गानों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। यह कार्यक्रम जारी है। एक आवश्यक सूचना है कार्यक्रम संबंधी जो आप तक हम पहुंचा दें, उसके बाद फिर आपके कॉल को हम शामिल करेंगे। तो सूचना इस प्रकार से है कि श्रोताओं, माँ को सृष्टि का आधार ही नहीं ईश्वर का वरदान भी कहा गया है। माँ एवं संतान के पारस्परिक संबंध और दायित्व, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर पुष्पम नारायण। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 06272222481, यानी 06272222481। दूसरा नंबर होगा 9430029353, यानी 9430029353, अर्थात 9430029353। समय याद रखेंगे रविवार 10 मई 2026 दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई और अब एक कॉल आ चुका है हम तक, जानते हैं कौन साहब हैं। हेलो आकाशवाणी नमस्कार।
3: अस्सलाम
0: वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तारुफ कराएं अपना।
3: मैं मोहम्मद जलील अहमद जहां मसगांव पोस्ट मिल्की तक थाना बहादुरपुर जिला दरभंगा से बोल रहा हूँ। सज्जाद भाई,
0: जलील साहब थोड़ा लंबा वक्त हो गया, कहाँ थे भाई आप?
3: कॉल तो लगाते थे लेकिन बहुत मुश्किल से जो है तो कॉल लगता ही नहीं था। आज इत्तेफाक है कि लग गया।
0: हमने आपसे पहले कहा था कि ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल। मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे, तो थोड़ी थकान अगर आपको मिली है तो हम तो कहेंगे कि बड़ी मेहनत के बाद जो मज़ा आता है, मज़ा मिलता है, वो ज़्यादा ही फलदायी लगता है।
3: तो
0: मज़ा जीने का और भी आता है जी। तो सब बढ़िया है ना जलील साहब?
3: हाँ सब अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश भी हो रही है लेकिन वही है कि थोड़ा सा तूफान जो दुखदायी हो जाता है ना, बारिश होने

0: ठंडापन हो गया है, मौसम में सर्दी हो गई है, अच्छा लग रहा है।
1: वक्ती तौर पे तो ये मौसम हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन साथ ही साथ कुछ गरीब लोग जो झोपड़ियों में रहते हैं वो फिर खेती को लेकर काफ़ी नुकसान हुआ है, बागान को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए, मालिक की जो मर्ज़ी, हम मालिक से हमेशा ही अच्छी अपेक्षा करते हैं, उम्मीदें अच्छी करते हैं कि मालिक जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। तो संभव है, वैसे भी जो मौसम संबंधी सूचना आती है, तो गत 5 तारीख को जो पूसा ने जारी की थी उसमें 10 तक के बारे में बताया था कि 10 मई तक ये स्थिति रहेगी। तो अब देखिए क्या होता है, आज 8 तारीख हो गई जी।
0: भविष्यवाणी आ रही है, सब से जो है तो अनुभव मिल ही जाता है ज्ञान की तरफ से
1: जी। तो फरमाइश बता दें आज इस कार्यक्रम में अपनी।
0: गंगा जमुना फिल्म का एक गाना है सर, दिलीप कुमार बजंत्री माला नासिर खान अभिनीत फिल्म थी, शकील बदायूनी साहब का लिरिक्स है, नासा साहब का म्यूजिक, रफी साहब की आवाज का एक गाना है, नए में लड़ गई है तो मन मामा का सत्य हो तो करी
1: जी जी। पहुंचा रहे हैं जलील साहब आपके लिए इस गांव में ये गाना। आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शब बखैर, सुनिए ये गाना।
0: आपका भी शुक्रिया शब बखैर।
2: लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमारा

0: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ,
0: वालेकुम अस्सलाम। अपना परिचय देंगे?
1: मुबारकपुर दिल्ली से अक्रम बोल रहे हैं, गांव को सोना जिला दरभंगा वाले भैया।
0: जी अकरम साहब, इस्तकबाल कार्यक्रम में, प्रोग्राम में कैसे हैं आप?
1: हाँ, बहुत
0: जी काफ़ी नॉइजी आ रही है, आवाज़ के साथ आ रही है आपकी आवाज़, नॉइजी शोर है।
1: थोड़ा या मौसम उसम के
0: जी फरमाइश
1: मुताबिक
0: बता दें।
1: दूर का है। फरमाइश तो है, मुमताज शिरोनी इसमें समझ गए, अपने टाइम की वो भी बहुत मस्त गाना लिखी थी, गोफर फिल्म का गाना है। मैं तेरे में मरना चाहे तो तू मुझे आजमाने की कोशिश न करे, तू भी सूरत है तू तो मैं भी ऐसी।
0: पहुंचा रहे हैं आपके लिए दिल्ली में, आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शब बखैर, सुनिए ये गाना।

0: एक तरफ चाक पे कुजे को घुमाने का हुनर, एक तरफ चाक पे कुजे को घुमाने का हुनर, एक तरफ हाथ पे रोटी को बढ़ाने का हुनर। तुमने पहना ही नहीं मेरा पसंदीदा लिबास, तुमको आया ही नहीं पास बुलाने का हुनर। हेलो आकाशवाणी, नमस्कार।
1: हेलो सर जी, नमस्ते।
0: अरे नमस्ते नमस्ते, बड़गड़ से कैसी हैं
1: जी? शुक्रिया जी, बड़गड़ जिला उड़ीसा से चंद्रप्रभा बोल रही हूँ
0: जी। चंद्रप्रभा जी, हम पहचान लेते हैं आपको, आपकी आवाज़ से ही पहचान लेते हैं कि उड़ीसा से, उड़ीसा के बड़गड़ से आपका कॉल आ रहा है। कैसी हैं, वहाँ का मौसम कैसा है बताइए उड़ीसा में?
1: उड़ीसा के तो सब बढ़ा, इस साल बहुत बढ़िया है, हमारे बरगढ़ का माहौल बढ़िया है। तो गर्मी तो है, गर्मी बहुत है, धूप तेज है, बहुत तेज है। तो फिर भी हमारे जो बीच बीच में बारिश हो रही है और बढ़िया है मौसम में, बढ़िया है। तो अभी तो गर्मी है।
0: हाँ तो गर्मी में गर्मी का आनंद ना लिया जाए जी, गर्मी में गर्मी का आनंद ना लिया जाए तो फिर क्या लिया जाएगा और बीच बीच में बारिश जब होती है तो मौसम ठंडा हो जाता होगा, उसका भी एक अलग आनंद है ना?
1: हाँ, हाँ, जी।
0: आज कार्यक्रम में आपकी फरमाइश क्या है
1: जी? आज गाना सुनेंगे जी, जब जब फूल खिले फिल्म का गाना सुनेंगे और लता, शायद लता जी की आवाज में गाना।
0: ये समा
1: जी
0: बिल्कुल पहुंचा रहे हैं बड़गड़ में आपके लिए ये गाना। आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि, सुनिए ये गाना।
1: शुक्रिया जी, नमस्ते।
0: शुक्रिया आपका भी कॉल करने के लिए।

0: रश्के महताब हथेली पे मेरी, रश्के महताब हथेली पे मेरी, आ गिरा ख्वाब हथेली पे मेरी, आज ढल जाओ मेरी आँखों से, आज ढल जाओ मेरी आँखों से, अश्के बर्फाब हथेली पे मेरी। हेलो आकाशवाणी, नमस्कार। वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहे हैं? हाबीब बुआर से, ताहिर हुसैन। ताहिर साहब, स्वागत है कार्यक्रम में, फरमाइश बताएं।
1: फरमाइश आज मेरा रफी साहब के बाद में आपने सबका फिल्म का, आज मेरे यार की शादी है।
0: जी जी बिल्कुल, हम आपके लिए पहुंचा रहे हैं हाबीब बुआर में ये गाना। आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शब बखैर, सुनिए ये गाना।

0: जिससे भी रखे वो है तेरा मसाला, पूछना इतना ही था, दिल ने गवारा कर लिया। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: हेलो आकाशवाणी,

0: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गानों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। 11 बजने को हैं, कुछ क्षणों में समाचार होंगे।
1: अब सुनिए समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
3: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
2: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
3: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
2: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुगता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर

0: Bhatia, Gujarat State Cabinet Minister Jitubhai Vaghani said that various events will be organized at Somnath as part of the Somnath Amrit Parv, showcasing India's rich cultural and heritage traditions. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं. मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर. इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं. अब हमारी आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है. इसी मीटर पर कल सुबह 5:45 पर हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी.